स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से, जैसे

0: हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और चार उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो चार उंगलियां दोनों हाथों की दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को यानी कि 2 और 2 4 दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में
0: आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से हर समय और अपनी सुविधा अनुसार जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से वसंत ऋतु, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभु को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभंक्षाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष धर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स्य, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवा यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है, वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो,
2: क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे बेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि बेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें, तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकेय उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि जिसका आरंभ ना हो, शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता। इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों, आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
2: शादी कर सकते हैं
3: क्वीन विक्टोरिया की तरह।
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिलफरेब।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: क्या बात है, सुमस्करी लगाकर तो नहीं आया मंडे? ना ना, मस्करी लगाने से मंडे कैसे आता है? संडे के बीच जाने से और थोड़ा सा सैड हो जाने के बाद ही आ जाता है मंडे। खैर, मंडे आता है तो शुरू हो जाता है नया वीक, नई उम्मीदें और कुछ नई बातें। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। यस, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, हम आपको कुछ बातें बता देने वाले, लेकिन उससे पहले आज का थॉट ऑफ द डे जो कि हम आपको बताएंगे। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है और कैसे क्या कुछ हम करने वाले हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। सो आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो अब क्या बताने वाले हैं, अब बताने वाले हैं कि भाई जितना आज का थॉट आपको अलग करने वाला है, ऐसी ही ज़िंदगी हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। इस बात को हमको थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा थ्रू दिस थॉट।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

थॉट ऑफ द डे थोड़ा सा अजीब लगने वाला है, या यूं कहें कि सुनने के बाद सच में आपको अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत बहुत सही है इसमें। दरअसल आज का थॉट कहता है कि जितना ज़्यादा आप समाज में बेहतर ढंग से फिट बैठते हैं, आप सच में उतने ही कम स्वतंत्र होते हैं। जितना ज़्यादा आप समाज में बेहतर ढंग से फिट बैठते हैं, आप सच में उतने ही कम आज़ाद होते हैं, उतने ही कम स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज, जैसे हम नाम लेते हैं, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे नियम कानून, सब कुछ ध्यान में आ जाता है, राइट? सो इसी के बाद, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो जो जितना ज़्यादा सामाजिक खुद को कहता है, वो उतना ही स्वतंत्र कम हो पाता है। कभी कोई मिलने आ गया, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, बट क्या हर वक्त हमको किसी से मिलने की ज़रूरत होती है? क्या हर वक्त हमको कहीं बुला लेने पे जाना ही पड़ता है? और अगर सोचिए, हर रोज़ और लगभग हर वक्त ऐसा होता रहे तो क्या आप सोचने वाले हैं? सो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी आपको आज़ादी चाहिए होती है तो थोड़ा सा आपको अपने लिए समय ज़्यादा निकाल लेना पड़ता है, और इसी से ही बेहतर हो पाती हैं चीज़ें, और इसी से ही आप अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं, फिर आप अपनी चीज़ों को कर पाते हैं। ऐसा कहना मेरा नहीं है, बल्कि आज के थॉट ऑफ द डे का है। अब आपने देखा होगा ऐसे आसपास के आपके मोहल्ले में ऐसे लोग, या आपके शायद घर में ही हो, बहुत ज़्यादा सामाजिक हों, और जब भी बैठे होते हैं कोई ना कोई मिलने आ जाता है, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं पे कुछ है, कभी कहीं पे कुछ है, कभी कहीं पे कुछ है। इन सब के होने के चलते होता यूँ है कि भाई, इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ही कम बचती है, या वो अपनों के लिए वक्त दे ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास तो एक ही बात होती है कि भाई देख रहे हो, लोग आ रहे हैं तो मैं जाना पड़ेगा, कहा है तो, बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। सो हमारा आज का थॉट कहता है कि आप जितना ज़्यादा समाज में बेहतर ढंग से फिट बैठते हैं, आप सच में उतने ही कम स्वतंत्र होते हैं। ये बात सुनने में बड़ी ऑड लग सकती है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन अगर इसमें आप जाएंगे गहराई से तो इसको सच्चाई के साथ आप इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। खुद से आपको समझ में आने वाला कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल फैक्ट बात कही है। खैर, अब आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके फटाफट से बताइए, क्योंकि हम ले चलते हैं आपको मंडे एनर्जेटिक सॉन्ग की तरफ, जो कि आपके इस वीक की शुरुआत बनाने वाला है। झका

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आज का थॉट काफी ज्यादा ही अलग था, और इवन इतना अलग कि आप सोच रहे हैं कि हाँ यार कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। बहरहाल चलिए आपको बताते हैं कि भाई क्या कुछ लिखा है चैट बॉक्स पर, क्योंकि आप ट्यून करे हुए हैं इस वक्त फ्रिक्वेंसी से, और साथ ही साथ अपनी कार में सुन रहे हैं, ट्रांजिस्टर से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से, दुनिया के अलग अलग कोनों से सुन रहे हैं, और ग्लोबली आप सुन सकते हैं और सुन पाते हैं और सुन रहे हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन से, जो सीधे लाइव जोड़ती है आपको आपके फेवरेट आरजे से।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई जो मैसेजेस आए हैं, सविता दुबे जी का आया है, सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग। साथ ही साथ सविता जी लिखती हैं कि आज से अपने ज़मीनी मामला अपने हाथ में लिया हूँ, बस दुआ करें कि सफल हो जाए। आज का सुविचार बहुत प्यारा लगा, आपके लिए बहुत ढेरों दुआएँ हैं और आपकी हिम्मत तो ऑफकोर्स हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सो आप ज़रूर बेहतर करेंगी और आपके लिए जो होगा वो बेहतर होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रीति जी ने लिखा है, बहराइच से हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, सच में मेरा बेटा भी बहुत ही सामाजिक है ना। देखिए, जो इस बात को जान रहा है वो इस बात को समझ पाएगा कि आज के थॉट ने क्या बात कही है। क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसकी वजह से हर 10-15 मिनट पे बेल बजा करती है और आप आए दिन जो बेल का है सेल चेंज किया करते हैं, तो आपको ऐसे ही अंदाज़ा हो गया भाई कि कितने ज़्यादा मिलने मिलाने वाले हैं, और उस चक्कर में जो है बाकी चीज़ें थोड़ा सा कम हो पाती है, राइट। चलिए, सो भाई अब चलते हैं एक ज़बरदस्त गाने को सुनने की तरफ, क्योंकि आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग वाली वाइब पूरी तरह से देने वाला है ये सॉन्ग जो आ रहा है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: अब जो हम बात बताने वाले हैं आपको, ऐसा सुन के लगने वाला जैसे ये ख्यालों की दुनिया की बात है। जी हाँ, कई बार ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। अब जरा सोचिए कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन उसकी फीस जो है वह पैसे दे करके ना हो और प्लास्टिक दे करके हो तो क्या होगा। अब आप कहेंगे, हैं ये क्या बात कर रहा है भाई, पैसे ही तो होते हैं तभी तो स्कूल चलता है। बट हम कहेंगे नहीं, एक ऐसा भी स्कूल है जो पैसों के देने से नहीं बल्कि प्लास्टिक देने से चल रहा है। अब आप भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा स्कूल है, इसके बारे में अभी तक तो आपने नहीं सुना है और फिर हम ये कैसी बातें बता रहे हैं आपको। तो चलिए भाई, अब लगता है कि अगर पूरी स्टोरी बताएंगे तो फिर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि आखिर हम किस तरह की फीस की बात कर रहे हैं और इस स्कूल में यानी इस कॉलेज में आखिर क्या बात है कि फीस में पैसे नहीं बल्कि प्लास्टिक ली जाती है। हालांकि प्लास्टिक को तो रोका जाता है ना, तो आखिर इस स्कूल में क्यों ली जा रही है। इस सवाल का जवाब भी आपको मिलने वाला है इस स्टोरी में। सो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं ऐसे यूनिक स्कूल में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सुबह ही आपको ले आए हैं असम के एक ऐसे स्कूल में, यानी गुवाहाटी के पास पामोही गांव में मौजूद अक्षर फाउंडेशन, जिसने एजुकेशन और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने का एक अनोखा मॉडल तैयार किया है। होता यह है कि यहाँ हर हफ्ते बच्चे प्लास्टिक कचरा जमा करके अपनी फीस अदा करते हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी सीखते हैं। स्कूल का नाम है अक्षर फाउंडेशन। जो जगह है वो है पामोही गांव, गुवाहाटी, असम। इसकी शुरुआत जो हुई है वो साल 2016 से शुरू किया गया है। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं परमिता शर्मा और माजिन मुख्तार। फीस के रूप में यहाँ बच्चों से प्लास्टिक कचरा जमा करवाया जाता है, यही इनकी फीस है। स्टूडेंट को बैग में किताबें और दूसरे बैग में प्लास्टिक कचरा लेकर स्कूल आते हैं। जी हाँ, एक बैग में उनको किताबें लानी होती है और दूसरे बैग में उनको प्लास्टिक कचरा लाना होता है स्कूल। स्कूल में जमा प्लास्टिक से इको ब्रिक्स बनाना सिखाया जाता है। सो इको ब्रिक्स जो है प्लास्टिक कचरे को बोतलों में भर करके तैयार की जाती है। बच्चों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई और बढ़ईगिरी जैसे जो व्यवसायिक काम है ये भी स्किल्स सिखाई जाती है। सो स्कूल में पॉइंट सिस्टम लागू है, जहां स्टूडेंट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने नंबर्स को हासिल करते हैं। सो इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने में किया जा सकता है। सो इस मॉडल ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो संख्या थी उसको कम करने में भी मदद की है। सो उद्देश्य ये है कि शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दिया जाए। सो ये काम कर रहा है अक्षर फाउंडेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये स्कूल जो है पामोही गांव, गुवाहाटी, असम में मौजूद है और यहाँ पर फीस के रूप में बच्चे पैसे नहीं लाते बल्कि दो बैग्स होता है। एक में वो अपनी बुक्स लेकर आते हैं और दूसरे में वो प्लास्टिक कचरा जमा करके लाते हैं, स्कूल में देते हैं। उससे बनता है इको ब्रिक्स और इसी के साथ ही साथ बच्चों को जो है वो व्यवसायिक स्किल्स भी सिखाई जाती है, जिससे कि बच्चे अपनी लाइफ में ऐसे हुनर को ज़रूर प्राप्त कर लें जिससे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी को आराम से काट सके। सो इसलिए ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है। इसमें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सिखाया जाता है, मोबाइल की रिपेयरिंग कैसे होती है ये भी बताया जाता है। इसके अलावा बढ़ईगिरी है, सिलाई है और इस तरह से जो भी स्किल्ड वाले प्रोफेशंस हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इस तरह से बच्चों में शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण करने को लेकर ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि उनसे इस एक्टिविटी के ज़रिए उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके अनकॉन्शियस माइंड तक में वो बातें उतार दी जाती है कि वो बच्चा फिर कहीं भी देखेगा तो गंदगी खुद तो नहीं करेगा ना ही किसी और को करने देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के स्कूल्स क्या और भी जगह होने चाहिए? और अगर इस तरह के स्कूल्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पे फिर क्या असर पड़ने वाला है? हमारी आने वाली पीढ़ी जो इसमें पढ़ रही होगी उस पर इसका क्या असर होगा? आज के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्या उनके जहन में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सीधे सीधे बदलाव आएगा? जो भी लगता है बता सकते हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो आपको बतानी हैं। और इसी बात में 16 जून को यूपी में लग रहा है रोज़गार मेला, जिसके रिगार्डिंग हम आपको अब अपडेट करने वाले हैं, ताकि आप भी अपडेटेड रहें इस बात से। और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं इसी अपने मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो ये जो अपडेट्स जा रही है वो रिगार्डिंग जा रही है रोजगार मेला के। सो आपको बता दें 16 जून को लग रहा है रोजगार मेला, जिसमें 1900 वैकेंसीज हैं और फ्रेशर्स को मौका मिलने की बात कही गई है। सो आई होप कि ये बात आपके लिए, ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जो भी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक मौका हो सकता है। यहाँ पहुंचकर आप डायरेक्ट कंपनियों के हायरिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। सो जो कैंडिडेट्स अभी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये है। और उत्तर प्रदेश में 16 जून को रोज़गार मेला होने जा रहा है, जिसको लेकर के क्या प्रोसेसेस हैं, आइए आपको हम इससे अवगत कराते हैं, इस तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सो फिलहाल आपने यूपी का एक ज़िला है जिसका नाम सुना होगा, और उसका नाम है भदोही। जी हाँ, कालीन नगरी भदोही की ये बात है, और ये भी बनारस से मिला हुआ ज़िला है। पहले बनारस ही था, उसके बाद भदोही बना, जैसे गोंडा से बलरामपुर बना उसी तरह से। सो आपको चूंकि अपडेट हम दे रहे हैं रोज़गार मेला की, और कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं जो इस रोज़गार मेले के लिए शायद इंतज़ार कर रहे हों, या उनको हो कि भाई एक बार वो भी ट्राई करना चाहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं होता है, कहता लो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो ये भी सही होता है कि एक बार जब आप ट्राई कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं और आप उसको बेहतर ढंग से कर पा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब कहाँ और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं इसका हिस्सा। सो उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के ज़रिए भदोही में ज़िला सेवा योजन कार्यालय के ज़रिए 16 जून यानी कल जॉब फेयर यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फ्री होगा, ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स हैं इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे वो इसमें ऑफ़ कोर्स कहीं ना कहीं अपने लिए एक वैकेंसी फुलफ़िल कर सकते हैं। सो इस रोज़गार मेले में 1900 वैकेंसीज़ के लिए हायरिंग की जा रही है, और ऐसा आपके लिए नौकरी लेने के लिए हो सकता है। फ़िलहाल जॉब फेयर कहाँ लगेगा भदोही में, ये भी एक सवाल है, यानी वेन्यू। तो वेन्यू आपको हम बता दें कि यूपी भदोही रोज़गार मेला 2026 इसका नाम है। तारीख है 16 जून 2026 यानी कल की तारीख, क्योंकि आज 15 जून हो ही गई है। कुल पदों की जो संख्या है यानी टोटल वैकेंसीज़ है वो 1900 है। आयोजन की जो जगह है वो DJD प्राइवेट ITI परिसर सिंहपुर ज्ञानपुर भदोही में लग रहा है। जी हाँ, DJD प्राइवेट ITI कैंपस सिंहपुर ज्ञानपुर भदोही यहाँ लग रहा है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in ROJGAAR रोजगार, उसी में SANGAM संगम rozgarsangam.up.gov.in इस पर जाना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन हो सकता है शामिल? सो फ्रेशर्स से लेकर के जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सैलरी जो है वो बताई जा रही है फ़िलहाल 13,000 से 28,000 के बीच प्रति माह दी जाएगी, अलग अलग पदों के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से। सो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा? यूपी रोज़गार मेला 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ लिंक मिल जाएगा। अब बात आती है कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो इस रोज़गार में किसी भी मान्यता प्राप्त से आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई भी है सो वो सभी कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ITI डिप्लोमा वालों के लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो भी खुले रहेंगे। सो कुल पदों के लिए कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ये सभी पदों के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको इसकी जानकारी कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ज़रिए जहां पर आयोजन है वहीं पर स्टॉल्स से मिल जाएगी। सो रोज़गार मेले के जगह पहुंच करके आप सीधे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस में भी
शामिल हो सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट जा करके भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सो इससे पहले, जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, है ना। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप रोज़गार मेला में सम्मिलित शामिल होने जा रहे हैं, इसके कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको सुना देते हैं एक सुपर्ब वाला सॉन्ग। वापस से आते हैं तो बताते हैं कि भाई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आखिर कौन कौन से होने चाहिए जो आप इस रोज़गार मेला में ले जा कर के शामिल हो सकते हैं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सो भाई हॉली हॉली इससे पहले हम बताते हैं आपको हॉली हॉली रोजगार मेले में आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि आकर के आपको बताने वाले, तो चलिए वक्त आ गया है कि आपको इस बात से रूबरू करा दिया जाए कि भाई आखिर रोजगार मेले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बता दें कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ले जा सकते हैं भदोही में कल के दिन यानी 16 जून को लग रहे रोज़गार मेले में। सबसे पहला तो आधार कार्ड है, ऑफकोर्स हमारी आईडी है, आइडेंटिटी है। इसके बाद पैन कार्ड है, 10th 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की डिग्री है अगर इस लेवल की जॉब है तो, यानी जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है उसी में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर इस लेवल की जॉब है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है तो, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए और अपडेटेड सीवी यानी करिकुलम विटे होना चाहिए। सो इस रोज़गार मेले में जॉब जो है वो मिल सकती है, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, और नहीं अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन पोर्टल पर रोज़गार संगम पर तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जा करके भी हो सकता है, यानी ऑफलाइन वहाँ पर पहुँच करके भी आप जब उस जगह वेन्यू पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड खुद को करा सकते हैं। सो इस जॉब फेयर से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 155330 यानी 155330 नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे आप कॉल करके इस जॉब फेयर से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार नंबर वापस से सुन लें, 155330 155330 ये नंबर है। आई होप कि ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है, आपके रिलेटिव्स आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी हैं उनके काफ़ी काम आने वाली है। सो चलिए सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और हमारी तरह चिल रहिए।

0: चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो फिलहाल अब हम चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप मैच की तरफ। जी हाँ, उस मैच की तरफ जिसकी लिए लोग टकटकी लगाए थे और फाइनली जो सोचा था वही हुआ। जी हाँ, सो भारतीय शेरनियों ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा करके जीता है पहला T20 वर्ल्ड कप, यानी हम वेमेन क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो चलिए आखिर हुआ क्या है ये आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई शुरुआत ऐसी कि पूरे देश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया और हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा करके जीत लिया है पहला T20 वर्ल्ड कप मैच। बेशक, सही सुना आपने। सो क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं। दरअसल उधर स्मृति मंथाना बल्ले से रन बरसा रही थी, इधर दीप्ति शर्मा गेंद से कहर ढा रही थी और देखते ही देखते पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन पर सिमट गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हरा करके शानदार आगाज किया है। पहले बल्लेबाजी करते भारत ने 170 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना की 68 रन की शानदार पारी और ऋचा घोष की 17 गेंद में 34 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन असली कहानी तो तब लिखी गई जब गेंद भारत के हाथ में आई। पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की लेकिन दीप्ति शर्मा ने मैच का रुख बदल दिया। इन्होंने सिर्फ 10 रन देकर के 5 विकेट झटके, भाई साहब 5 विकेट, और पाकिस्तान की टीम जो है वहीं से हारना शुरू हो गई। सो भारत की बेटियों ने एक बार वापस से बड़े मंच पर दबाव में नहीं बल्कि प्रदर्शन को कर दिखाया और यही बताया कि भाई दबाव से नहीं बल्कि परफॉर्मेंसेस से टीम के मैचेस निर्धारित होते हैं। सो टूर्नामेंट की शुरुआत जीत से करना और वो भी इतनी बेहतरीन जीत से करना, सो टीम इंडिया के लिए यानी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बढ़त है। सो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की टीम वुमेन क्रिकेट के इस अचीवमेंट पर कल जो मैच में हुआ उसको देखते हुए बहुत सारी बधाई देती है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और साथ ही साथ आने वाले और कई मैचेस में अब परफॉर्मेंसेस और तगड़ी होने को ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि किस तरह से अब जो है टीम इंडिया आगे मूव करने वाली है। सो यस, क्योंकि टीम इंडिया को जिस तरह से पहली शुरुआत मिली है वो भी इतनी ज़्यादा हाइक मिली है, सो डेफिनेटली एक डायरेक्शन ज़बरदस्त स्ट्रांगली मिल रही है और ये जो है ये बहुत अच्छे संकेत हो सकते हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के फ्यूचर को लेकर के। जिस तरह से शुरुआत हुई है, जिस तरह से बढ़त बनी हुई है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये जो टीम है वो कमाल की है और ये कमाल की बातें जो है टीम के हर एक मेंबर से मिल करके बनती है, यानी पूरी टीम जो होती है वो एक दूसरों को हौसला देती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम ऐसे मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंसेस के बीच में ज़रूर पाते हैं। सो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल एक बार वापस से इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसलिए अचीवमेंट बड़ी है क्योंकि शुरुआत की हम बार बार बात कह रहे हैं, शुरुआत बहुत तगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये संकेत हैं आगे तक जाने के और इसके फ्यूचर को ब्राइट वे में दिखाने के, इसलिए ज़्यादा ही मुबारकबाद। सो चलिए, फ़िलहाल एक ज़बरदस्त सॉन्ग डेडिकेट करते हैं अपनी टीम को और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी हम जानते हैं कि भाई अब जो है वुमेन क्रिकेट टीम कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है आम जन के बीच। सस, सो लेट्स गो।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एक ऐसा नाम जिससे शायद आप सभी लोग वाबस्ता हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस नाम को। जी हाँ, और ये नाम है सोनाली बेंद्रे का। सो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुझे आज सोनाली बेंद्रे का नाम लेना पड़ा? चलिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेज 4 कैंसर, जब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 30% चांसेस हैं सोनाली बेंद्रे के पास इस जिंदगी को लेकर, तो सोनाली बेंद्रे का क्या रिएक्शन था और अभी किस तरह की लाइफ है आफ्टर 4th stage cancer? लेट्स गो।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

अपने वक्त की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, एक कामयाब मॉडल जिनको उस वक्त हर कोई जानता था, इवन उनकी खूबसूरती का तो हर कोई कायल रहा। पर आफ्टर फोर्थ स्टेज कैंसर अभी जिस तरह की जिंदगी वो जी रही हैं, ये सुनने के बाद काफी शॉकिंग लगने वाला है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक बात समझ में आने वाली है कि लाइफ जिसकी बहुत ज्यादा ब्राइट सी दिख रही होती ना, उसकी लाइफ में भी अचानक से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक भूचाल सा आ जाता, उसके बावजूद इंसान खुद को संभालता कैसे है, यही कलाकारी मेन है। जी हाँ, स्टेज फोर कैंसर के बाद जब डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ 30% चांसेस है, यानी 30% लाइफ के चांसेस हैं, फिर भी हंसते हंसते सोनाली बेंद्रे ने कैंसर से जंग लड़ना कबूल किया। फिल्मों में अपनी अदाकारी से दिल जीतने वाली सोनाली बेंद्रे जो हैं, फिलहाल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास घर में जन्मी, चूँकि इनके फादर चाहते थे कि इनकी लड़की जो है IAS बने, पर चूंकि सोनाली का सपना था बॉलीवुड और उनकी शुरुआती फिल्में इत्तेफाक की बात है कि ज़्यादा चली भी नहीं। पर एक दौर आया जब गाने का ऑफकोर्स लिरिक्स था हम्मा हम्मा, इस गाने पर इनके डांस परफॉर्मेंस ने इन्हें स्टार बना दिया। सो सरफरोश नाम सुना है, हम साथ साथ हैं ये भी गाना आप जानते हैं, इन जैसी बड़ी फिल्मों का ये एक हिस्सा बनी और शोहरत, खुशहाल एक परिवार इनकी ज़िंदगी को पूरा कर भी रहा था। फिर आया 2018, एक रिपोर्ट ने इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। जी हाँ, स्टेज फोर कैंसर। एक माँ के लिए अपने बेटे का ये बताना सबसे मुश्किल था, लेकिन वो टूटी नहीं और कीमोथेरेपी से गिरते बाल हर दिन दर्द में होने के बावजूद दुनिया को अवेयर करने का स्टेप लिया। जी हाँ, ताकि कोई इस लड़ाई में हार ना माने और अकेला महसूस ना करे। लोगों ने समझाया कि सिम्टम्स को इग्नोर मत करो, टाइम पर डायग्नोसिस जरूरी है। जी हाँ, और अगर जिंदगी लड़ाई दे रही है तो खुद से कहना कभी मत छोड़ो कि मैं लड़ सकती हूँ और ठीक भी हो सकती हूँ। सो 2021 में ये कैंसर फ्री भी हो गई। जी हाँ, 4 साल बाद इन्होंने अपने करियर में वापस से कुछ ऐसा किया जो यादगार बन गया। जी हाँ, द ब्रोकन न्यूज़ वेब सीरीज और टीवी शोज में इन्होंने एक नई और मजबूती के साथ एक और पारी की शुरुआत की और आज ये फिर से कैमरे के सामने हैं अपनी नई वेब सीरीज राख के साथ। और ये याद दिलाने के लिए कि कैंसर एक शब्द है, सजा नहीं है, है ना। सो ये है सोनाली बेंद्रे की अपनी स्टोरी उस शख्स के बारे में जिसको लगभग हर कोई जानता है, ऑफकोर्स आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सोनाली बेंद्रे की कई मूवीज से भी आप वाबस्ता हैं, आपने देखा भी है और हमने भी देखा है और हम भी इस बात से वाबस्ता हैं। सो कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो इस तरह से भी चेंज होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने ठान लिया है तो स्टेज फोर कैंसर जैसी चीज़ भी कुछ खास कर नहीं पाए। ये होता है इरादा और ये होती है जीने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। जी हाँ,

0: भाई यो तो टॉर्चर है खाना। हाँ जी, सो फिलहाल बड़ा ही मस्ती भरा माहौल आज हम सब लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया अपने मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल तो चलने का वक्त है, लेकिन कुछ आपकी तरफ से मैसेजेस भी आ गए हैं जिनको हम लेकर बताने वाले हैं कि किन किन लोगों ने क्या कुछ लिखा है आपके चैट बॉक्स पर, यानी आपकी मोहब्बत ग्रुप में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो पहले बता दें कि बीच में अभी एक कॉल भी हमारे पास आई थी और वो भी हिमाचल से ही आई थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से ये फैमिली लगातार बड़ी होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। राकेश जी का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने जोड़ा, और कल वो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से सुन रहे थे, आज उन्होंने अपने एक मित्र को जोड़ा और जिनकी मेरी बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई। आई होप कि अगर ये मैसेज आप तक जा रहा है तो आप ज़रूर इस रेडियो का, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू सो मच टू यू। अनुराग बसु लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद जो है दीपांशी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। आशु मिश्र जी लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम है। सविता दुबे जी लिखती हैं, सर रेडियो पर सुन रही हूँ, हमारी शेरनी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आपने भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज अहमद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और साथ ही साथ हर उस शख्स को जो फ्रिक्वेंसी से हैं, रेडियो गार्डन से हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज का संडे स्पेशल शो कैसा रहा? आज का संडे स्पेशल के बाद में ये मंडे वाला डे जो है, क्या इसने सच में इतनी एनर्जी दी है कि पूरे वीक ये बरकरार रहने वाली है? अगर हाँ तो भाई अब क्या दिक्कत क्या है, अब तो मिलकर के एंजॉय ही करना है अब पूरा का पूरा वीक। फिलहाल आज का शो कैसा लगा अपने मन में जरूर सोच लीजिएगा। और जाने से पहले, चूंकि सोनाली बेंद्रे की ये स्टोरी हमको लाइफ में यही बताती है कि हर पल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर पल कितना ज्यादा खास है और हर पल अपने आप में एक नई लाइफ है।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी अपनी जया।
12: और मैं हूं समता। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं गांव, परंपरा, विज्ञान और जीवन से जुड़ी एक बहुत खास चर्चा।
13: हां जी, तो आज का विषय है मल मास, जिसे लोग पुरुषोत्तम मास और अधिमास के नाम से भी जानते हैं।
14: ये महीना आखिर क्यों आता है? इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? क्या लोग विवाह और शुभ कार्य टालते हैं? और क्या सच में इस महीने का संबंध केवल आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान से भी है?
11: तो आइए आज की इस सुंदर सुबह में भक्ति, ज्ञान और जीवन की बातों के साथ शुरू करते हैं हमारा विशेष एपिसोड। अरे हमारे यूपी में तो मलमास का माहौल ही अलग होता है। गांव में शाम होते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, सारी औरतें एक साथ मिलकर के भजन गाती हैं, और वहां बैठे बच्चे तो प्रसाद का इंतजार करते रहते हैं।
12: बिल्कुल जया, पहले गांव में इसकी परंपरा ज्यादा दिखाई देती थी। सुबह सुबह मंदिरों में भजन, घरों में गीता का पाठ, सुंदरकांड, तुलसी पूजा। लेकिन अब शहरों में भी लोग बहुत श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास को मानते हैं।
13: हाँ दीदी, मेरी भाभी लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ हर मोहल्ले में कथा, भंडारे और भजन चल रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर में तो सुबह से ही भीड़ लग जाती है।
14: और सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह लोग इस महीने को बहुत मानते हैं।
9: दीदी, आपको पता है हमारे यूपी में तो इस महीने की सुबह बिल्कुल अलग होती है। भोर होते ही मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण की धुन आने लगती है और घरों में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करने चली जाती हैं।
12: सही कहा। और अब शहरों में भी लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर पूजा पाठ करने लगे हैं। कई लोग इस महीने में मोबाइल और दिखावे से दूर रहकर मन की शांति को खोजते हैं।
13: कल ही मैं बाजार गई थी, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि मलमास चल रहा है, अभी शादी की खरीदारी बाद में करेंगे। कितनी श्रद्धा से लोग आज परंपराओं को निभाते हैं।
14: और एक बात मैंने देखी है, इस महीने में लोगों के अंदर सेवा की भावना भी बढ़ जाती है। कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं पानी की व्यवस्था, तो कहीं भंडारे हो रहे हैं।
12: यही तो इस महीने की सबसे सुंदर बात है। मलमास केवल पूजा का महीना नहीं बल्कि मन को विनम्र बनाने का महीना है।
9: सच में दी, गांव हो या शहर, इंसान कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर अपनी जड़ों और आस्था से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।
13: और शायद यही भारत की खूबसूरती भी है, जहां विज्ञान भी है, परंपरा और भक्ति भी।

0: और गांव में तो लोग एक दूसरे के घर जाकर कथा भी सुनते हैं, कहीं भागवत कथा, कहीं विष्णु पुराण, कहीं भजन संध्या। ऐसा लगता है कि पूरा गांव एक परिवार बन गया हो।
1: मध्य प्रदेश में मेरी मौसी रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ भी पुरुषोत्तम मास में बड़े बड़े सत्संग होते हैं। गुजरात में तो लोग इसे बहुत ही विशेष मानते हैं। वहाँ मंदिरों में रात रात भर भजन चलते हैं।
2: राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़

0: राम को मंदिर जाती हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दान सेवा का विशेष महत्व है, लेकिन सेवा दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मन से होनी चाहिए।
2: और सच कहूँ दी, गांव में कितना अपनापन होता है ना, वो मन को ना बिल्कुल छू सा लेता है। शाम को सब लोग मंदिर के बाहर बैठकर भजन सुनते हैं, बच्चे एकत्र होकर के खेलते हैं, बड़े कथा सुनाते हैं, कितना मनमोहक और सुंदर वातावरण होता है।
0: शहरों में भले ही ऊंची ऊंची इमारतें हों, लेकिन ऐसे महीनों में लोगों को अपनी मिट्टी और परंपरा याद आ ही जाती है।
3: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, मन को शांति तो आखिर भक्ति और अपनेपन से ही मिलती है।

0: अरे दीदी, अब वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान विष्णु इस महीने को अपना नाम दिया था। पिछली बार आपने थोड़ा बताया था, लेकिन आज पूरा सुनाइए, ऐसा कि सुनते सुनते मन भर जाए।
1: बहुत पुरानी बात है बहनों, इतनी पुरानी, जब धरती पर इंसान का मन आज जितना भारी नहीं हुआ करता था। तब समय के 12 महीने थे, हर महीने का अपना सम्मान था, अपना उत्सव था, अपनी पहचान थी। किसी महीने में दीपों का त्योहार, किसी में रंगों की होली, किसी में विवाह के मंगल गीत, किसी में फसल की खुशियाँ।
2: ओ, मतलब हर महीने के आने का लोग इंतजार करते होंगे।
1: हाँ, लोग महीनों का स्वागत करते थे। चैत्र आता था तो नए साल की खुशी, सावन आता था तो झूले और कजरी, कार्तिक आता था तो दीपों की जगमगाहट। हर महीने के पास कुछ था जिस पर उसे गर्व था। लेकिन
3: लेकिन क्या सुनता?
1: एक महीना ऐसा था जो सबसे अलग था। वह अतिरिक्त महीना था जिसे बाद में लोग मलमास कहने लगे। उसके पास न कोई त्योहार था, न कोई शादी ब्याह, न कोई उत्सव, न कोई मंगल गीत। जब वह आता, लोग कहते, अरे अभी शुभ काम मत करो, किसी घर में शहनाई नहीं बजती, कहीं बारात नहीं निकलती, कहीं नए कपड़ों की खरीदारी नहीं होती। धीरे धीरे उस महीने को लगने लगा कि शायद वह बेकार है, और सचमुच बेकार। हाँ, कहते हैं वह महीना बहुत उदास रहने लगा। जब बाकी महीने आते तो धरती पर खुशी छा जाती, मंदिर सजते, ढोल बजते, घरों में पकवान बनते, लेकिन उसके आने पर लोग कहते, अभी रुक जाओ, अभी शुभ समय नहीं है। वह चुपचाप सब सुनता रहता।
2: जैसे किसी परिवार में एक बच्चा हो जिसे सब नजरअंदाज कर दें।
1: बिल्कुल सही कहा, वही पीड़ा थी उसकी। धीरे धीरे वह अकेले रहने लगा, उसे लगने लगा कि उसका कोई अपना ही नहीं है।
3: फिर उसने क्या किया?
1: एक दिन वह दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने की शक्ति केवल विष्णु भगवान के पास है, तुम उनके पास जाओ।
0: फिर वो भगवान विष्णु के पास गया।
1: हाँ, कहते हैं वह रोता हुआ वैकुंठ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन टूटा हुआ था। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं, किसी को मेरा इंतजार नहीं रहता, जब मैं आता हूँ तो लोग खुश नहीं होते, क्या मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ है? यह सुनते ही भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर गईं। आंसू लेकर जो भी आया, प्रभु ने उसे अपनाया, जिसके मन में दर्द छिपा था उसको गले लगाया।
2: फिर भगवान ने क्या कहा?
1: भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने उस दुखी महीने को उठाकर अपने पास बिठाया, फिर बोले, सुनो, संसार अक्सर बाहरी चमक को देखता है, जिसके पास उत्सव है लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो शांत है, जो भीतर से गहरा है, उसका महत्व लोग देर से समझते हैं।
0: वाह, क्या बात है।
1: भगवान ने आगे कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, गरीबों की मदद करेगा, उसके मन को शांत करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी।
3: मतलब जिसे सब अशुभ समझ रहे थे, भगवान ने उसे सबसे पवित्र बना दिया।
1: हाँ, यही तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है।
2: दी, सच कहूँ तो ये कहानी केवल महीने की नहीं लगती, ये तो इंसान की भी कहानी लगती है।
1: बिल्कुल, कई लोग जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनकी कद्र नहीं करता, लेकिन समय बदलता है, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का मूल्य कम नहीं होने देते।
0: वो अब समझ में आया कि लोग इस महीने में इतना भजन और सेवा क्यों करते हैं।
1: क्योंकि ये महीना हमें विनम्र सिखाता है, यह सिखाता है दूसरों का अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, और जो अकेला है उसका साथ दो।
3: आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं।
1: और इसीलिए ऐसी कथाएं जरूरी हैं, क्योंकि ये केवल धर्म नहीं सिखाती, इंसानियत भी सिखाती है।
2: सच, अगर हर इंसान इस कथा का अर्थ समझ ले तो शायद दुनिया थोड़ी और सुंदर हो जाए।

0: इस महीने में आखिर किस भगवान की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है?
1: इस महीने को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। विशेष रूप से लोग भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस महीने को सम्मान दिया था।
2: दीदी, कल हमारे गांव में शाम को गीता पाठ हो रहा था और कल ही मैंने देखा कि मंदिर में इतनी भीड़ हो गई कि लोग ना बाहर खड़े होकर भजन सुन रहे थे।
3: हाँ, और बस स्टेशन से लेकर रेलवे तक जगह जगह भंडारे लगे हैं। कोई शरबत बांट रहा है, तो खिचड़ी, तो कोई फल और ना जाने क्या क्या।
0: मुझे तो सबसे अच्छा तब लगा जब छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था।
1: यही तो इस महीने की सुंदरता है। ये महीना केवल पूजा का नहीं, सेवा और विनम्रता का भी है। नाम जपो और प्रेम बांटो, यही प्रभु का ज्ञान। सेवा से खिल उठता है सूना मन।
4: मलमास आवते पूरे गांव के वातावरण बदल जात रहा। लोग सभे सवेरे उठ के जल्दी नहाए, नदी में जात रहे और फिर ओकरे बाद मंदिर जात रहे।
3: आज भी गांव में यह परंपरा काफी बची हुई है और अब शहरों में भी लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाने लगे हैं।
4: अरे बहुत ज्यादा पहले तो लोग यह महीना में यहाँ झूठो बोले से डरात रहे। घर में सादा बूदा खाना बनत रहा और शाम होते सभे कथा सुने जात रहे।
2: समता दी, लेकिन भगवान ने यह महीना बनाया ही क्यों?
1: अच्छा अब सुनो, इसका वैज्ञानिक कारण। हमारी धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के हिसाब से एक साल लगभग 365 दिनों का होता है, लेकिन हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है। चंद्रमा के हिसाब से ये साल लगभग 354 दिनों का होता है।
2: मतलब दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर।
1: बिल्कुल, ये साल लगभग 11 दिन कम पड़ जाते हैं। आप सोचो, अगर ये अंतर ऐसे ही बढ़ता जाए तो धीरे धीरे हमारे त्योहार मौसम से हटने लगेंगे। होली सर्दी की जगह बरसात में आने लगेगी। दीपावली गर्मियों में पड़ सकती है।
3: अरे हाँ, फिर तो पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ हो जाएगा।
1: इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बुद्धिमानी से लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। यही कहलाता है अधिक मास।
0: मतलब ये केवल आस्था नहीं, पूरा खगोल विज्ञान भी है।
1: हाँ, यही हमारे भारतीय ज्ञान की महानता है। हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के हमारे ऋषियों ने आकाश देखकर इतना सटीक गणित बना दिया था।
2: दीदी, सच में ये सोचकर आश्चर्य होता है, आज हम मोबाइल और मशीनों के बिना कुछ नहीं कर पाते। और तो और, उस समय के लोग इतना बड़ा हिसाब लगा लेते थे।
1: हाँ, इसीलिए हमारे त्योहार केवल धार्मिक नहीं है, उनमें प्रकृति और विज्ञान भी छुपा है।
3: और शायद इसीलिए लोग इस महीने को इतना सम्मान देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि यह महीना हमें दो बातें सिखाते हैं, एक समय का संतुलन, दूसरा जीवन का संतुलन।
0: जीवन का संतुलन?
1: हाँ, जैसे कैलेंडर में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा गया, वैसे ही इंसान के जीवन में कभी कभी रुक कर खुद को संतुलित करना जरूरी होता है। आज इंसान लगातार भाग रहा है, काम, पैसा, चिंता, प्रतियोगिता, लेकिन मन थक जाता है, रिश्ते थक जाते हैं। मलमास कहता है, थोड़ा रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने व्यवहार को देखिए।
3: सच बात है बहन जी, देखो पहले लोग शाम को साथ साथ बैठा करते थे, अब तो सब के सब मोबाइल में लगे रहते हैं।
1: इसलिए ऐसे महीने बहुत जरूरी हैं। ये हमें फिर से इंसान बनना याद दिलाते हैं।
2: सच में दी, मलमास केवल एक महीना नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे भगवान इंसान से स्वयं आकर कह रहे हों कि थोड़ा रुक जाओ और अपने मन को फिर से अच्छा बना लो।

0: दी, मैं एक बात पूछूं?
1: पूछो जया।
0: क्या आपको पता है कि आजकल के लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन खाली खाली रहता है?
1: हाँ जया, यही तो आज के समय का सबसे बड़ा दुख है। पहले लोगों के पास सुविधाएं कम थी, लेकिन मन में धैर्य ज्यादा था। अब सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन बहुत जल्दी टूट जाता है।
2: पहले दादी और नानी कहानी सुनाती थी, अब बच्चे मोबाइल देकर सो जाते हैं।
3: और सबसे ज्यादा अकेले तो बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चे बाहर नौकरी में और घर में सन्नाटा।
1: तुमने ध्यान दिया है, पहले शाम होते ही लोग घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते थे। कोई रामायण की चौपाई सुनाता था, कोई खेत की बात करता था, कोई बच्चों को कहानी सुनाता था। और अब शाम होते ही दरवाजे बंद, टीवी चालू, मोबाइल हाथ में और मन अंदर से खाली।
0: दी, क्या यही कारण है कि अब लोग भक्ति और परंपरा की ओर फिर से लौट रहे हैं?
1: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, मन को शांति आखिर प्रेम, विश्वास और अपनापन ही देते हैं। तुमने देखा होगा, जब घर में बहुत तनाव होता है तब लोग मंदिर जाते हैं, जब मन टूटता है तब भजन सुनते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भगवान को याद करते हैं।
3: सच, कई लोग कहते हैं कि भक्ति बूढ़ों के लिए होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति तो थके हुए मन के लिए होती है।
1: वाह, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी।
3: बेटियों, पहले मलमास आते ही लोग अपने मन को भी साफ करते थे। अगर किसी से झगड़ा हो गया हो तो जाकर माफी मांग लेते थे। अगर किसी गरीब की मदद करनी हो तो चुपचाप कर देते थे। उस समय दिखावा कम था, सच्चाई ज्यादा थी। आजकल तो दान देकर फोटो भी खिंचवाते हैं।
1: हाँ, लेकिन भगवान शायद वही काम स्वीकार करते हैं जिसमें अहंकार कम हो।
0: दी, जरा ये बताइए, आपको कभी डर लगता है?
1: डर तो लगता है जया, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, जब तक इस देश में कोई दादी बच्चे को कहानी सुनाती रहेगी, तब तक मंदिर की घंटियाँ बजती रहेंगी। जब तक कोई भूखे को रोटी खिलाता रहेगा, तब तक हमारी संस्कृति पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
3: पुरुषोत्तम मास में रोज एक दीप जलाना चाहिए।
1: देखा, यही परंपरा है। किताबों से ज्यादा बच्चे घर के वातावरण से सीखते हैं।
0: सच में, अगर घर में हर समय बड़े लोग आपस में झगड़ते रहेंगे तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे?
1: और अगर घर में भजन हो, प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, तो वही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं।
2: आप लोगों ने एक बात का ध्यान दिया है ना, मलमास में लोग थोड़ा सरल हो जाते हैं। कोई महंगे कपड़ों की बात नहीं करता, कोई दिखावे की चिंता नहीं करता, बस मन को शांत रखने की कोशिश करता है।
1: क्योंकि ये महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे जरूरी चीजें खरीदी नहीं जा सकती हैं। शांति, प्रेम, अपनापन, विश्वास
3: और समय।
1: आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं बचता।
0: कल ही एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटे पैसे भेज देते हैं लेकिन उनको बात करने का समय नहीं होता। सुनकर मन बहुत दुखी हो गया। रिश्ते केवल खून से नहीं होते, वो समय मांगते हैं। दो मीठे शब्दों से ही सूने मन में भी खुशी भर जाती है।
1: मलमास हमें यही सिखाता है, जीवन केवल कमाने के लिए नहीं मिला, थोड़ा समय अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने मन को भी, अपने मन के लिए भी निकालो।
2: और शायद भगवान के लिए भी।
1: हाँ, लेकिन भगवान को केवल मंदिर में मत खोजो। अगर कोई बूढ़ा अकेला बैठा हो तो तुम उससे दो बातें कर लो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई प्यासा पक्षी हो तो तुम उसे पानी दे दो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई दुखी इंसान हो तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, वहाँ भी भगवान है।
4: समता दीदी, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते?
1: हाँ बेटा, शायद सबसे ज्यादा वही रहते हैं।
3: आज की बातों ने मन हल्का कर दिया।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मलमास केवल कैलेंडर का महीना नहीं, मन को ठीक करने का समय है।
0: और शायद रिश्तों को फिर से जोड़ने का भी।
1: हाँ बहनों, जब जीवन बहुत उलझ जाए, जब मन बहुत थक जाए, जब रिश्तों में दूरी आने लगे, तब थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक दीप जलाना चाहिए, थोड़ा भजन सुनना चाहिए और किसी अपने से दिल की बात कहनी चाहिए। क्योंकि अंत में इंसान को याद वही रहता है कि किसने उसे प्रेम दिया।
2: थोड़ा प्रेम बचा लो मन में, थोड़ी दया बचा लो, दौड़ बहुत ली जीवन भर अब, थोड़ा खुद को पालो, पुरुषोत्तम मास ये कहता है, मन का दीप जला लो।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेस्ले 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
12: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
11: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
12: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है, ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
11: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
12: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
11: अच्छा।
12: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
11: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं।
12: बहुत सारी,
11: जैसे?
12: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
11: जी।
12: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना।

हां जी, केके की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं दिल नशी और आपने ट्यून कर लिया 10.6 FM। यह गोदा शहर की धड़कन पर आपकी आरजुति मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाला स्टूडियो में। घड़ी में वक्त हो चला है 12:12 बाय स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव, मंडे का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ बढ़िया, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरटेनिंग लेकर आते हैं। फिलहाल आज जो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट आजकल हमारी सीरीज बन चुकी है और हम दुनिया दराज से सिर्फ एक चीज़ पकड़ रहे हैं और वो है यूनिक। बिकॉज मेरा पहला लेटर यू है और यू से यूनिक है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए भी

0: हमारा रिचुअल अलग है, बाकियों का रिचुअल बिल्कुल अलग है। कुछ लोग हैं जो अलग काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग तरीके से किसी का वेलकम करते हैं। अब आप अगर खाने की टेबल पर बैठे हो और आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है तो आप इरिटेट हो सकते हो, लेकिन कुछ देशों में ये खाने के बाद डकार लेना, शोर मचाना अब बड़ा नेसेसरी होता है। अदरवाइज उन्हें लगता है कि आप उनकी हॉस्पिटैलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी आपको कुछ सूझ नहीं रही है, और इसको मानकर वो अपनी तौहीन समझ लेते हैं। अब भैया बताते हैं वो कौन से देश हैं, वो क्या हैं, किस लिए हैं, उनके यूनिक ट्रेडिशंस क्या कुछ कहते हैं, ताकि अगली बार जब आप उनके देश में कदम रखें तो आप इन ट्रेडिशंस को अपने दिमाग में साथ लेकर जाएं। जिस तरह से आप अपना बैकपैक करते हैं उसी तरह से इसको भी अपने दिमाग में रखें, और जब वहां जाएं तो बिल्कुल वही करें जो वो चाहते हैं। अदरवाइज भैया उन्होंने मुंह फुला लिया तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा, बताइए क्या होगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए छोटे से ब्रेक को, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और हम आपको सुनाते हैं एक बढ़िया सा पंजाबी गाना जो अभी हम एंजॉय कर रहे थे और दोबारा से एंजॉय करेंगे वो भी आपके साथ। सुनते रहिए ज्ञानासली लाइव, आपके अपने रेडियो रेडियो ज्ञानासली 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड,
1: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

और पगला सा दीवाना सा। और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनल स्टेशन 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति, और आपने ट्यून कर लिया है आपके अपने एफएम पर आपका प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव। और हमने इतनी बार आप बोला है, बताइए कौन सा अलंकार लगा फिलहाल के लिए। दोस्तों हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन ट्रेडिशंस की। उन बातों को जानना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी जब आप जाते हैं किसी देश में घूमने। और इससे पहले कि भैया कोई ये कह दे तुम्हें घूमना नहीं आता, इससे अच्छा है कि हम सीख लेते हैं कि भैया दूसरे देशों में हो क्या रहा है। अब हमारे यहाँ तो बोलते हैं अतिथि देवो भव, जिसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा डीप है। और कहते हैं कि भैया अतिथि भगवान स्वरूप होता है, भगवान के समान होता है, यानी कि मेहमान नहीं सीधे भगवान आपके घर चले आ रहे हैं और आप उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। जो भी होता है, मम्मी कोने में से वो बिस्किट और नमकीन के पैकेट निकालती हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होते हैं। आपको लगता है ये मेरे घर के अंदर भी था कुछ ऐसा। हम खुद भी, मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मेहमान घर पे आते हैं तो प्लेट्स की वो सेट निकल रहे होते हैं, वो चीज़ें निकल रही होती हैं जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। और मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरे ही घर की चीज़ें हैं, क्योंकि आज से पहले कभी मुझे देखी तो नहीं है, बट होती हैं, होती हैं। और वो रखते हैं और हमेशा जब मेहमान आती हैं तभी निकालते हैं। बट इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलती है, और वो ये है कि भाई कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने खाने के वक्त में, यानी जब आप टेबल पे बैठते हो खाना खाने के लिए, उस वक्त आपके हाव भाव को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और वो वहाँ से डिसाइड करते हैं कि कहीं आप उनके ट्रेडिशंस को, उनके मेहमान नवाजी को नकार तो नहीं रहे, उनकी तौहीन तो नहीं कर रहे। और वो जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम खाने के टेबल पर बैठते हैं और हमारे सामने टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना होता है, तो हम अपनी असलियत पर आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं भैया कि इनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कई बार हम अपने ही घर में बैठे होते हैं और खाने में नमक कम होता है तो हम बड़े ही प्यार से कह देते हैं मम्मी नमक पास कर दो। अब हमारे लिए तो बड़ा इजी होता है कह देना कि नमक दे दो, बट अगर यही लाइन आप जाके इजिप्ट में बोल देते हैं, यानी कि मिस्र में बोल देते हैं, तो वहाँ के लोग इसको तौहीन समझ लेंगे। हुई ना बड़ी बात। अब भाई आपके लिए जो चीज़, जो नमक खाने में कम था, वो सिर्फ नमक मांगने का एक जरिया था, बट उनके लिए ये तौहीन थी। अगर आप इजिप्ट में किसी के घर खाना खा रहे हो तो भूल कर भी अलग से नमक ना मांगे। वहाँ इसका मतलब ये होता है, वहाँ उसका मतलब ये निकाला जाता है कि आपको होस्ट का बनाया खाना, यानी कि जिस इंसान ने वो खाना बनाया है, वो आपको पसंद नहीं आया और आप इसलिए नमक मांग रहे हो। कितनी अजीब बात है यार, मतलब मैं खाने में नमक कम कर दूँ तो आपको ऐसा ही खाना पड़ेगा, मांग नहीं सकते, नहीं तो हमको बुरा लग जाएगा। जस्ट इमेजिन, हम तो इमेजिन कर रहे हैं। वेल अच्छी बात है, जो नमक कम खाते हैं वो तो बड़े खुश होंगे कि हमको मांगने की दिक्कत ही नहीं है, बट जो शायद नमक ज़्यादा खाते हैं उनके लिए फीका फीका सा खाना लगने वाला है फिलहाल। तो कोई बात नहीं, होस्ट की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं, और हमारे भारत में भी भैया होस्ट की फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो हमारी मम्मियाँ दिन रात खाना बनाती हैं, मम्मी के साथ साथ बहन भी बनाती हैं, मौसी भी बनाती है, दादी भी बनाती है, चाची भी बनाती है, लेकिन हम किसी की तारीफ ही करना पसंद नहीं करते। हम बोलते हैं तारीफ कर देंगे तो ये पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, आसमान नीचे हो जाएगा, ज़मीन ऊपर हो जाएंगे, हम उल्टे हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए हम कभी कहते ही नहीं हैं कि खाना स्वादिष्ट बना है। इवन खाना बहुत अच्छा भी बनता है तो भी हम जाकर नहीं कहते, तारीफ़ नहीं करते। और बेचारी मम्मियाँ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बैठी होती है कि काश काश कोई आज बोल दे कि खाना बहुत अच्छा बना है, सब्ज़ी अच्छी बनी है, और वो तारीफ़ सुनने के लिए वो हर दिन मेहनत करती हैं। और हमने कहीं सुना था खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, खाना सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा होता है। तो भैया अगली बार तारीफ़ कीजिएगा, और नमक कम होना तो इजिप्ट की बात को ध्यान में रखिएगा कि नमक नहीं मांगते, नहीं तो होस्ट की तौहीन हो जाती है, यानी होस्ट आपसे नाराज़ हो जाता है ये सोच कर कि आपको उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया, और हो सकता है अगली बार वो आपको खाना खिलाए भी ना। डेंजरस जोन है भैया, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आई रहते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और बताते हैं दूसरे देशों में और क्या हो रहा है। मिस्र ने तो कह दिया कि हम नमक नहीं देंगे, नमक मांग नहीं सकते हो, क्या किसी और देश में भी ऐसा कुछ है कि आपको नमक नहीं लेना है, या किसी ने मिर्च को भी अलाउ नहीं करा है? अब बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। आप इंजॉय कीजिए उदित नारायण और लता जी की आवाज़ में अनदेखी सी अनजानी सी। स्टे ट्यून्ड।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आंखें खुली हो या हो बंद, लेकिन अगर आपने खाना खाते टाइम आवाज निकाली, सुड़ सुड़ की आवाज निकाली, मम्मी थप्पड़ लगा देती है, कहती तमीज नहीं है खाना खाने की तुमको। और ये लाइन हमने अक्सर अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए जब भी बैठते हैं मुंह बंद करके बैठते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन जज कर ले कि देखो ये सुड़ सुड़ करके खाना खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तमीज वमीज तो है ही नहीं। और ये लाइन से हमें हमेशा से खौफ रहा है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां पर अगर आपने सुड़ सुड़ नहीं किया तो आपको जज कर लिया जाएगा कि कैसे इंसान है, तुम्हें खाने की तमीज़ नहीं है यार, तुम्हारे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। सोचिए कितना बदलाव है। हम एक ही अर्थ पर रहते हैं, एक ही अर्थ के अलग अलग रीजन्स में रह सकते हैं, लेकिन ये देश भी हमारे एशिया में ही आता है और एशियन ही है, एशियन कंट्री है, और हमारी एशियन कंट्री जहाँ इतनी अलग है वहाँ उनके देश में कुछ अलग ही चल रहा है। फिलहाल हम आपको बताते हैं, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आरज्योति के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम में है, गोना शहर की धड़कन पर आपका एक बार वापस से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये जो देश है, यहाँ पर जब आप खाना खाने बैठो, स्पेशली नूडल्स, हाँ हाँ वही रामेन जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रखे हैं, और एक टाइम था जब हम हर नूडल को बस मैगी कह के पुकार दिया करते थे, और दुकान वाला भी समझ जाता था नूडल्स का मतलब मैगी, और हमको लगा ही नहीं था कि मैगी एक ब्रांड है, मैगी नूडल्स नहीं है। तो भाई जब भी आप नूडल्स खाने बैठते हैं या आपको सूप दिया जाता है तो आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं स्लप की, यानी कि वो सुड़ सुड़ की आवाज़ आपको निकालनी ही पड़ेगी। वहाँ इसका मतलब होता है कि खाना बेहद स्वादिष्ट है, और शेफ़ को ये अपनी तारीफ लगती है कि अगर आपने आवाज़ निकाली है तो मतलब मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, और अगर आपने आवाज़ नहीं निकाली है तो कैसे इंसान हो, तुम तमीज़ नहीं है तुम्हें खाना खाने की, तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी तौहीन कर रहे हो। यहाँ अगर हम आवाज़ निकाल देते हैं तो लोग कहते हैं टेबल मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम टेबल के लिए हो ही नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से। और वहाँ पर अगर आप नहीं कहोगे, अगर आवाज़ नहीं निकालोगे तो कहेंगे कि भैया शेफ़ की तौहीन है, अब भाग जाओ यहाँ से। बताओ क्या करे इंसान, यहाँ रहे तो यहाँ वाला सीखे, वहाँ रहे तो वहाँ वाला सीखे। और ऐसा एक्चुअल में होता है, जब भी कोई जापान में जाता है और वहाँ जाकर स्पेशली नूडल्स या सूप ऑर्डर करता है, तो वहाँ के जितने भी जापानी लोग होते हैं ना, वो उसको बड़ी तिरछी निगाहों से देख रहे होते हैं कि क्या ये आवाज़ निकालेगा या नहीं, क्या इसको मेरे ट्रेडिशन पता है या नहीं। अगर पता है तो सबसे पहले ये हाथ जोड़कर खाने को, खाना देने वाले को नमस्कार करेगा, खाना खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगा, उसके बाद उठाएगा अपना चॉपस्टिक, आराम से इसको खोल खाल के आराम से खाना शुरू करेंगे और सुड़ सुड़ की आवाज़ निकालेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो आपको तिरछी निगाहों से, वो जो हमारा एक डायलॉग था ना कि बॉम्बास्टिक साइड आईस, बिल्कुल उसी आँखों से वो जज कर लेते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, आप मैनर लेस इंसान है। और शेफ़ कहता है आज के बाद तुम मेरे रेस्टोरेंट में दिख मत जाइयो क्योंकि तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया। हालांकि ऐसा शेफ़ आपके मुंह पे नहीं कहने वाला है, ये मेरी दिल की बातें हैं जो मैं शेफ़ के दिल से लेकर आई हूँ, और मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि शेफ़ के दिमाग में यही चलता है कि भाई उनको खाना जो उन्होंने बनाया है वो आपको पसंद नहीं आया, भले ही वहाँ पर हज़ारों लोग खाना खा रहे हों, हज़ारों लोग सेम चीज़ कर रहे हों, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो यही मान लेंगे कि आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगा, आपको खाना यम नहीं लगा। तो भाई इंडिया में अगर आप आवाज़ें निकालते हैं तो इसको जितना ही मैनरलेस समझा जाता है, उतना ही जापान में इसको मैनरफुल समझा जाता है। अब आप सोच लीजिए, यहाँ बैठ के आवाज़ निकालनी है कि जापान में जाना है वहाँ नूडल खाते खाते आवाज़ निकालनी है, और अगर आप नहीं निकालेंगे तो वहाँ के लोकल लोग आपको बहुत जज करेंगे। प्लस आपको पता ही होगा जब भी कोई फॉरेनर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एक्चुअल में यही होता है, जब भी कोई फॉरेनर जाता है और उनके ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमेशा जज करते हैं, हालांकि आपके मुंह पे नहीं कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत नम्र दिल होते हैं, नर्म दिल, और वो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं अपनी हर्ट हुई फीलिंग्स को साइड में रख कर। जैसे हमारे इंडिया के लोग बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं, ऐसे जापानीज़ भी होते हैं, इवन अगर वो रोड क्रॉस भी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले गाड़ियाँ जो रुक जाती हैं उनको झुक कर थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी गाड़ी रोकी, थैंक यू सो मच, और उसके बाद वो पास करते हैं। यहाँ तो आप हाथ दिखाते हैं और इसके बाद आप निकल जाते हैं, और नो सॉरी नो थैंक यू, यहाँ तक कि भिड़ने के बाद यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हम लड़ जाते हैं, यहाँ तुमको दिखाई नहीं पड़ता, भले गलती हमारी ही हो लेकिन हमको उससे सिखाते हैं तुमको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो क्या, ये डायलॉग हमने अक्सर चिपकाया है कहीं ना कहीं। फिलहाल आए थे छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं और भी देशों के बारे में, और आप बताइए आपको सुड़ सुड़ करके नूडल्स खाना पसंद है कि या फिर मम्मी के ताने, बताइए बताइए चैट बॉक्स में, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, और आप एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को जो हम मोहब्बतें फिल्म से लेकर आए हैं, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और अभी तक हमने जाना जापान और ग्रीस यानी कि इजिप्ट की बातें। सॉरी, इजिप्ट में हमने जान लिया कि नमक मांगना मना है और हमारी दीपांशी जी कह रही है कि हम अपनी जेब में नमक और मिर्च लेकर चलते हैं। मैम क्या बात है भाई, क्या बात है, आपने हमको आइडिया दे दिया कि हम नमक मांग नहीं सकते पर अपना नमक तो डाल ही सकते हैं ना फिलहाल के लिए। उन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम गैस लाइफ में। और जापान में भैया सुड़ सुड़ की आवाज़ निकालना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अब किसी और देश की, और देश और हम चलेंगे अपने एशिया में ही चाइना की तरफ। भैया हम आपको बताते, चाइना और ईरान में खाली प्लेट का मतलब होता है कि आप अभी भी भूखे हो। हमारे यहाँ खाने को अगर प्लेट में छोड़ दिया जाए तो मम्मी के साथ साथ पूरा खानदान बैठ जाता है सुनाने के लिए कि इतना मेहनत से कमा के लेके आते हैं, तुम्हें अन्य देवता की इज्जत नहीं करनी आती, न जाने क्या क्या हमें सुनने को मिल जाता है। और हमको लगता है एक भी दाना छूटना नहीं चाहिए, हमारा बस चलता है खाना टेस्टी बनता तो हम प्लेट चाट जाते हैं, स्पेशली चाट जाते हैं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कटोरी पूरी चाट दी थी, लोगों को लगा था ये कटोरी धुली हुई है, वो तो बाद में पता चला कि नहीं ये मैंने ही खाई है। और इस दौरान अगर आप ऐसा जापान के अलावा यानी कि चाइना और ईरान में कर देते हो तो लोग आपको भूखा समझ लेंगे, उनको लगेगा कि होस्ट जो आपको खाना दिया वो कम पड़ गया। वो ये नहीं देखेंगे कि खाना बहुत टेस्टी था, वो ये देखेंगे कि खाना कम है और हमारे जो मेहमान हैं उनका पेट नहीं भरा है। इसीलिए अगर आपका खाना प्लेट में पूरा ख़त्म होने वाला हो और आपका पेट ना भरा हो तो भी आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो होस्ट को लगता है कि उन्होंने आपको काफ़ी खाना नहीं दिया था इसीलिए आपने प्लेट को पूरा चाट लिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। वो आपको इस बात पे तारीफ़ें नहीं देने वाले हैं, ना ख़ुद की तारीफ़ लेने वाले हैं, वो यही सोचेंगे कि उनके अंदर से कुछ तो कमी थी, उन्होंने खाना पक्का नहीं दिया, उनको तो और खाना देना चाहिए था। हो सकता है कोई यही भी सोच ले कि कितना खाते हो यार फिलहाल। इसीलिए वहाँ पर प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि होस्ट को लगे कि आपका पेट भर चुका है और आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं और इसको वो अपनी तारीफ समझते हैं, लगी ना अलग से बात। वहीं एक ऐसा भी देश है जहाँ पर अगर आप पिज़्ज़ा जैसी चीज़, फ्राइज़ जैसी चीज़ या फिर कोई भी फिंगर फूड अगर आप हाथ से खाते हैं तो इसे बदतमीज़ी माना जाता है। अब आप सोचें, आप पिज़्ज़ा खाने बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने ऑर्डर किया है आई वुड लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा मार्गरीटा और आपको वो मिल भी गया तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आपको वो छुरी और काटा लेकर यानी कि नाइफ और फोक लेकर ही खाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ के आसपास के लोग सोचेंगे बदतमीज़ इंसान हो आ रहा और आप बदतमीज़ी कर रहे हो। हर चीज़ छुरी और चाकू से ही खानी पड़ती है। इवन सोचिए अगर आप चावल खाने भी बैठे हो ना और आप शुद्ध देसी इंसान हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया हाथ से ही खाएंगे, दाल चावल मिला है नहीं खा सकते, आप वहाँ भी उसको कांटे वाले चम्मच से खाने वाले हैं, कितना मेहनत का काम है। अब मैं तो घर पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि कांटे वाले चम्मच से चावल कैसे खाया जाता है, कभी आपने की ऐसी प्रैक्टिस? क्योंकि हम करते हैं, मम्मी कहती है घर में बाकी चम्मच खत्म हो गए क्या, जब हमें यही मिला है जैसे तुम नूडल्स खाती हो, हालांकि नूडल्स खाए भी ज़माने हो गए फिलहाल। आप बताइए कौन सा देश हो सकता है आपके नज़रिए में, और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
4: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइव और घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। और हमने आपको बताया दुनिया भर के वो ट्रेडिशंस, वो चीजें, वो बातें जो एक मेहमान के साथ की जाती हैं। यूं तो और देशों में और भी यूनिक और सबसे हटकर कुछ रस्म और रिवाज हैं जो मुझे आपको बताने थे, लेकिन घड़ी ने हमें धोखा दे दिया है। और इसी के साथ अब मैं चाहूंगी कि भाई जो भी लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अपना फीडबैक आज का जरूर दें कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। प्लस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, एप्लीकेशन से या फ्रीक्वेंसी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए आपकी अपनी ज्ञान सी लाइफ में। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको इस गाने के साथ, सानो एक पल चैन ना सजना तेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
1: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
1: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
0: जी।
1: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
1: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
1: और इसका इलाज भी पूरी तरह।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की दूर करेंगे बहुत से भ्रम सीखेंगे सिखाएंगे पैसे भी अपने बचाएंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त जीवन रहेगा खुशहाल अब खत्म हुआ इंतजार सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर
2: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसके जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
3: नमस्ते आरजी
2: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
4: आप दोनों लोग हमें न बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
3: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
2: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
2: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
3: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत ज़रूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे ज़रूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
4: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
2: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसके उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है।

0: सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
1: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
0: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
1: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
0: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
1: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
0: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
1: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें, माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
1: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सबकी भूमिका होती है।
1: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
0: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
1: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
0: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
0: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
1: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
0: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को

0: खाना नहीं सहारा चाहिए, बच्चे को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं बल्कि सही जानकारी चाहिए।
1: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
0: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
1: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे।
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
3: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
2: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: पहला दूध पहला प्यार,
0: पहला घंटा जीवन का आधार,
1: माँ का साथ पिता का हाथ,
0: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
1: सेहत सही लाभ कई।

0: भाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। और प्यारे से दिन यानी कि माय फेवरेट डे में से एक दिन होता है मेरा फेवरेट डे, यानी कि संडे तो होता ही है, बट संडे आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि संडे इसलिए पसंद नहीं होता है क्योंकि मैं घर में रह करके बहुत बोर हो जाती हूँ और आप सभी से मिल नहीं पाती, स्पेशली अंशिका से नहीं मिल पाती, यहाँ के कुछ मेरे खास हैं मैं उनसे नहीं मिल पाती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मैं अंशिका से बोलूंगी, अंशिका चलो हम संडे को भी हम लोग एक शो ले लेते हैं, हम लोग संडे को भी आएंगे आप सभी से मिलने के लिए। ठीक है अंशिका, भविष्य में ऐसा हम लोग सोचने की,
9: ऐसा सोचेंगे,
8: ऐसा विचार रहे हैं। ठीक है,
9: कोशिश करेंगे यूनिवर्स तक पहुंचाने,
8: यूनिवर्स तक पहुंचाने की। अरे यूनिवर्स तक नहीं पहुंचाना है, हमारे बॉस तक पहुंचाना है। हमारे बॉस तक पहुंचाना है। और मतलब नॉट ओनली माई बॉस बट ऑल्सो माई लीडर एंड एब्सोल्युटली जिसको कह सकते हैं ना सनशाइन वाला लीडर है वो. yes, तो उनके लिए तो मैं क्या ही बता दूं, अभी जल्दी ही बर्थडे था उनका एंड सभी लोगों ने विश भी किया उनको और चैट बॉक्स में भी विश किया. एंड ऐसा जो सनशाइन इंसान होता है ना वो हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुनता भी है और समझता भी है. तो हमारे बॉस भी ऐसे ही हैं बॉस, बट वी डोंट से दिस लाइक बॉस. वो बॉस जैसा है भी नहीं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं. ये मैंने इसीलिए उनके लिए बोला क्योंकि मैं उस दिन बोल नहीं पाई थी और हम लोग पता नहीं क्या किस धुन में थे कि हम लोगों ने सर के लिए कुछ बोला नहीं था. और आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर संडे का विचार है तो हम लोगों को बॉस को बोलना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा हमारे प्यारे लिसनर्स को कि वो क्या चाहते हैं कि आज समता एंड आज अंशिका की जो जोड़ी है टॉम एंड जेरी की, क्या वो फिर से संडे को आप लोगों के पास में आए और आप लोगों को आवाज़ सुनाएं. चलो ये तो हमारा एक काम.
9: या फिर आप चाहते हैं मतलब जैसे वीक में एक दिन हमारी आवाज
8: शांति रहे स्टूडियो में, स्टूडियो में शांति रहे.
9: नहीं लिसनर्स उसके मन में क्या?
8: कोई खौफ ना रहे,
9: जनता जनार्दन है.
8: नहीं इन लोगों को मेरा खौफ रहता है ना. अच्छा मुझे एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है, मतलब अच्छी भी लगती है कभी कभी सोचती भी हूँ मैं. अच्छा. कि देखो कॉलेज में लड़कियों के मन में खौफ ठीक है, बाकी स्टाफ के मन में रहता है यार समता मैम से कौन बात करेगा, मतलब लगता है यार. इवन यहाँ जो शॉप है शॉप के भैया लोग भी कहते हैं अच्छा योगा वाली मैम हाँ ले जाओ ये सामान ले जाओ तुरंत. मतलब मुझे ये लगता है यार कि मैं तो एक छोटी सी सीधी सादी प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, तो ऐसा क्या है भाई कि मतलब इतना ज़्यादा लोगों को फियर लगता है मुझसे या पता नहीं क्या. तो सेम थिंग वही लिसनर्स जो कि ना मुझे जानते हैं ना मुझे नहीं जानते तो हैं अब तक जान गए हैं, ना उन्होंने मुझे देखा है ना मेरी उनसे पर्सनली कभी कोई बात हुई है, बट एक डर का जो एक वो रहता है ना माहौल वो क्रिएट रहता है. ऐसा क्यों अंशिका मैं जानना चाहती हूँ.
9: ये तो बहुत ही टफ सवाल है मेरे लिए, मुझे दे दिया गया सॉल्व करने के लिए. तो मैं ये कहूंगी कि किसी किसी का ऑरा होता है ना मैम, जैसे
8: ऑरा
9: तो आपका भी वैसा ही कुछ है. मतलब डर जैसा जैसे होता नहीं सामने से कोई आ रहा होता है, मतलब अच्छे से एक वेल मैनर्ड मतलब, और हम सामने से देखते हैं तो मन में फील आता है अरे ये मैम तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये भी फील आता है बड़ी अच्छी है. फिर बाद में वो एक स्ट्रिक्टनेस वाली जैसे किसी की
8: नहीं, अच्छी तो है वो पास आते आते बहुत नहीं, जैसे एक जैसे
9: हाँ.
8: शेर और शेरनी दूर से ही अच्छे लगते हैं
9: हाँ. राइट सही एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने. इससे मैं एग्री करती हूँ कि जब हम जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए तो हम उसके पिंजरे में नहीं जाते हैं ना, हम कहते हैं बस देख लिया
8: दूर
9: अच्छा,
8: से ही दूर,
9: अच्छा लग रहा है गुड.
8: वो उन्हें दूर से ही मूंगफली खिलाओ, उन्हें दूर से ही केला खिलाओ.
9: हाँ बिल्कुल
8: तो ही ठीक है पास जाओगे तो खतरे से खाली नहीं है.
9: लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मतलब बाहर से जैसे जो भी जब मैं आई थी न्यू तो मुझे भी ऐसे ही लगता था और सुना भी काफी मैंने मैम के लिए कि अरे वो तो
8: तारीफ सुनी थी मेरे लिए
9: हाँ मतलब जैसे जिसकी जो थिंकिंग होती है तो मैंने भी सुना था अरे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है.
8: हाँ, स्ट्रिक्ट ही मेरे लिए हाँ, एक ऑरा बना है हमेशा से.
9: अरे उनसे नहीं, उनसे हम लोग बहुत कम बात करते हैं. मैंने ये भी सुना था इवन कि वो ज्यादा बातें नहीं करती है, वो बहुत शांत और मतलब
8: अपने काम से काम मतलब
9: अपने काम से काम रखती है और स्ट्रिक्ट तो बहुत है, कोई उनके पास ज्यादा जाता नहीं है, उनसे ज्यादा मतलब मिलता जुलता नहीं है.
8: पर मेरे योगा वाले जो बच्चे हैं ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आप उनमें से कोई भी सुन रहा है तो वो मुझे मेरे लिए बताएंगी. मेरे बहुत सारे बच्चे योगा के हैं, इवन 100-150 से ऊपर ही हैं
9: जी.
8: और वो बच्चे उन बच्चों से आप मिल करके देखो तो आपको लगेगा कि हाँ उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन आती है अंशिका कि हम एक, वो लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि मैं एक घर पे माँ हम लोग छोड़ के आते हैं कि चलो थोड़ी देर छुट्टी मिलेगी अपने मन की करेंगे यहाँ पर, लेकिन दूसरी माँ तो यहाँ मेरे योगा रूम में बैठी है, ये नहीं करो मोबाइल नहीं चलाओ इधर नहीं जाओ सीधे घर जाओ कॉल कर देना मैसेज कर देना. तो दुनिया भर की चीज़ तो वो लोग उनको लगता है कि मतलब एक केयर जो होती है वो एक मतलब जिसे करती हैं जो, तो वो उनके वैसे. अंशिका एक बात बताऊं कि आप जिनके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं भी सुनते हैं ना, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ
9: जी जी,
8: लेकिन उस इंसान के जब हम करीब जाते हैं उनसे बात करते हैं उनसे मिलते हैं तो हमें उन पता चलता है कि एग्जैक्टली वो इंसान कैसा है.
9: बिल्कुल मैम, और मैं आगे यही कंटिन्यू करने वाली थी बट आपने बोल दिया. सो यस जब हम किसी से मिलते हैं फिर उसकी बातें उसकी अंदर की जो एक फीलिंग होती है वो पता चलती है. तो मैम सिर्फ नारियल की तरह हैं ये मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि नारियल देखा है आपने बाहर से बहुत सख्त होता है लेकिन जब फोड़ते हैं और उसके अंदर से पानी निकलता है मतलब अंदर से कितना सॉफ्ट होता है. तो मैम का भी वही है, बस वो खाली बाहर से
8: नारियल का छिलका भी काम आता है बर्तन मांजने में.
9: नहीं अब आप छिलके पे क्यों ईश्वर मतलब
8: नहीं, छिलका भी काम आता है कि नहीं आता है बताओ?
9: हाँ, आता
8: छिलका
9: है।
8: तो मेरा भी कुछ जैसे बाहर की चीजें है ना, वो लोगों को वो भी काम में आती है। कभी कभी गुस्सा काम में आ जाता है, कभी कभी ज्यादा स्टिफनेस काम में। हाँ, तो बस वही है ना कि जैसे नारियल का छिलका भी काम में आता है और नारियल का पानी भी काम में आता है, और नारियल तो काम में आता ही आता है। तो इट मीन्स कि और नारियल का जो अंदर का गोला जो होता है, जो सख्त होता है, आप उसमें से अगर नारियल निकाल लेंगे ना, तो उसको भी सजावट में आप काम में ला सकते हैं। इट मीन्स आप पूरा का पूरा नारियल जो है वो फायदेमंद है आपके लिए। तो यानी कि मैं आपके लिए फायदेमंद हूँ। Yes.
9: इतने अच्छे से नारियल को सिर्फ मैम सब्सक्राइब कर सकती
8: है। मुझे तो दीपांशी कुछ लिख के भेजी है, एंड अनुष्का हाँ। जी आ गई हैं।
9: जी जी।
8: तो दीपांशी हाँ। का मैसेज नीचे वाला पढ़ो, वो शायद हम लोगों के लिए ही है कुछ।
9: मुझे तो करीब अपने करीब आने पर अच्छा लगता है।
8: मेरे
9: अच्छा।
8: करीब तो दीपांशी, मैं आपके करीब कब आई हूँ भाई? आप मुझे जानते हो यानी की
9: इसीलिए अच्छा लगता है। और लेकिन ये तो जलेबी के जैसा कौन है?
8: जलेबी के जैसे मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हो भी क्योंकि मैं टेढ़ी हूँ, मेढ़ी हूँ, लेकिन हाँ स्वीट भी बहुत हूँ। मुझे जो लोग जानते हैं मुझे पता है, बट आई डोंट थिंक जज कवर बुक कौन सी लाइन होती है वो। मैं सुबह से आज रट रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ,
9: पूरी नहीं हो पा रही।
8: अभी मैं उसको चैट जीपीटी में ये डालूंगी मैं कि इसकी एग्जैक्टली लाइन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी।
9: और लिख रही है दीपांशी जी मैम कि मैम हम तो 24 घंटे सुनना चाहते हैं आप दोनों की।
8: ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो ये जो जनार्दन वाली आवाज़ है ना, ये हमारे बिग बॉस के पास जानी चाहिए। और अच्छा सच्चाई वाली, आज मंडे है तो मैं सभी लिसनर्स से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अनुष्का से, दीपांशी से, एंड सभी जितने भी लिसनर्स हैं, कि एग्जैक्टली आपको हम दोनों का प्रोग्राम, हम दोनों की आवाज़, हम दोनों का बिहेवियर कैसा लगता है, तो ज़रूर से बताइए चैट बॉक्स में आकर के। और जिनका सबसे स्वीट वाला आंसर लगा ना, उनको आज हम लोग एक बोनस देने वाले हैं।
9: तो भाई इसको कहते हैं, जैसे अभी मैम बात कर रही थी ना, तो हमारे तरफ से यानी कि सुन सहेली की तरफ से खजाना जो है वो हमने खोल दिया है। और बहुत छोटा सा सवाल है, और मुझे लगता है 3 साल में आप इतना जान गए होंगे कि आप जवाब दे सकते हैं। फटाफट से दीजिए और फिर सॉन्ग तो हम आपको जरूर सुनाएंगे।
8: हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
9: ओके, शेर और शेरनी को बोला है मैम के करीब आते, अच्छा मैम के करीब आते अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा जी बिल्कुल मैम।
8: चलो तो अभी देखते हैं किसका आंसर आता है, तब तक हम लोग आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भाई आपका अपना प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम, आपके पसंदीदा आरजेस यानी आरजे समता एंड आरजे अंशिका लेकर आ गई हैं आपका पसंदीदा शो, जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड प्यारी सी दोपहर है, प्यारा सा मौसम हो चुका है, जिसमें हम एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं शुभ दोपहरिया। चलिए
9: तो चलिए लिसनर्स, अब बढ़ते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी पोएट्री की तरफ। लेकिन उससे पहले पहले पहले आज है खाना खजाना। आज है खाना खजाना, हम बनाएंगे अपने किचन में खाना। लेकिन उससे पहले है बहुत ही प्यारी सी पोयम को सुनाना, तो चलिए सुनते हैं आरजे समता जी से।
8: आज था नहीं था,
9: आज मैंने वो राइमिंग
8: आज राइमिंग खजाना बताना सुनाना था। चलो अच्छी लगी तो हम शुरू करें
9: जी।
8: नजर थाली पर पड़ी तो दिल मचल गया। ओ माय गॉड,
9: दिल मचल गया।
8: महक खुशबुओं की आई तो मन खिल गया। हर निवाले में छिपा है कोई मीठा सा राज। खाने पीने का शौक रखता है आज भी यह अंदाज। चटपटे मसालों की ओर अनोखी खुशबू, हर जायके में बसी है प्यार की जुस्तजू। प्लेट सजी हो रंग बिरंगे पकवानों से, जब भूख भी महकती है हमारे अरमानों से, तब गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों में बसी महफिल, मिठाइयों की मिठास से जुड़ जाती है हर दिल। कभी तीखा समोसा, कभी खट्टी मीठी चाट, ये खाने का शौक ही तो कराता है खुशियों की बात। जिंदगी के सफर में स्वाद का ये कारवां रहे जारी, हर सुबह हो नई और शाम हो पकवानों से प्यारी। यही तो है असली जीने का हुनर और मजा, हर लजीज खाने के आगे झुक जाता है दिल का हर दरवाजा।
9: ओह माय गॉड, वाओ, मतलब बहुत ही प्यारी पोयम मैम। और खाना खाना खाना सुन करके मन
8: बाग बाग हो गया,
9: कहीं और चला गया था,
8: खाने के लिए चला गया था,
9: बट मैंने उसको वापस बुला लिया। बहुत ही प्यारी पोयम और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लिसनर्स आप बताएं आपको कैसी लगी। और बहुत ही प्यारी थी और दिल मचल गया, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना, जैसे हम कहते हैं ना कि खाना जब भी आप किसी के लिए बनाते हैं, चाहे वो समवन कोई आपका स्पेशल हो या घर पे मम्मी पापा हो, फैमिली हो, तो हमेशा प्यार से बनाना चाहिए। और सेकंड की जब हम बना के और लेके जाते हैं और वो खा के तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैम, जब भी मैं पापा के लिए मम्मी के लिए बनाती हूँ और खाने के बाद मम्मी कहती है बहुत अच्छा बनना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बनाने में भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। मतलब अगर आप मेरी बात करें तो मुझे खाना जितना पसंद है उससे दुगना मुझे बनाना पसंद है। लेकिन मेरी एक कंडीशन होती है कि अगर मैं कुछ मतलब अपनी तरीके से बनाऊंगी तो फिर आप मुझे पूरा किचन हैंडओवर कर दीजिए, मैं अपने तरीके से अपनी ट्रिक से अपनी
8: किचन, तो फिर पता नहीं क्या ही उसकी हालत होगी। हम तो
9: नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं क्लीन रखती
8: हूं। अच्छा ऐसा है, तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ शुरू करते हैं, उसके बाद झटाझट आज, क्योंकि आज बहुत सारी रेसिपीज बतानी हैं एंड हमारी मास्टर शेफ की भी रेसिपी उन्होंने भेज दी है, तो फटाफट वो भी आप तक पहुंचानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से हम आते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
9: आज हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि आज का हमारा जो है वो खाने से ही रिलेटेड है। अगर आप डार्क चॉकलेट और बादाम खाते हैं तो इससे आपके माइंड में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको खुशी देते हैं। इसलिए जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो उस टाइम पर डार्क चॉकलेट या बादाम में से कोई एक चीज जरूर खानी चाहिए। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए जो लोग भी अपने खाने में बादाम को लेते हैं तो वो बहुत कम, यानी कि एक लीजिए दिन भर में, एक लीजिए आप, बहुत रहेगा, ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि गर्मी में गर्म होता है इसलिए ज्यादा नहीं खाया जाता। डार्क चॉकलेट आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। जिन्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या फिर माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत पीक वाला होता है, वो डार्क चॉकलेट जरूर खाएं।
8: अच्छा ऐसा होता है?
9: हाँ। क्योंकि ये आपके माइंड की जो नसें, देखिए हमें माइग्रेन पेन कब होता है, जब हमारे माइंड की नसें जो होती है वो बहुत तन जाती है।
8: ओके।
9: जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं या कोई भी नॉर्मल चॉकलेट खाते हैं तो वो आपकी माइंड में जाके एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है। इससे क्या होता है कि हमारी माइंड में जो हार्मोन्स जो हमारी माइंड से रिलीज होते हैं वो बहुत अच्छे रिलीज होते हैं, खुशी वाले, तो थोड़ा आपको रिलैक्स मिल जाता है। इसलिए जब पीक पे पेन हो तब खाइए। और एक बात और कह देती हूँ कि इस समय मौसम चल रहा है कि सबको ट्रैवल, मतलब बहुत लोग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो जिन्हें भी ट्रैवलिंग एंजाइटी है, यानी कि अपने किसी किसी को देखा होगा बस में बहुत वॉमिटिंग होती है, और गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में वॉमिटिंग होती है, या किसी भी अपने भी अगर कन्वेंस से जा रहे हैं तो वो उनको होती होती है, क्योंकि उनको एंजाइटी होती है, उन्हें जरूर चॉकलेट खाना चाहिए। और चॉकलेट का मतलब ये नहीं कि आपको सीधा खा लेना है, आपको एक पीस तोड़ना है और थोड़ी देर के लिए अपने मुंह में रखना है जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाता।
8: ओके, लेकिन खानी डार्क चॉकलेट ही है।
9: हाँ, इससे आपको वॉमिटिंग नहीं लगेगी और आपका सफर जो है वो आसानी से आराम से बीत जाएगा।
8: अच्छी बात बता दी आपने, मैं फ्लाइट पे जाने वाली हूँ तो मैं अब डार्क चॉकलेट का पूरा स्टॉक लेके जाऊंगी।
9: बिल्कुल मैम, और वो तो जरूरी भी होता है क्योंकि जैसे कुछ लोगों को होता है, मतलब मुझे सबके लिए नहीं पता है, बट जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है जब ऊपर की तरफ, तो कुछ लोगों को बहुत डर लगता है और थोड़ी उन्हें
8: घबराहट
9: अजीब भी फील होता है,
8: वो बड़े वाले झूले की तरीके से लगता है।
9: बिल्कुल, तो वो आप ले सकते। तो आज खाने का दिन था हमारा, इसलिए कुछ जरूरी
8: तो ये अच्छी सी बातें हो गई एंड बाकी टिप ऑफ द डे हम लास्ट में बताएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं एक ब्रेक की, और ब्रेक के उस पार आएंगे बहुत ही लजीज वाली एक रेसिपी, एक डिश को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहे हमारे साथ 89.6 FM पे आपका पसंदीदा शो सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी बाय अंशिका।
7: तो चलिए आज आपको खिलाते हैं कि पुराने जमाने में बहुत ही चलती थी अशर्फी, और आज हम आपको खिलाएंगे मैंगो बर्फी।
6: अच्छा।
7: वैसे मैंने अभी तक इसको बनाया नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगी और ट्राई करूंगी कि बना सकूं। क्योंकि अभी मैं प्रिकॉशन पे चल रही हूँ ना, तो अगर मैंने बनाया तो घर में सारी चट हो जाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए जब मैं खाने के लिए डॉक्टर मुझे कह देगा कि अब आप आजाद हैं, सब कुछ खा पी सकती हैं, तब मैं बनाऊंगी।
6: ओके,
7: चलिए अब फिलहाल आपको तो बताते हैं, क्योंकि आप तो घर पे बना के हमारी किचन से ट्राई कर ही सकते हैं और हमें थोड़ा सा क्रेडिट भी मिल सकता है कि सुन सहेली में हमने सुनी थी बर्फी बनाना।
6: जी,
7: तो चलिए अब बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम है कि अच्छे से बाजार जाना है, अच्छे से रेडी वेडी होकर, बढ़िया तैयार होकर, और आम लेकर के आने हैं आधा किलो।
6: अच्छा, आम
7: पके हुए अच्छे वाले। और ये आप मैंगो बर्फी बना रहे हैं तो इसके लिए दशहरी आम लीजिएगा, और कोई आम नहीं।
6: बिल्कुल,
7: आधा किलो आपको ले आने हैं। और सबसे पहले क्या करना है कि आम को अच्छी तरीके से धो लेना है, मतलब 2 से 3 पानी कम से कम धो लीजिएगा, और थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, जैसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, और उसके बाद निकालिएगा और फिर बर्फी बनाइएगा।
6: ठीक है।
7: क्योंकि क्या होता है ना कि आम, जैसे हम कहते हैं ना कि आप तुरंत धूप से गए हो तो पानी मत पीजिए, वैसे ही फ्रूट्स के लिए भी होता है। कोई भी फ्रूट है, आम ही नहीं, केला है, सेब है, जो भी आप ला रहे हैं, तो उसको धुल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे, ताकि उसमें जो गर्मी है, क्योंकि वो धूप में ठेले पे रखते हैं तो वो प्रॉपर गर्मी जाती है उसके। अगर आप वैसे खा लेंगे तो फिर आपको कुछ सेहत के लिए समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा ठंडा हो जाए आराम से, फिर आप खाइए। अब आपको क्या करना है कि आम आपने ले लिए, अच्छे से उनको आपको धो लेना है। धो लेने के बाद उसके छिलके आपको निकाल लेने हैं, मतलब छिलके छील देने हैं, और जो उसका पल्प है वो पल्प आपको निकाल लेना है। ऐसे आपको पूरे आधा किलो आम के पल्प अलग कर लेने हैं। पल्प अलग करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आपको चीनी लेनी है। चीनी बहुत कम लीजिएगा, आधा कप। आधा कप इसलिए क्योंकि आम में अपनी मिठास होती है, तो वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूध आपको ले लेना है, तो दूध प्रॉपर लेना है 1 किलो। 1 किलो लेना है, और क्रीम वाला लीजिएगा, जिसमें क्रीम होता है ना, फुल क्रीम, वो लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है कद्दूकस किए हुए नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा जरूरी है, इसलिए 2 कप आप नारियल का बुरादा ले लीजिए। अब आपको लेना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप अंदाज से ले लीजिएगा, आधे चम्मच से भी कम, इससे ज्यादा की नीड नहीं होगी, आधे चम्मच से कम रहेगा। देसी घी आपको ले लेना है।
6: देसी घी?
7: देसी घी।
6: ओके।
7: देसी घी प्रॉपर लेना है, प्रॉपर का मतलब है कि आधा कप, आधा कप देसी घी। और उसके बाद में आपको ड्राई फ्रूट्स में जो भी पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ता, वो आप ले सकते हैं गार्निशिंग करने के लिए, और उसमें बारीक काट के डाल भी सकते हैं और बर्फी के ऊपर रख भी सकते हैं। जैसे मैंने देखा था, ये मैंने कहीं पे देखा था कि किसी बर्फी में बादाम होता है ऊपर लगा हुआ होता है, किसी बर्फी में काजू लगा हुआ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से आप पिस्ता रख सकते हैं तो बहुत अच्छा एक लुक आता है। अब चलिए बताते हैं कि आपको बनाना कैसे है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि छील के पल्प आपने निकाल लिया है, अब आपको क्या करना है कि जितने भी पल्प आपके पास थे वो सभी आपको डाल देने हैं मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में इसे डालने के बाद अगर आपके पास घर की मलाई होगी, जैसे मैम घर में हम लोग दूध से निकालते हैं जो मलाई, अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं है आपके पास इनकेस, तो आप मार्केट जाइए, मलाई मतलब क्रीम का डब्बा मिलता है।
6: हाँ, मार्केट वाली क्रीम भी मिलती है।
7: 200 ग्राम का होता है आई थिंक, तो उसमें से 200 ग्राम मत डालिएगा, 100 ग्राम डालिएगा, और बाकी जो आपके पास बच जाएगी उसको अच्छे से पैकेट को रैप करके फ्रिज में डाल दीजिएगा। फिर आप उसको किसी भी जूस या कुछ भी आप बना रहे हैं ओरियो शेक, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि मिक्सी के जार में वो क्रीम आपको डाल देनी है, और उसके बाद में उसको अच्छे से चला करके मिक्सी को फाइन पेस्ट बना लेना है। क्रीम इसलिए हमने इसमें डलवाई है क्योंकि क्रीम के साथ जब आप बनाएंगे ना तो बहुत स्मूदी वाला बनेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आम ज्यादा हो और क्रीम उससे कम हो, बहुत कम हो। नहीं तो अगर क्रीम ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये लगेगा कि क्रीम का ही सारा टेस्ट आएगा, आम का टेस्ट जो है वो दब जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक नॉन स्टिक पैन आपके पास हो या कढ़ाई हो, जो भी हो, कढ़ाई अगर है तो हल्की सी मोटे तले की होनी चाहिए
6: जी।
7: उसमें आम का पल्प डाल देना है, चीनी डाल देनी,
6: चीनी
7: आधा कप, और धीमी आंच पर आपको उसे तब तक पकाना है जब तक चीनी पूरी तरह उसमें मिल नहीं जाती। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि चीनी उसमें पूरी तरह मिल गई है, तो ये पता करने के लिए
6: खा करके देख लेंगे थोड़ा सा नीचे से, वो ऐसे चाटते जैसे ना, जैसे बिल्ली चाटती नहीं है वैसे देख लेंगे,
7: देख सकते हैं। ये अच्छी टेक्निक, इससे एग्री करती हूँ। लेकिन अगर आप ये टेक्निक जिसे ये यूज कर सकते हैं, मैं एक और टेक्निक आपको बता देती हूँ कि आपने जैसे उसे कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए चढ़ाया, उसके बाद जब आपने कढ़ाई खोली तो ऊपर अगर आपको जमी जमी सी दिख रही है, जैसे चाशनी टाइप की, वो ऊपर जम जाएगी हल्की हल्की।
6: अच्छा।
7: तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, चीनी इसमें पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है कि जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपको इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल जो हमने रखवाया था 3 कप, वो आपको इसमें डाल देना है, और इलायची पाउडर डाल देना है। अब इस बैटर को अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में फिर आपको इसे धीमी आंच पे चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक कि पूरा, जैसे आपने देखा ना जब हम आटा रेडी करते हैं तो उसका डो जैसा नहीं बन जाता है, जब तक वो डो के शेप से हल्का, जैसे डो के शेप में पूरा नहीं रहेगा, उससे हल्का सा पतला रहेगा, उसमें ना आ जाए, तब तक 15 से 20 मिनट तक आप इसे चलाते रहिए। जब चलाते चलाते आपको 15 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें घी पूरा जो 1 कप हमने कहा था वो इसी में डाल देना है। अब आपने डाल दिया, अब आपका ये बैटर पूरी तरीके से रेडी है, वो हल्का पतला और हल्का थिन के बीच में होगा आपका बैटर। अब आपको क्या करना है कि कोई भी ट्रे आप ले सकते हैं या थाली है, आप थाली ले सकते हैं घर में, और उसमें अच्छे से ग्रीसिंग आपको कर लेनी है। पहले नीचे घी से
6: देसी घी की,
7: हाँ देसी घी की अच्छे से ग्रीसिंग कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका ये जो बैटर है या आप उस थाली में या ट्रे में जो भी है उसमें डाल दीजिएगा।
6: ओके।
7: और डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से थाली की साइड साइड में थपकी देनी है।
6: हाँ।
7: इससे क्या होगा कि वो पूरा एक साथ मतलब एक बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ऊपर से कटे हुए पिस्ते, बादाम, काजू जो भी आपके पास है वो इसमें डाल देने हैं बैटर डालने के बाद, और हल्का आप चाहें तो गुलाब की पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं अगर आपके पास है, डाल देना है। और एक चीज मैं बताती हूँ आपको, छुपी छुपी वाली।
6: हाँ।
7: छुपी छुपी वाली ये है कि ये मतलब मैं जब बनाऊंगी तो उसको जरूर ट्राई करूंगी, कि अगर आपके पास रू अफजा होगा, थोड़ा सा गाढ़े वाले फॉर्म में रहता है जब हम उसमें पानी डालते हैं, तो ये उसके ऊपर रू अफजा डाल दीजिए।
6: ओके।
7: बहुत अच्छा, मतलब जब आप इसको काटेंगे ना पीस पीस में तो वो रेड रेड आएगा, बहुत अच्छा लगेगा,
6: रेड येलो।
7: हाँ, बहुत प्यारा
6: क्रीमी वाला,
7: लेकिन हल्का डालना है। और अगर रू अफजा में आपके पास अगर क्रीम होगी

0: इंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और जो मीठे वाली क्रेविंग रात को होती है ना, स्पेशली रात को खाने की क्रेविंग बहुत अच्छी होती है, वो अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो आप पूरी करें। और इसके साथ पता है आप रोटी को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर पराठे, बहुत मजा आएगा रात में, क्योंकि मुझे कभी कभी रात में भूख लगती है, मुझे मन होता है कुछ हो मेरे पास।
1: तो क्या उसमें रोटी पे लगा के खाती हूँ?
0: नहीं, रोटी पे लगा के नहीं खाती हूँ, जैसे बर्फी अलग, फिर एक और रोटी तोड़ के बहुत अच्छा लगता है,
1: मीठे के साथ बर्फी ना
0: बहुत मजा।
1: पता है मैं तो, मैं मुझे भी एक चीज याद आ गई, जब बर्फी कहीं से आती है ना घर में, या हम लोग लेके आते हैं, मन कभी नहीं मन करता है तो मैं उसका पराठा बना के खाती हूँ, उसमें बर्फी को भर करके। अरे यार मैंने तो बता दिया, मैं टिप ऑफ द डे में यही बताने वाली थी, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं बताया है ना, मैं टिप ऑफ द डे में पूरा बताऊंगी, ठीक है? तो टिप ऑफ द डे मुझे अंशिका जरूर से याद दिलाना कि आज का टिप ऑफ द डे क्या है।
0: बिल्कुल, टिप ऑफ द डे भी बताएंगे, और अभी तो बारी, हमने आपको एक प्यारी सी मीठी मीठी डिश खिला करके शुरुआत की है, क्योंकि शुरुआत को अंजाम तक तो नहीं कहेंगे, बट एक अच्छे से मिड तक हमारी मास्टर शेफ ले जाएंगी, क्योंकि अभी उनकी रेसिपीज बाकी हैं आप तक पहुंचाने के
1: जी।
0: और आज उनके पास कुछ बहुत टेस्टी सा भी है, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं क्या भेजने वाली हूँ।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो हम रिवील नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे ना मैम?
1: ना ना, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल चलें गाने की तरफ।
1: बिल्कुल, और गाना सुनने के बाद में आती है बारी मेरी भी एक रेसिपी है भाई, मैं भी थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ तो थोड़ा बहुत
0: नहीं मैम, बहुत अच्छा और प्रॉपर बनाती है, मैंने तो खाया भी है।
1: तो अच्छा, हाँ खाया है अंशिका ने, तो मैं कुछ और सोच रही हूँ कि और भी कुछ खिलाने के लिए, लेकिन वो क्या है, कैसे है, क्या बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद तो फिलहाल मास्टर शेफ की हम रेसिपीज को सुनेंगे, एंड देन उसके बाद मैं लेके आऊंगी। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो

0: जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट मास्टर शेफ की रेसिपीज को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, एंड देन उसके बाद में फिर बहुत ही लजीज सी जो रेसिपी हमारे पास है यानी मेरी है वो हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए मास्टर शेफ की रेसिपी।
6: हेलो रंजना बंधु, आज आपके लिए बहुत डिशें लेके आई हैं, आप लोग लिखिएगा। ये आप ही लोग के लिए है क्योंकि इधर तो नौरात आ रहे हैं, व्रत भी आ रहा है, दूसरा रमजान भी शुरू हो रहे हैं, शाम को जो है रोजा इफ्तार करते हैं आप लोग, तो तरह तरह की चीज़ें आप लोग सब बना के खाते हैं, तो विशेष बहुत ही है, और जो भी मैं आपको बताऊंगी वो बहुत कम घी तेल की होगी। तो आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू करिए। सबसे पहले तो मैं आपको सामान बताती हूँ। तो आप 2 प्याले धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए, बिना छिलके वाली जो पीली पीली दाल होती है वो ले लीजिए, उसको बीन लीजिए, धो लीजिए और पानी में कम से कम 3 के लिए भिगो के रख दीजिए। अगर आपको शाम को बनाना है तो 11-12 बजे भिगो दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगी, बीच में थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च 3-4 अपने स्वाद के अनुसार, अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है तो आप 4-5 कर सकते हैं, वरना आप 2-3 के बीच में हरी मिर्च रख लीजिए। हरा धनिया जो है वो काट लीजिए, डंठल अलग काट लीजिए और पत्तियां अलग काट लीजिए, उससे होगा कुछ हम दाल में मिला देंगे और कुछ हम जो है उसमें कर लेंगे पीस, उसमें जब हम दाल पीसी रहेगी तब वो कुछ ऊपर से डाल लेंगे। अब नमक आपका अंदाज से रहेगा, जो भी आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और अगर अंदाज से खाते हैं तो 1/2 चाय का चम्मच नमक बहुत है, 2 प्याले में, कम भी कर सकती हैं आप इसको। अब आप क्या करेंगी, दाल को आपने भिगो रखा था उससे पानी निकाल लेंगी और मिक्सी में डाल के उसे पीस लेंगी। अलग से पानी मत डालिएगा मिक्सी में, उतने ही में पीस जाती है, वो हल्की होती है तुरंत पीस जाती है। अब आप क्या करेंगी, एक कढ़ाई ले लेंगी, उसमें 2 चाय का चम्मच घी लेंगी या तेल रिफाइंड जो भी आप यूज़ करती हैं उसको आप ले लीजिए, और चम्मच अपने चमचे से उसको पूरे में घी लगा दीजिए, उसी तेल को जो घी है उसको पूरे में फैला दीजिए। उसके बाद जो आपने दाल पीसी है वो दाल डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और जो हरी धनिया की डंठल आपने काटी थी वो डाल दीजिए, हरी मिर्च काट लीजिए 3-4 जो भी डाली है वो डाल दीजिए और हल्का सा नमक डाल दीजिए, और दाल को बराबर चलाते हुए गाढ़ा हलवा सा बना लीजिए। एक समय आएगा कि आपकी कलछुल चलनी बंद होने लगेगी, बस उस समय आप सोचिए कि आपकी डिश वो तैयार हो गई है दाल। अब आप उसको गैस बंद कर दीजिएगा, और इसमें ये बात है कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी दाल हमारी चिपक जाती है तो उस पर पानी का हल्का हल्का छींटा दे दीजिए, छींटा दे करके और आप उसमें तस्तरी ढक दीजिए, उससे क्या होगा जो किनारे दाल लगी है वो सब फूल जाएगी। अब आप क्या करिए, 10 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखेंगे आप दाल हल्की गर्म रह गई है तो तो गरम गरम आप उसको खुरस लेके थाली में निकाल लीजिए। अब उसमें वापस फिर से जो है आप चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, कटा हुआ हरी धनिया उस पर डाल लीजिए और उसको खूब एक अच्छा सा डो बना लीजिए हल्का सा पानी लगा के। फिर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए। अब आपके ऊपर है कितनी छोटी आप बनाती हैं, वैसे एक मीडियम साइज की गोली बना लीजिए। गोली बना बना के आप रख लीजिए एक किनारे। जब सब गोलियाँ बन जाती हैं और कढ़िया आप धो के साफ कर लीजिए। अब इसके बाद आप फिर क्या करेंगी, 2 चाय का चम्मच तेल डालेंगी, चाहे सरसों का हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे घी हो, ये उसको आप डाल लेंगी। डालने के बाद इसमें बनारसी राई और करी पत्ता और 1 हरी मिर्च काट के डाल देंगी। जब ये चटक जाएगा तब आप इसमें जो तैयार आपकी गोलियां हैं वो इसमें डाल दीजिए और चला दीजिए। चला करके गरम गरम आप चटनी सॉस के संग आप अपने मेहमानों को किसी समय भी खिला सकती हैं। अब एक बात ये भी बता सकती हैं कि यदि आप कढ़ाई का यूज़ नहीं करना चाहती हैं, अगर आपके घर माइक्रोवेव है तो क्या करिए, आप दाल में जो पिसी हुई दाल है उसमें आप नमक है, हरा मिर्च है, हरा धनिया है, ये सब मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो इडली वाला आता है उसमें आप डाल दीजिए, डाल करके भाप दे लीजिए। जब हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिए, फिर उसको काट लीजिए, काट के जिस स्टाइल में हमने था छोंक, ऐसे भी आप दे सकती हैं। तो आपके ऊपर है कि आप इडली स्टैंड में बनाती हैं या कढ़ाई में भून के बनाती हैं। तो गरम गरम कभी भी आप बनाइए, हल्का फुल्का नाश्ता है जो भी पेट से जो है कहते हैं हल्का मुझे चाहिए। तो इसमें बहुत ही कम घी तेल का यूज़ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनते हैं। किसी समय भी आपके मेहमान आए आप इसको गढ़ के रख लीजिए, जब कभी भी कोई आए आप इसको छोंक दीजिए और तुरंत आप सर्व कर सकती हैं। अगर चाहती हैं रात में खाना तो मसाला जो हल्दी धनिया मिर्चा प्याज लहसुन होता है, जैसे रोज सब्जियां बनती हैं उसमें भी आप भून, ये बने हुए हैं और उसमें आप डाल करके आप सूखी सब्जी भी बना सकती हैं, चाहिए तो ज़रा सा रसा भी डाल सकती हैं। तो एक ही तरह की उसमें हम 2-3 तरह की सब्जी की यूज़ करते हैं। इसको हम नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और रसे में भी यूज़ करते हैं। ये तो आपकी पसंद के ऊपर है कि आप किस ढंग से बनाना पसंद करेंगी। अब मैं आपको एक और नाश्ता बता रही हूँ, वो है मेरा भाकड़वड़ी। ये गुजरात में बहुत बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बस मेन इसमें जो होता है, जो मसाला भरा जाता है उसी का खेल रहता है। तो हम सबसे पहले लेंगे कि मैदा लेंगे 2 प्याला, आराम से जो भी छोटा बड़ा आपके ऊपर है, 2 कटोरी छोटा ले सकती हैं, ये आपके ऊपर है। 2 कप मैदा लेंगी और उसके संग 3 टेबल स्पून आप बेसन का लेंगी। इन दोनों को आप मिला लीजिए, इसमें थोड़ा अंदाज से नमक डाल देंगी, अजवाइन थोड़ी हथेली पे मन के डाल देंगी और उसमें थोड़ा सा मोइन डालेंगी। ज़्यादा मोइन मत डालिएगा क्योंकि ज़्यादा घी तेल आजकल कोई खाता नहीं है और सब नुकसान भी करता है। इसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा डो बना लीजिए। एक मतलब डो मतलब आटा सान करके एक किनारे रख लीजिए, जैसे हम लोग रोटी वोटी के लिए बनाते हैं। इसको कपड़े से ढककर रख दीजिए। अब आप क्या करिए, एक कढ़ाई लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए, सबसे अच्छा सरसों के तेल में लगता है। अब आप क्या करेंगी, 1 चम्मच जीरा ले लेंगी, साबुत जीरा जो होता है जीरा ले लेंगी, 2-3 चम्मच साबुत धनिया, धनिया के बिया जैसे कहते हैं साबुत धनिया ले लेंगी, सफ़ेद तिल 2 चाय के चम्मच ले लेंगी, सौंफ जो हरी वाली होती है वो 2 चाय के चम्मच ले लेंगी, नारियल का बुरादा थोड़ा सा ले लेंगी लगभग 1/4 चाय का प्याला। और इसके बाद इसको क्या करेंगी, हल्का सा रोस्ट कर लेंगी, हल्का सा भूनेंगी, मतलब जलाना नहीं है, बस हल्का सा धीरे धीरे करके बस एक दो चम्मच की उसमें हल्की सी महक आ जाए। इसके बाद गैस आप बंद कर देंगी। अब उसमें क्या करेंगी, आप थोड़ा सा लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, अब मिर्च भी आप बाजार की पिसी यूज़ करती हैं या घर की पिसी यूज़ करती हैं ये बहुत बड़े माने रखते हैं। अगर आप चटपटा खाना पसंद करती हैं तो घर की पिसी हुई मिर्च आप डालिए, तो थोड़ा सा बीजा बीजा सा रहता है, वो अच्छा लगता है। उसमें आप जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वो डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, थोड़ा सफ़ेद नमक डाल लीजिए। अगर आप चाहती हैं तो अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा भी पसंद है। अब आप क्या करेंगी कि इसको मिक्सी चला के दरदरा पीस लीजिए। ये अलग रहेगा, बहुत महीन मत पीसिएगा, क्योंकि धनिया का अलग से स्वाद आना चाहिए, सौंफ का आना चाहिए। अब क्या करेंगी आप कि एक अलग से एक पतीली में या कढ़ाई में थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी बना लीजिए। इमली की मीठी चटनी तो आप बनाना जानती होंगी, एक बार हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर नहीं जानती हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप थोड़ी सी इमली को धो लीजिए और भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप उसको मैश करिए या उबाल लीजिए। उबालने से सब उसका गूदा आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक कढ़ाई में एक चम्मच आप सरसों का तेल डालिए, उसमें कलौंजी डालिए और जो इमली का गूदा है ये छान करके, मोटी छन्नी से छान करके कढ़ाई में डाल दीजिए। उसमें एक प्याला इमली वो डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, नमक मिर्च अलग से डाल दीजिए उसमें और चला दीजिए। दो उबाल आए तो आपकी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी वो तैयार हो जाएगी मीठी। चाहिए तो उसमें आप पुदीना भी पीस के डाल सकते हैं, ये अपने स्वाद के ऊपर है। कुछ लोग पुदीना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हरी धनिया ही खाते हैं। आजकल तो ऑर्गेनिक का बहुत तरह तरह की और से भी प्लांट लगाने लगे हैं लोग, उसको भी डाल देते हैं महक के लिए। अजवाइन की पत्ती का नाम आपने सुना होगा, वो भी डाल देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि जो भी आप डालना चाहें उसमें डाल सकती हैं, लेकिन जवान से बढ़ के कोई तराजू नहीं है। आप मीठी चटनी को चख लेंगी कि उसमें नमक है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी सी मीठी चटनी बना लीजिए। अब क्या करेंगी, जो आपने डो बनाया था उससे एक लोई तोड़ेंगी, तोड़ करके खूब पतली सी रोटी जैसे बनाते हैं वैसी गोल बड़ी सी रोटी बना लेंगी। एक एक इंच का किनारा छोड़ करके बीच में पूरे में इमली की चटनी आप सबसे पहले उसको लगा लीजिए अच्छे से। उसके ऊपर जो आपने मसाला रोस्ट करके पीसा था उस पे पूरे में छिड़क दीजिए। कहाँ पे छिड़केंगी, जहाँ पर इमली की चटनी लगी हुई है वहाँ पे आप छिड़क देंगी। उसके बाद खूब कसा कसा सा रोल बनाती है, जैसे हम लोग बच्चों को देते हैं घी नमक रोटी लगा के रोल बना दिया कि लो खा लो, लेकिन हम लोग ऐसे ही देते हैं, पर इसमें हम थोड़ा सा कसा कसा रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद हम सबको एक एक छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। देखिएगा बड़ा अच्छा सा रंग आता है, बड़ी सुंदर सी लगती है चक्री ऐसी बनी हुई। अब आप सब इसी तरह बना लेंगी। उसके बाद इसको कपड़े में ही ढक के रखिएगा। अब कढ़ाई में आप घी तेल जो भी है जिसको भी यूज़ करना है उसको आप गरम करिए। आँच जो है बहुत तेज मत रखिएगा, मध्यम आँच बीच की रखिएगा, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। तो उसके बाद इसमें आप अपनी कढ़ाई के अनुसार जो इतने भी आए उतना उसको डाल दीजिए और गुलाबी गुलाबी तल लीजिएगा और तल के निकाल लीजिएगा। ये आपका कम से कम 10 दिन 12 दिन तक ये रखा रहेगा नाश्ता, कभी भी ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसलिए आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए और कोई भी मेहमान आए तो आप उसको खिलाइए। ये प्रोग्राम आप ही लोग के लिए है। एक एक दो दो डिश हम आपको बताते रहते हैं और आप उसका यूज़ करिए, देखिए आपका रोज़ा कितना अच्छा चले,

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली और वापस आ गए हैं हम। और चलिए फिर से, अभी आपने एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी हम सभी ने एंजॉय की जो कि माय मास्टर शेफ की थी, और अब बारी है दूसरी रेसिपी की। तो चलिए देखते हैं और मैम से ही जानते हैं कि इतनी प्यारी सी रेसिपी के बाद अब वो हमें नेक्स्ट क्या खिलाने वाली है। तो चलिए सुनते हैं।
6: हेलो, आज मैं आप लोग के लिए एक दही वाला केक लेके आई हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ रंजना बंधु, नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान की प्रवक्ता, HOD, बहुत कुछ। और मेरे को शौक है कि कुछ आप लोग को नया नया कुछ डिश सिखाते रहे, कुछ बताते रहे। तो सबसे पहले आज मैं बता रही हूँ दही वाला केक। ऐसे तो बहुत सारी चीजें डाल के आपने केक बनाया होगा, पर थोड़ा दही का भी अगर प्रयोग करें तो देखिए कितना अच्छा केक बनता है। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग उसका सामान अच्छे से लिख लें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगी, मैदा 1.25 कप, पूरा प्याला भरेंगी नहीं, थोड़ा खाली रखेंगी। घी, अब इसके लिए आप कोई रिफाइंड भी ले सकती हैं, डालडा घी भी ले सकती हैं, रथ ले सकती हैं, जो भी आप पसंद करती हो वो ले लीजिए। फिर मीठा सोडा, जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, वो एक चाय का चम्मच ले लीजिए। और कोको पाउडर, कोको पाउडर बाजार में आता है डब्बे बंद में, तो आप उसको 2 चाय का चम्मच ले लीजिए। फिर अगर हम एसेंस नहीं डालेंगे तो अच्छी सी महक नहीं आती है, तो उसके लिए हम वेनिला एसेंस यूज करते हैं, तो 1 चाय का चम्मच आप वेनिला एसेंस ले लीजिएगा। पीसी चीनी 1 कप ले लीजिएगा। सूखा मेवा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा बहुत आधा प्याला करीब काट करके और उसको उसमें थोड़ा सा मैदा लगा के अलग रख दीजिए, क्योंकि जो सूखे मेवे होते हैं वो कुछ ना कुछ तेल छोड़ते रहते हैं, तो अगर हम उसमें सूखा मैदा डाल देते हैं तो उससे हमारा केक जो है उठने में आसानी रहती है। अगर अलग से तेल होगा तो केक हमारा बैठ जाएगा। इसके बाद हमारा मुख्य आता है दही। दही हमें कौन सा लेना है, ताजा दही, गाढ़ा, जिसमें पानी ना हो, वो हमें 1 प्याला लेना है। ध्यान रखेंगे कि दही में बिल्कुल भी पानी ना हो, फिर उसको हम, और वो खट्टा भी ना हो, उसको ले लेंगे। अब मैं विधि बता रही हूँ, तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, मैदे में जो है वो कोको पाउडर डाल देंगे, सोडा डाल देंगे, और अब एक छन्नी में इसको डाल देंगे और थाली में रख के छान लेंगे। 2 बार छानेंगे। 2 बार छानने से ये होता है कि जो भी थोड़े बहुत दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और केक बहुत चिकना चिकना बनता है। उसके बाद जो है दूसरा है घी को हम हाथ से एक खूब मुलायम कर लेंगे, दूसरी थाली में खूब फेंट लेंगे। उसके बाद उसी में चीनी मिला देंगे, चीनी मिला के खूब फेंट लेंगे। उसके बाद जो हमारा दही है उसको मिलाएंगे और फेंटेंगे। फेंटने के बाद उसमें हम थोड़ा सा जो हमारा एसेंस है 1 चाय के चम्मच उसमें मिला देंगे। और उसके बाद जो हमने मैदा छाना है, जिसमें हमारा कोको पाउडर पड़ा हुआ है, सोडा मिला हुआ, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके जो तैयार घी है उसमें डालेंगे और धीरे धीरे करके मिलाते रहेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि हम एक ही तरफ फेटें। उसके फेटने से एक तरफ क्या होता है कि उसमें एक हवा भरती रहती है, वो एकदम ठीक हो जाती है, भर जाती है, तो केक हमारा अच्छा तैयार होता है। जब हमारा केक बिल्कुल सब मैदा हमारा पड़ जाता है, तब हम इसको अलग ढंग से रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। केक टिन तैयार करने के लिए है कि हम कोई भी अल्मोनियम का बर्तन जो सीधे कुकर में चला जाए ऐसा कोई बर्तन लेंगे और उसमें पूरे में तेल लगा देंगे या रिफाइंड लगा देंगे या घी लगा देंगे। अगर हम उसको लगा देते हैं उसके बाद उसमें मैदा डालते हैं और चारों तरफ हिला करके और एक्स्ट्रा मैदा गिरा देते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि कुकर को जो है वो गैस पे चढ़ा देंगे और उसको गरम करेंगे। जब वो गरम हो जाएगा तब हम उसके आंच धीमी कर देंगे। उसमें एक छेद वाली आपके पास तश्तरी आती कुकर के संग मिलती है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी तश्तरी या स्टैंड जो कुकर के अंदर चला जाए उसको आप रख देंगी। उसके बाद अब आप केक टिन में क्या करेंगी, जो आपने केक तैयार करा है मिक्सचर उसमें क्या करेंगी कि आप जो कटा हुआ मेवा डाले हैं वो मिला लेंगी और सबको केक टिन में डाल देंगी। केक मिक्स टिन में डालने के बाद आप कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल देंगी और कुकर को बंद कर देंगी और एकदम छोटे बर्नर पर धीमी आंच में कम से कम 40 या 45 मिनट तक रखती रहिए। देखिए उसके बाद वो महकने लगेगी। उसके बाद जो है आप उसमें एक, जब आपको लगे कि हाँ महक रहा है तब आप एक सलाई या चाकू जो भी चीज आप डाल करके देखिए, अगर उसमें पेस्ट नहीं चिपक रहा है तो समझिए कि आपका जो है वो केक तैयार हो गया। अगर चिपक रहा है तो आप 5-7 मिनट और उसको पकने दे, फिर उसको क्या करेंगी तुरंत नहीं निकालिए, आप जो है कुकर का गैस बंद कर दीजिए, कुकर को बंद करके 2 मिनट रेस्ट होने दीजिए। जब होता तब आप पकड़ के कपड़े से या छन्नी उससे कलछुल से या जो भी सरसी हो जैसे भी आप निकाले वो आराम से उस केक के टिन को निकाल लीजिए। उसके बाद आप एक जो है वो थाली ले लीजिए और उसमें केक टिन उल्टा कर दीजिए और उसको हाथ से पटक करके हल्का हल्का थपथपाए जिससे कि वो पूरा पूरा निकल आएगा। अब आप इसके ऊपर चाहे आइसिंग करिए, चाहे क्रीम फेंट के डाल दीजिए, चाहे कस्टर्ड भी डाल सकती हैं, कस्टर्ड और फ्रूट्स इसके ऊपर डाल के आपके मेहमान आए आप इसको सर्व करिए और देखिएगा कि ये कितना अच्छा केक आपका तैयार होता है। इसमें ज्यादा सामान भी नहीं लग रहा है, ये सब सामान तो हम लोग को अपने घर में ही मिल जाता है। कोको पाउडर अगर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर डाल लीजिए, नहीं तो बच्चे इतनी चॉकलेट खाते हैं चॉकलेट पिघला के मिला लीजिए, तो उससे जो है हमारा एक बहुत अच्छा केक तैयार हो जाएगा। खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। धन्यवाद।
5: खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। बहुत ही अच्छी आपने मतलब केक बता दिया। गर्मी में दही वाले केक से बेटर भी कुछ हो सकता है लिसनर्स? मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। तो चलिए अब हमने बहुत ही अच्छी सी रेसिपी अभी सुनी और इंजॉय की और आई हो आप सभी को भी अच्छी लगी हो। चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: ओके लिसनर्स, तो आज की रेसिपीज का कैसा लगा आपको? और बहुत सारी रेसिपीज थी, लेकिन अभी टिप ऑफ द डे मेरे हक में आया है। तो टिप ऑफ द डे में मैंने क्या कहा था अंशिका बताने के लिए, आपको याद है?
1: बर्फी वाला पराठा।
0: तो भाई आपके घर में भी अगर सीजनली बहुत सारे लोग अगर गेस्ट आ रहे हैं और बर्फी लेके आ रहे हैं जो नहीं पसंद आती है कुछ लोगों को, या फिर प्रसाद में चढ़ाने के बाद में घर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और सूख जाती है अमूमन, ऐसा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है कि एक जैसे पराठा पकाते हैं, रोटी को आधी बेल करके और बर्फी को पहले आप कद्दूकस कर लें अगर ज़्यादा सूख गई है, अगर नहीं तो आप हाथ में हाथ से क्रश करके देसी घी मिला करके उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें और रोटी के बीच में भर करके पराठे की तरीके से अगर आप उसको बनाएंगे और फिर आप उसको पूरा बेल करके और अच्छे से पूरा बनाइए घी लगा करके और खाइए, कसम से बता रही हूँ कि आप ये पराठा ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये पराठा जो है ना, ये बची हुई मिठाइयों से है, छेने वाली मिठाई नहीं, खोए वाली,
1: सूखी वाली
0: और खोए वाली मिठाई जो होती है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आज के दिन का। और ये आज का टिप ऑफ द डे, हमें नहीं इजाजत, हम कल मिलेंगे सेम डे सेम प्लेस पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
8: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
9: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
10: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
11: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
10: और जेंट्स के लिए?
11: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
10: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
11: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
12: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब?
13: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी, तो आ गए हैं हम मंडे वाले मूड के साथ, यानी कि मूडी वाला मंडे है और हम हाजिर हैं लेकर के आपका शो बिल्कुल वही पसंदीदा फोनी फरमाइश कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गैनस 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन, और इस धड़कन को धड़काते हैं बढ़ते हैं आज के पहले नगमे के साथ में। फिर आते हैं बताते हैं आज की पहली डिमांड किसकी है, कहां से आई है। और हाँ जी, कुमार साहब MP डीवा वाले, आपके लिए भाई आपकी बहन ने स्पेशली डिमांड की है जो लास्ट शायद अधूरी रह गई थी। फिलहाल चलते हैं हम अपनी पसंद का सॉन्ग आप तक पहुंचाते हैं, आप एंजॉय करिए इस सॉन्ग को। भाई हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं तो हम भी बस सोच रहे हैं आज ये गाना सुन ही लेते हैं। तो सुनते हैं इस डिमांड को आपके अपने आर्जकांक्षा की पसंद का, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ। तब तक एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

जी श्रोताओं, लगातार आप सभी की कॉल्स भी आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं भूल गई कि भाई मेरा ही गाना तभी से प्ले हुआ जा रहा है। आप लोग काफी सारे मजे ले रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और सुनते रहिए भाई। हमारे पहली डिमांड है आज की देव प्रसाद जी की, उसके बाद जो हमारे कुमार साहब जी के लिए भाई उनकी प्यारी से सिस्टर ने उनको एक गाना डेडिकेट किया है, उसकी तरफ आएंगे, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड ले करके। और वो नेक्स्ट डिमांड होगी हमारी दरक्षा जी की। बने रहिए, एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स हैं आज के और प्लेलिस्ट भी काफी खूबसूरत है, तो एंजॉय करते रहिए। 3 से 4 के सफर में आपने आरजे आकांक्षा को और आपकी द्वारा बनाएगी आपकी अपनी प्लेलिस्ट को। चलिए एंजॉय करते हैं आज की पहली डिमांड देवी प्रसाद जी की ओर से। भाई गाना बड़ा ही प्यारा है, 90s हिट्स में से एक है, तो एंजॉय कर लीजिएगा। वैसे तो इन्होंने कहा अपनी पसंद का बजा दीजिए, इसलिए हमने कहा आप तक पहुंचाते हैं अपनी पसंद का एक और प्यारा सा गाना।

हाँ जी, आज की पहली डिमांड हमारे देव प्रसाद जी की, फिर होंगे हमारी दरक्षा अंसारी जी, फिर होंगे हमारे राम भवन जी, उसके बाद होंगे प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद है गाना कुमार साहब को डेडिकेशन में आया हुआ।

ना दोस्तों, तो मैट्रिमोनियल सी आंखें अगर हो जाएंगी तो हर लड़की में कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए भाभियां ही नजर आएंगी। उम्मीद है, दुआ है हमारे सारे भाइयों को ऐसे ही प्यारी प्यारी भाभियां मिले, नसीब हो। फिलहाल बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट डिमांड की ओर। बड़ा ही हॉट सॉन्ग है भाई, जिस मूवी से सुनना चाहती हैं दरक्षा अंसारी जी। तो चलिए चलते हैं, रोमांटिक पे रोमांटिक गाने बज रहे हैं, डेडिकेशन पे गाने बज रहे हैं, तो क्यों ना बजा दे एक हॉट सॉन्ग आप सभी के लिए। 3 से 4 के सफर में एंजॉय करिए इस प्यारी सी डिमांड को। आवाज है श्रेया घोषाल जी की, बड़े दिनों बाद, लेकिन एंजॉय करते हैं। आज गाने बड़े बड़े अच्छे आए हुए हैं।

ना जी सबलू दादा, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है आपकी आरजे कांक्षा की लाइफ में। वैसे एक बात बता दूं, आपने ये मतलब पानी की बाल्टी में बचपन में बॉम्ब ब्लास्ट करना कैसे सीखा था, मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी करना है, दो चार ब्लास्ट कर ही देना है। हाँ, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, तो जब तक बारिश कम हो रही है तब तक ब्लास्ट करके ही घर के माहौल को थोड़ा सा आनंदित करते हैं, पर थोड़ा सा डांट भी खा लेंगे, उसकी बात अलग है। फिलहाल गाना बहुत ही प्यारा सा था, और गाना थोड़ा हटके हो, मूड चेंज करे तो अच्छा लगता है जब नए नए नगमे हो, क्योंकि गाने इतने सारे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से ले लीजिए, हॉलीवुड से ले लीजिए, ट्रॉलीवुड से ले लीजिए, जॉलीवुड से ले लीजिए, और भोजवुड से भी आप ले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इस शो में नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ रुक जाइएगा। बाकी किसी भी वुड से आप लेके आइए अपना वुड कटर, और वुड से गाना कटर कटर कटर कटर कट करके हम तक पहुंचा दीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारे प्यारे राम भवन जी की बबनान गोंडा से। आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को, उसके बाद पंडित जी का स्पेशल सॉन्ग होने वाला, क्योंकि जी जी जी का सॉन्ग है, अक्षय जी का सॉन्ग भी काफी अच्छा होता है वैसे।

हाँ जी दोस्तों, और अब बढ़ेंगे हम पंडित जी की डिमांड की ओर। और भाई इस डिमांड के उस पार आएंगे हम नेक्स्ट डिमांड लेकर के। लेकिन आज की जो प्लेलिस्ट बनी है ना, व्हाट अ प्लेलिस्ट। आप सुनिए, आनंद लीजिए भाई, एक से बढ़कर एक नगमे हैं और ये गाना तो बेहद खास है। आइए सुनते हैं पंडित जी की डिमांड पे प्यारा सा नगमा, हमारी चीची जी पे फिल्माया गया, यानी गोविंदा जी पे।

भाई इतना हंसे हम कभी नहीं, जहाँ जब हम यहाँ आते हैं और आप लोगों के बातचीत पढ़ते हैं तो भाई बड़ी हंसी आती। थैंक यू सो मच इतना हंसाने के लिए। मैं फिलहाल एक और नगमा है हमारे पास में, बेहद खास है और हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं आपने प्यारे जी अबीरबल जी यानी कि नागेश्वर जी को। और ये डिमांड हम तक आई हुई है हमारे प्यारे लिसनर विनोद भरद्वाज जी की ओर से जो हमें राजस्थान से सुनते हैं। तो चलिए आपके लिए स्पेशली हम पहुँचाते हैं आप तक ये गाना नागेश्वर धाकर जी रतलाम की गलियों से। रूपा जी और आपके लिए

हाँ जी, और उम्मीद है आप जरूर रूपा जी वापस आ जाएंगी। क्षमा करिएगा नागेश्वर जी, लेकिन हमारा घुरापाती दिमाग चल जाया करता है कभी कभी। और इस गाने के बाद होंगे हमारे अजीत साहब जो हमें सुनते हैं मुंबई से, फिर होंगे हमारे मनी शर्मा जी भटपुरवा से, और उसके बाद में होंगी हमारी नीना जी हमारे दिल से, यानी आप सभी की हाँ निवासी क्षेत्र गोंडा से, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे सबलू सावंत जी, फिर बादल गोयल जी आपकी।

हाँ जी, और नागेश्वर जी, आपके अंदर ये परिवर्तन देख के हमें काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि अगर वो चली जाएंगी तो आप दूसरी ढूंढ लेंगे। वैसे दूसरा ढूंढ भी लेना चाहिए, इंसान क्या होता है एक ही जख्म लेके बैठा रहता है, बार बार उसी को खुरेता रहता है। भाई एक जख्म पूरा होने दीजिए, दूसरे जख्म लीजिए ना, काहे को एक ही बैठ के पड़े। फिलहाल पार्थ वर्षा अर्पण जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, आपका गाना भी प्ले होगा सर, बस कुछ पलों का इंतजार करिएगा। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और नेक्स्ट डिमांड में सुनाने आप सभी को अजीज साहब की रिक्वेस्ट पे ये गाना आपने अभी एंजॉय किया है, विनोद भरद्वाज जी की रिक्वेस्ट पे जो हमें सुनते हैं जयपुर राजस्थान से। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने जी हाँ फोनी फरमाइशी कार्यक्रम रेडियो ज्ञान असली नहीं गोंडा को ट्यून करके रखो आपने 89.6 FM। अभी चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो मैं आपको और कुछ सुना दूं, उससे पहले ये गाना सुन लेते हैं। गाना नहीं, गजल है बड़ी प्यारी सी।

जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, दुनिया बेवफा है, इसलिए आप अपने लिए ईमानदार रहें, आप अपने प्रति ईमानदार रहें और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से करते रहें। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर। बहुत प्यारी डिमांड थी अजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं हम अपने प्यारे लिसनर मनी शर्मा जी की डिमांड की ओर। गाना बेहद खूबसूरत है, माय गॉड व्हाट अ किलिंग सॉन्ग फ्रॉम मूवी राब्ता। एंजॉय करते हैं अजीत साहब की आवाज से ये बेहद खूबसूरत सॉन्ग।

अभी आपने सुना लंबिया सी जुदाइयां, और अब बढ़ेंगे नीना जी की डिमांड की ओर। भैया नीना जी का डिमांड वो एकदम अलग है, बड़ा प्यारा है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए, देखते हैं क्या सुनाना चाहती हैं। हाँ जी।

हाँ जी, और आगे मैं कुछ कहने के लिए मतलब तैयार नहीं हूँ, मैं बस खाली मुस्कुरा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया नीना जी, हमको पता ही नहीं था, आपने बता दिया इस गाने के माध्यम से। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट गाने की ओर, जो की होगी सबलू जी की डिमांड। लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस को जो हमारे चैट बॉक्स में है। देखते कौन कौन उपस्थित है। तो आज उपस्थित है हमारे शो में इन द चैट बॉक्स, वैसे तो काफी लोग में लुक छुप के भी सुन लिया करते हैं मालूम है, आप सभी का भी स्वागत है जो हमें लुक छुप के सुनते हैं। उसके अलावा एड्स कुमार साहब एमपी रीवा से, राम मोहन जी हैं बमनान गोंडा से, दृक्षा सारी जी हैं सीतापुर से, और दीपांशी तिवारी जी हैं गोंडा से, प्रबल मिश्रा जी पंडित जी भी हमारे बीच में बने हुए हैं, और सभी सावन जी हैं सिस इंडिया मुंबई से, सिस माने आप अपने बहनों के साथ में सिस ओके, वैसे हम लोग प्यार से सिस बोलते हैं अपने बहनों को, और इसके अलावा मतलब दुआओं के साथ में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं बहनों, पैटक गए। मनी शर्मा जी हैं भटपुरवा से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे बीच में चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आए हैं भैया, एक एक ढूंढना पड़ेगा तो हम ढूंढते हैं। और नीना जी आ गई, नीना जी भी हैं चैट बॉक्स में, और हमारे प्यारे रतलाम के हमारे लिसनर यानी के हमारे नागेश्वर धाकड़ जी भी उपस्थित हैं। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं तो भैया बड़ा ही ज़्यादा आज आप लोगों ने हार्ट इमोजीज भेज दिए हैं। ढूंढ रहे हैं और ढूंढते देख रहे हैं कि आप लोगों की चिट चैट लगातार जारी है। तो भैया बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, और अगर हमें नेक्स्ट कोई मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। अर्पण पार्थ वर्षा जी भी हमारे बीच में हैं, और चलते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने सबलू सावन जी की, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। तो एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर देखते हैं नेक्स्ट डिमांड है किसकी।

जी हाँ, और सब शिव जी ने भाई अपनी डिमांड के माध्यम से क्या क्या कहना चाहा, सभी ने सुन लिया। ब्याह ब्याह ब्याह कर ले, ब्याह ब्याह ब्याह भैया। एक दफा भाभी जी आ चुकी हैं, दूसरा ब्याह करने की सोचिएगा भी मत, दूर दूर तक मत सोचिएगा, ऐसी दायद आपकी बहन आपको कतई नहीं देगी। और हाँ, आगे बढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड आई हमारे पास में बादल गोयल जी की ओर से, और इस मूवी का नाम है जवानी तो इश्क होना। भैया जवानी है तो इश्क होना, ऐसा कहा गया इस मूवी के माध्यम से, इस मूवी के टाइटल नेम से। बट हम तो कहते हैं, हम तो बचपन से ही इश्क करना शुरू कर देते हैं, कभी प्यारे प्यारे जानवरों से, कभी इस प्रकृति से, कभी अपनी मम्मा से, कभी अपने पापा से, कभी अपनी बुआ से। वाह, मुझे मेरा भतीजा याद आ गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस गाने की ओर, और कोशिश है हमारी भी कि ये मूवी हम देखें। फिलहाल कल तो टिकट ढूंढ रहे थे, मिली नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे हम जरूर फोकस करेंगे। उससे पहले आप सुन लीजिए इस गाने को। गाना है क्या, सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए।

हमको एक बात नहीं समझ आती, हम कितना भी मतलब कोशिश करें, कितना भी कुछ भी कर लें, आप सभी के गाने में कभी कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती हूँ। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है लाइफ में, वैसे छूटना अच्छा होता है ताकि नेक्स्ट ट्राई के लिए बना रहे, पर कभी कभी ना प्लेलिस्ट इतनी प्यारी होती है कि मन ही नहीं करता कि किसी गाने को छोड़ दूं। फिलहाल वक्त देखिए, हो गए हैं 3:49 और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ। उससे पहले हम स्वागत करेंगे कमल नयन जी आपका, और इसके अलावा रवि जी आगे, हमारे चिंटू जी आगे, आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हम तक पहुंचा है रीना शर्मा जी की ओर से फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, और इस गाने के बाद आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने प्यारे पार्थ अर्पण वर्षा जी की, जो कि डेडिकेशन में आया हुआ है उनकी बिल लवट के लिए। तो ये फिलहाल ये गाना एंजॉय करें, फिर आगे आते हैं।

सुबामी सुबामी ऐसे ही सारी तमन्नाएं आप सभी की पूरी होती रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, अर्पण पार्थ वर्षा जी की ओर से आया हुआ ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं इनकी बिलवेड रूपा जी के लिए, भाई जो सुल्तानपुर से इन्हें सुन रही हैं। चलते हैं इस गाने की ओर, गाना बहुत ही प्यारा, उससे बहुत ज्यादा प्यारा ये मूवी भी है, आइए एंजॉय करते हैं।

हाँ जी, तो ये खूबसूरत सा नगमा भी आपने एंजॉय किया है अर्पण पास वर्षा जी की ओर से, उनकी बिलवर्ड यानी के रूपा जी के लिए, जो उन्हें सुल्तानपुर से सुनी है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी शबा जी की। शबा जी ने बड़े ही दिनों बाद में डिमांड की और आज काफी डिमांड रह जाएंगी। माई गॉड, 3:53 क्या करें हम।

फसाना, क्या खूब गाना था, मजा आ गया। शबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। 3:55 हो गए हैं दोस्तों, सुरेश कुमार जी की डिमांड अब हम लेंगे। उसके बाद आज की लास्ट डिमांड होगी हमारे मुकेश जी की, जो हमें दिल से सुनते हैं। और माफी चाहूंगी मैं उन सभी से जिनकी डिमांड आज रह जाएंगी। रईस साहब नेक्स्ट आप ही का था, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी के कारण मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी। निष्ठा तिवारी जी आपसे भी माफी चाहेंगे। और इसके अलावा जो लिसनर हमारे रह जाएंगे एहसान जी हैं, और इसके अलावा हमारे बीच में जो बसते हैं वो हैं अंश जी और राहुल जी, जो हमें सुनने हैं सीतापुर से। और अभी भी हमारे पास में कॉल आ रही है लगातार। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी डिमांड्स नहीं कंप्लीट कर सकती, एक ही घंटा होता है। और उम्मीद है कल आप फिर से यही डिमांड करेंगे। निष्ठा जी स्पेशली फॉर यू, आप प्लीज़ कल कॉल कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी डिमांड को पूरा कर पाऊँ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। सुरेश जी की डिमांड है, गाना बड़ा ही प्यारा है।

जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत था। और अभी हमारे साथ में जुड़े हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी अरेबिया से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मुस्तफ़ा जी। और चलते चलते अब्दुल मजीम साहब भी हमारे पास में मैसेज पहुंचा चुके हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं इनकी मैसेज, बड़े प्यारे होते हैं। हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है, ओहो मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी है, माय गॉड। घर से भागो तो संभल कर भागना दोस्त, हाँ घर से भागो तो संभल कर भागना दोस्त, हमने कट घरों में बदलती हुई रानी देखी है। ओहो क्या बात है, बहुत गहराई। चलिए चलते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, और ये लास्ट डिमांड हमारे पास में है हमारे मुकेश जी का सिग्नेचर सॉन्ग, आप सभी तक पहुंचाते हैं। भाई गाना बड़ा ही प्यारा सा है और ये हमें सुनते हैं दिल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। और जिन जिनकी डिमांड रह गई है कल प्लीज आप फिर से रिक्वेस्ट करिएगा, या फिर शाम में गीत आपके नाम से जरूर हाजिरी दर्ज कराइएगा कॉल या मैसेज के माध्यम से। चॉइस इज योर्स। एंड रईस साहब निष्ठा तिवारी जी, कल आप स्पेशली प्लीज डिमांड करिएगा, मैं जरूर ट्यून करूंगी। इसके अलावा रह गए हमारे प्यारे एहसान जी और अंश जी और राहुल जी। फिलहाल ये गाना और इसी के साथ मैं लेती हूँ बाय आप सभी से, ख्याल रखिएगा।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। दोस्तों, ये शो ऐसा है जिसमें हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज यानी आपको ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि हर शख्स में एक ऐसे गुण होते हैं जो उसको शख्सियत में तब्दील करते हैं। सो ऐसे ही आज हमारे बीच गोंडा से नहीं बल्कि गोंडा के पड़ोसी नगर अयोध्या नगरी से मेहमान आ चुकी हैं। जी हाँ, बेशक। और चूंकि आज की जो बातचीत होगी वो बड़ी ही लयबद्ध होगी, अब आप सोचेंगे हम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे, इतना क्यों घुमा रहे। भाई साहब, जब गेस्ट के रूप में कवित्री सामने हो तो बातों को सीधा कहना बेईमानी होता है। फिलहाल मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताने का उनका अपना एक अलग अंदाज है। तो मैं चाहूंगा, अपनी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने ही अंदाज में हमारे लिसनर्स को अपना परिचय दीजिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कड़कड़ में जहाँ राम है, माँ सरस्वती का जो धाम है, कड़कड़ में जहाँ राम है, माँ सरस्वती का जो धाम है, वहाँ की निवासी मैं शिवानी श्रीवास्तव सहज, करती हस्त जोड़ आपको प्रणाम है, करती हस्त जोड़ आप सभी को प्रणाम है।
1: जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपने ही अंदाज में अपना परिचय देने के लिए। आज हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद है स्टूडियो में शिवानी श्रीवास्तव सहज। सहज आपका तकिया कलाम है, लेकिन मुझे पर्सनली मैं बताऊं कि कोई भी जब नाम आता है और उसके आगे तकिया कलाम लगा होता है, तो सबसे पहली क्यूरियोसिटी मेरी ये होती है कि उस तकिया कलाम को जानूं क्या है। तो आपके नाम के आगे सहज लगा है, ये सहज की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल सर। सर, ये जैसा आपने बताया कि मैं कवित्री हूँ, जी हाँ, मैं आप सभी के समक्ष एक कवित्री, युवा अयोध्या से चलकर आई युवा कवित्री शिवानी श्रीवास्तव सहज हूँ। सर, हमारा जो पहला कवि सम्मेलन का मंच था वो था मतंग की राम सर, वहाँ आर के मतंग सर की 25th एनिवर्सरी के उपलक्ष में उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया था, वहाँ पर मैं इन्वाइटेड थी। सर, जैसे पोएट अगर मैं वहाँ पर इन्वाइटेड थी तो सर ने मतलब पहले ही मुझसे बात कर रखी थी, तो सर को लगा थोड़ा सा मैं सहज हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने सहज मेरी पर्सनालिटी के तौर पर मुझे एक एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया था, एक तोहफे के तौर पर, कि आप आज से आपका टाइटल सहज है। तो वहां से मुझे मतंग के नाम से आरके सर के द्वारा मुझे नाम मिला है सहज।
1: क्या बात है, आप बहुत खुशनसीब हैं, लोगों को तोहफे में बहुत एक केक मिलते हैं।
2: Yes, sir.
1: कपड़े मिल जाते हैं, टी शर्ट शर्ट तो हमको बहुत मिली है, लेकिन एक नाम, एक लकब, एक टाइटल, वो भी लाइफ टाइम साथ में रहना, Yes, ये sir. बहुत बड़ी बात है।
2: सर, लोग पूछते हैं ना कि तोहफे में क्या दूं, मैं लोगों से ये कहती हूँ कि ऐसा कोई तोहफा जो लाइफ टाइम चले, तो ये तो बिना सर को बताए ही लाइफ टाइम के लिए एक तोहफा मिला है। तो मैं आर के सर को यहाँ से आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच टू आर के सर।
1: बेशक, आर के सर डिजर्व करते हैं, इतना प्यारा उन्होंने नाम दिया सहज। चलिए, इसी सहजता के साथ हम चलते हैं और आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए, आप गोंडा एफएम पर आई हैं, हमारे श्रोता आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम चाहेंगे एक संक्षिप्त सा परिचय आप बताएं अपने बारे में, कि आपकी फैमिली कहाँ की है रहने वाली, और अभी फिलहाल आप कर रहे हैं क्या, और क्या, कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, इन सब चीजों के बारे में।
2: सर, मैं अयोध्या फैजाबाद नियावा से बिलोंग करती हूँ, नियावा एक जगह है, वहाँ पर बिलोंग करती हूँ। सर, मेरी स्कूलिंग हुई है केजी टू ट्वेल्थ, मैंने पूरी पढ़ाई की है अपनी कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से, और उसके बाद मैंने बीए कर रखा है साकेत डिग्री कॉलेज से, और इसके बाद मैंने अपना पसंदीदा एक लाइन चुनी है सोशल वर्क।
1: ओके
2: सर, मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था, तो मैंने इस पर बहुत सर्च किया, तो लोगों को बातचीत करके बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे पता चला सोशल वर्क में मास्टर्स भी होते हैं, तो सर मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसलिए बहुत ही मन से बहुत ही से किया है, मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कर रखा है मैंने।
1: क्या बात है,
2: तो अभी तो मैं एज अ सोशल वर्कर कवित्री के साथ साथ एज अ सोशल वर्कर भी आप सभी के सामने हूँ।
1: वाह, क्या बात है, तो एक कवित्री भी है और समाज सेविका भी है। आपके मुंह से निकल गया था कि बहुत पसंद था, अभी सब पसंद नहीं क्या?
2: पसंद है सर, पसंद है, और मैं उसको हमेशा पसंद रहेगा, क्योंकि मैं मेरा एक मोटो ही है कि मैं एक, मेरा एम है कि मैं एक बेस्ट सोशल वर्कर और बेस्ट पोइटेस बनूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हर एक बच्चा, मतलब अभी तो फैमिली जानती है, मोहल्ले वाले जानते हैं, कुछ शहर वाले जानते हैं, और धीरे धीरे कहीं दूर के लोग भी जान रहे हैं, जैसे कि अयोध्या से कुछ दूर आपने बताया पड़ोसी शहर से आई है, तो पड़ोसी शहर जाने की आप लोग भी जान रहे हैं मुझे, तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और लेकिन मेरी तो तमन्ना है कि मुझे छोटे छोटे बच्चे भी हर कोई जाने की एक बेस्ट सोशल वर्कर और बेस्ट पोइटेस है दीदी।
1: वाओ, क्या बात है। कहते हैं कि जब लाइफ में उद्देश्य होता है तो लाइफ मीनिंगफुल होती है, मायने उसके होते हैं। वापस से चलते हैं और हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में।
2: मेरे पापा मिस्टर सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कैटर्स हैं हमारा, अपना टेंट का और टेंट लाइट केटरिंग और गेस्ट हाउस हमारा एक बिजनेस ही है, इवेंट शो का, इवेंट का एक बिजनेस है, वो पूरी हैंडल होता है। मेरे पापा एक फेमस भी रह चुके हैं, हैं भी अभी भी हैं, फेमस हैं सुरेश कुमार श्रीवास्तव कैटर्स के नाम से। मेरी फैमिली को सर, मैं तो पोइट्री थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती थी, बट बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा हकलाती थी। तो सर जब मैं, यस सर, तो ये मेरी बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट और आज के टाइम में बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं उस टाइम पे हकलाती थी, और लोगों को लगता था कि एक होता ना कि हकलाना एक बीमारी के तौर पर होता है, लेकिन मुझे आज पता चलता है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस लो था, कॉन्फिडेंस लो की वजह से मेरी ये प्रॉब्लम थी। बिकॉज जब मैं स्कूल में रीडिंग करना स्टार्ट करती थी, क्लास में रीडिंग करवाते हैं बच्चों से, जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती थी तो टीचर्स बैठा देते थे, बच्चे होते थे, बच्चे हंसने लगते थे। तो ये सेवेंथ क्लास तक मैंने ये चीज बहुत ज्यादा फेस की है, और इसकी वजह से जहाँ, मतलब मैं शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लो की वजह से और मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स भी गिरने लगे, क्योंकि मैं अंदर से बहुत अंदर से उदास रहने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्या मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी, और मैं तो पोइट्री लिखती हूँ, मेरा मंच का शौकीन है, मैं कैसे करूंगी आखिर। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा घुलती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी गिरने लगे थे। लेकिन हाँ, एट्थ क्लास में मेरे साथ एक ईश्वर की देन कह सकते हैं, ईश्वर के रूप में हमारे, मेरी लाइफ में एंट्री हुई खुशी निगम, मेरी बहुत बहुत ही खास फ्रेंड है। मैं तो मानती हूँ कि माँ ने जन्म दिया है और खुशी ने जीवन दिया है।
1: ओह माय गॉड,
2: क्योंकि सर तो उसने, मतलब जैसे टीचर्स से लड़ना शुरू किया, बच्चों से लड़ना शुरू किया, क्लास के क्लासमेट्स से लड़ना, सबसे लड़ना शुरू किया, यस सर, वो मेरे लिए लड़ना शुरू की। तब तो हमारी फ्रेंडशिप भी कुछ खास नहीं थी, बट एक होता है ना कि मैंने कहा कि एक ईश्वरीय रूप में आई, तो उसने, मतलब मेरे लिए, मैं, हम लोग कुछ खास फ्रेंड्स नहीं थे उस टाइम पे, वो मेरे लिए लड़ना शुरू की कि टीचर्स से कि आप उसको मौका ही नहीं दोगे तो फिर वो कैसे बढ़ेगी, वो लिखती भी है, ये भी करती है, वो भी करती है, आप लोग बढ़ने नहीं देते। जब भी बच्चे हंसना शुरू करते थे तो लोगों को डांटना, बहुत ज्यादा उसने स्टैंड लिया। तब जाकर के मुझे पता चला कि हाँ, ये जब मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज होने लगी, थोड़ी सी मतलब ठीक होने लगी, तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये मेरा कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लो की वजह से था। और अभी भी मैं लोगों को, जो मतलब कहीं ना कहीं लोगों की ये वीकनेस होती है हकलाने की, तो मैं लोगों से ये कहूंगी कि पहले आप ट्राई करो कि आपका कॉन्फिडेंस लो की वजह से भी ये होता है। और स्कूल के टीचर्स से और उनके फ्रेंड्स से ये बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी कमियों पर हंसने से ज्यादा आप फोकस करें कि उसके अंदर जो टैलेंट है, या फिर उसको एक मौका तो दीजिए, रीडिंग का मौका तो दीजिए। क्या पता आज वो, जैसे कि मैं कहा, मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं करती थी, एक सेंटेंस बोलने में 5 मिनट लगाती थी, और आज मैं आपके सामने एक कवित्री के रूप में खड़ी हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और क्या पता आपके साथ, आपका कोई साथी जो हकलाता है, वो एक हीरा हो, मुझसे बड़ा हीरा हो, मैं तो कोई हीरा नहीं, लेकिन मुझसे कहीं बड़ा हीरा हो। तो आप हमेशा लोगों को मोटिवेट कीजिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए।
1: वैसे आपने एक बात कहा कि कोई अगर हकलाता है कोई बच्चा, तो उसके पीछे वजह हो सकती है उसका लो कॉन्फिडेंस।
2: यस सर,
1: लो कॉन्फिडेंस आता है लेग पुलिंग करने से, जो आसपास के लोग होते हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते, उपहास करते हैं उनका, मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है एक मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि हर शख्स को हर बार और मौका देते रहना चाहिए।
2: जी जी जी।
1: क्योंकि समाज को भी नहीं पता होता वो मजाक में किसी की जिंदगी का क्या छीन सकता है।
2: ये तो है सर।
1: और एक ताली आपका किसी की जिंदगी को क्या दे सकती है, ये भी नहीं पता है।
2: ये तो है सर। सर मैं आपकी एक लाइन पर, आपने अभी कहा ना कि लोगों को एक मौका नहीं, हजार मौका देना चाहिए। सर एक मौके में ही ना, अगर इंसान को एक मौका मिल जाए तो उसमें वो अगले इंसान से मौका मांगेगा नहीं उसके बाद। इंसान अगर किसी में कमी होती है या लो कॉन्फिडेंस होता है या कोई भी कमी होती है तो इंसान आपसे मौका सिर्फ एक मांगता है, सिर्फ एक मौका दे दीजिए, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है ना कि आप एक मौका दीजिए उसके बाद तो आप खुद ही मौका दोगे। तो वो चीजें होती हैं, तो एक मौका दीजिए आप, बाकी तो आप दोगे ही, वो मुझे कॉन्फिडेंस है। तो वो क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंट हो जाता है ना तो उसके अंदर आ जाती है चीजें।
1: करेक्ट। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, हालांकि ये मुद्दे में तो नहीं था लेकिन मैं फिर भी अब सवाल आ रहा है तो पूछ लूं आपसे। हम कॉन्फिडेंस जैसा वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कई ऐसी कंट्रीज है, कई ऐसे समाज है, सोसाइटीज है जहां पे कॉन्फिडेंस जैसी चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वहां पे उनकी परवरिश, उनका माहौल ऐसा रहता है कि सभी के लिए काफी इक्वल जैसी चीजें होती हैं, तो वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो जेन्युइनली मतलब अपने अंदर हमेशा ही अपने पे विश्वास करते हैं कह सकते हैं। अब चाहे उसको आप कॉन्फिडेंस का नाम दो या कुछ और कह के फिर उसको कॉन्फिडेंस का नाम दो, बट मुझे लगता है कि शायद अगर हम माहौल ऐसा बनाए जहां पे कॉन्फिडेंस अलग से लाने की और भरने की जरूरत ना हो, जहां पे हर शख्स अपने पे डिपेंडेंट हो, अपनी वर्थ समझे, अपनी वैल्यू को, तो मुझे लगता है वहां कॉन्फिडेंस जैसे शब्द की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या कहना आपका?
2: सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस पर। मैं बस यही कहूँगी कि हाँ, कहते हैं परवरिश के ऊपर भी डिपेंड होता है, लेकिन मैं कहूँगी मान लीजिए सर एक हमारी फैमिली है जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक है, बहुत सी चीज़ें, हम ऐसा नहीं है कि मैं ही फेस क्यों, काफ़ी लोग मैं तो फिर भी फेस नहीं क्यों, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मैं आज यहाँ पर हूँ तो मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर मैं, मेरी तो ये स्टोरी रही है, मैं बहुत छिप करके अपनी लाइफ इंजॉय की हूँ। मेरी लाइफ में मतलब जो पोइट्री की स्टार्टिंग मैंने की है वो एक छिप करके की है, तो उसके बाद तो फर्स्ट टाइम तो नहीं बताया, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम के बाद मैंने मम्मी को बताना शुरू किया। फिर भी पापा को नहीं पता था तो भी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया
1: किसी
2: है।
1: के पापा को कुछ नहीं पता होता है। ये सिर्फ आपका नहीं, ये जग का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है
2: ये। तो फिर मम्मी ने वहां से सपोर्ट करना शुरू किया। इवन आज भी मम्मी कहीं ना कहीं अगर मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं लेट नाइट आती हूँ या फिर कहीं ज्यादा दूर होता है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव का कॉल आ गया, आप भेजती हो, ऐसा होता है, वैसा होता है, कहीं ना कहीं मम्मी आज भी सुनती हैं कि हाँ आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो। फिर भी मम्मी बाद में मेरे को डांट देती है, लेकिन फिर भी मम्मी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करती, क्योंकि मम्मी को पता है, आई थिंक मम्मी को पता है कि हाँ बेटी मेरी ऊंचाइयां छुएगी, उसके अंदर है,
1: और फिर जो भी कर रही है वो आप इतनी समझदार हैं कि अपना अच्छा बुरा सब आप जानते हैं।
2: जी सर, ये तो सर कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपने कहा ना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर, सर उस पर मैं बस एक ही चीज कहूंगी, जैसे कि हम फैमिली में हर जगह कॉन्फिडेंस का वो नहीं होता, लेकिन हम खुद को डेवलप करना होता है। तो सर एक शायरी के तौर पर मैं कहना चाहूंगी, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती है। सर सपोर्टिव तो किसी की फैमिली नहीं होती है, खुद करना पड़ता है। खुद पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी फैमिली भी विश्वास नहीं कर पाएगी, कोई नहीं विश्वास कर पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी पर कहना है, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती, बिन लड़े बिन डटे लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती, लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती। कर जो करना चाहते हो, घर जो करना चाहते हो मंजिल हासिल तुम, तो सुनो उठो करो और दिखा दो, उठो करो और दिखा दो, कर सकते हो हर पार वो दरिया तुम, जो कभी किसी ने तुमसे उम्मीद भी नहीं की, रोकर और पछता कर मेहनत रंग नहीं लाती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियां याद आ गई,
2: लहरों से डर कर
1: नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
2: जी सर।
1: मैं अगर लिखावट की बात करूं, चूंकि आप एक कवित्री हैं, पहली बार कब लिखा था?
2: सर मैं वैसे तो पोइट्री थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती हूँ, ऐसे त्रुटियों के साथ लिखती थी, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, जो लिखती थी बस फ्रेंड्स को सुनाना शुरू कर देती थी, और फ्रेंड्स भी मेरी सुनना नहीं पसंद करती थी क्योंकि उस वक्त मैं हकलाती थी। जैसा कि अच्छा। मैंने बताया 8th क्लास के बाद से थोड़ा सा मेरे अंदर वो चीज़ चेंजेस आए हैं, तो फ्रेंड्स भी कहती थी हाँ ठीक है, जो क्लोज फ्रेंड्स थी वो थोड़ा बहुत ठीक है करके किसी तरह दिल पे पत्थर रख के सुन लेती थी।
1: सुन लेते थे।
2: तो मैं थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती थी, लेकिन मेरा मंचन शुरू हुआ है 12th के बाद से।
1: ओके।
2: जी सर, 12th के बाद से मेरा पहला कंपटीशन, मैं जो मैंने आपको अभी शायद बताया कि मैंने छिप करके अपनी जो जर्नी शुरू की है कवित्री लाइन की, वो छिप करके शुरू की है।
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, छिप कर कैसे होता है भाई, हम भी कर ले कुछ शुरुआत अपनी छिप कर।
2: जी जरूर सर। सर एक्चुअली मैं एक बार मतलब मैं एसएससी 12th के बाद मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की थी
1: जी।
2: तो मैं कोचिंग जाती थी इनोवेशन क्लासेस, सुधांशु सर की कोचिंग है, इनोवेशन क्लासेस जाती थी। तो वहाँ पर मेरे कोचिंग का टाइम था 3 से 6। तो सर मैं जाती थी और रास्ते में एक बार ऑटो से मैं जाती थी, रास्ते में जाते वक्त एक बार मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पर टैलेंट शो हो रहा था, वहाँ पर पोएट्री का भी कंपटीशन था। तो सर मैंने देखा, मैंने ऐसे रैंडम फ़ोटो क्लिक कर ली और मैंने उसके बारे में लेकिन सोचा नहीं कि मैं कभी पार्टिसिपेट करूँगी। एक हफ्ते पहले मैंने, जिस दिन था उसके एक हफ्ते पहले, बट जिस दिन वो कंपटीशन था उस दिन रैंडम मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार आज तो कंपटीशन था, चला जाए क्या। वो भी टाइम ओवर होने वाला था, वो शो सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक था। टाइम ओवर होने

0: दूर तक मेरा नाम नहीं था, क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो वहाँ के सर को क्या ही पता होगा।
1: करेक्ट।
0: तो सर वहाँ पर मैं गई और बहुत रिक्वेस्ट किया, अपना नाम मैंने वो किया। उसके बाद फिर मुझे खुद आज बिलीव नहीं होता है कि कैसे हुआ, लेकिन लास्ट पार्टिसिपेंट मैं थी और फर्स्ट प्राइज मैंने पाया था।
1: वाह, इसे कहते हैं नीचे से टॉप करना, लेकिन नीचे से आपने ऊपर जाके टॉप किया है।
0: यस सर,
1: ये पहली बार सुना है।
0: ये तो है सर। तो सर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं वहां पर प्राइज मिला था मुझे, और मैं छिप करके, जैसा कि मैंने बताया छिप करके, सर यहां पर छिप करके वर्ड यही आया है।
1: अरे बड़ा इंटरेस्टिंग
0: कि मैं यस सर सर छिप करके वर्ड यहां से आया है कि मैं जस्ट जब कोचिंग से मैंने बताया यू टर्न मैंने लिया
1: जी।
0: सर मैंने बताया खुद को भी नहीं पता था मुझे, तो जब मुझे खुद को नहीं पता था तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी किसी को नहीं पता, घर वालों को भी किसी को नहीं पता।
1: जाहिर है
0: घर वालों को तो पसंद भी नहीं था। इवन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी सर, मेरी टीचर्स बहुत परेशान थी। जब पीटीएम होता था मेरी शिकायत कहीं नहीं आती थी कि बच्ची का मार्क्स कम आता है या बच्ची बोलती, कुछ नहीं, सिर्फ एक शिकायत आती थी मेरी मैम थी। मैम हमेशा मम्मी से यही कहती थी, बिटिया बहुत लिखती है, पोयम लिखती है और ला करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब करती है।
1: टॉर्चर।
0: सर बस वही एक शिकायत आती थी।
1: अच्छा।
0: तो जब मैं वहां से ट्रॉफी ले प्राइज लेकर के, जब मैं घर वालों को तो पता नहीं था, तो मुझे दिमाग में ये था कि मुझे इस रोड पे कोई देख लिया तो मुझे मेरी वाट लग जाएगी, मैं कैसे क्या करूंगी। प्राइज मिला था वो खुशी से कहीं ज्यादा मेरे अंदर डर था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं कोचिंग पहुंची, कोचिंग वाले भी डर गए थे कि लड़की, और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी।
1: अच्छा।
0: कोचिंग सर लोग पूछे कि इतनी बारिश में तुम आई, तुम कोचिंग ही निकली थी, तुम घर से ही आ रही हो, आखिर क्या। कई सवाल थे सर उस टाइम पे, निगेटिव क्वेश्चंस भी थे, पॉजिटिव क्वेश्चंस भी थे, लेकिन जब मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दी, बस मैंने प्राइज दिखाया सर को और मैंने सर को बोला कि सर मैं पोइट्री कॉम्पिटिशन में गई थी, सॉरी सर मैं कोचिंग के टाइम गई, लेकिन सॉरी सर मैं पोइट्री कॉम्पिटिशन में गई थी और ये मैं फर्स्ट प्राइज लाई हूँ। सर मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ, सॉरी सर, मैं ये सब भूल करके सर को पहले बोली। फिर सर ने पानी वानी पिलाया, फिर सर ने बोला कि ओके फाइन, फिर मैं घर गई। लेकिन सर आप यकीन नहीं मानेंगे, छिप करके वर्ड यहीं से आया कि मैं वो प्राइज फर्स्ट आने के बाद भी, लोग फर्स्ट प्राइज पाने के बाद घर में उछल जाते हैं, मैं फर्स्ट प्राइज लाने के बाद भी उसको छिपाना पड़ा मुझे,
1: छिपाना पड़ा। वाओ।
0: क्योंकि घर में पता नहीं था,
1: नहीं
0: और मैं घर में
1: पताते
0: तो फिर क्या क्वेश्चंस आते, कैसे गई, क्यों गई, क्या पता आगे रोक ना दिया जाए, टोक ना दिया जाए, कैसे क्या होगा, तो मैं छिपाए रखी। फिर जब एक बार कॉल आई, जैसा कि मैंने बताया मेरा कवि सम्मेलन का पहला मंच था मतंग के राम, तो वहां पर मतंग के राम, वहाँ से मेरे घर के पास एक स्कूल है शुभम सर का, सर से ऐसे बातचीत होती थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे मामा का एक, तुम पोइट्री लिखती हो, मेरे मामा की एनिवर्सरी आ रही है, वो कवि सम्मेलन करा रहे हैं, बहुत बड़े कवि हैं, तो आर के तिवारी सर, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा भैया करेंगे कैसे, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कराया, तो कॉन्टेक्ट आया, सर से बातचीत हुई, तो मेरा सबसे पहला जो शो था, मेरा पहला जो कवि सम्मेलन था वो था मतंग के राम में।
1: मतंग के राम।
0: यस सर। तो जब वहाँ के लिए तो मैंने घर में बताया कि मम्मी एक बड़ा शो है, ये है वो है, पापा को पसंद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पापा कहते हैं चलो ठीक है बिटिया तुम्हें पसंद है, चलो चलते हैं,
1: चलो देखते हैं। वाओ।
0: तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, तो इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कहेंगे, तो पापा ने मेरे पसंद ना हो करके भी उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो सेम वही चीज मैं रिलेट करूंगी अपने कवि सम्मेलन से, कि सुबह से शाम तक का मेरा प्रोग्राम था, रात इवन हो गई थी, रात के 9-10 बज गए थे, वो मेरा पहला कवि सम्मेलन, मैं भी डर रही थी, पहला कवि सम्मेलन रात के 10, घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते, और घर वाले कहेंगे सुबह से तुम रात तक जाओगी, अगर मैं इस जर्नी में फैमिली अलाउड भी कर दी तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है सुबह से शाम तक नहीं जाना है। अभी हाल ही में मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम किया है वंस मोर सीजन 3 में, तो वहाँ पर मेरी मम्मी लोग गई थी और पापा भी दूर दूर तक जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं पड़ोस में ही, पड़ोस कहेंगे लेकिन फिर भी काफी दूर है अयोध्या यहाँ से, बाइक से मेरे पापा साथ में आए हुए हैं, मेरे पापा के साथ में इतनी दूर से बाइक से आई, तो पापा की हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी पापा इतनी दूर ले करके आए।
1: सही बात है।
0: तो अभी पापा का मेरी ये जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हर एक को एक जरूर कहूंगी, जैसा कि मैंने पंक्ति पढ़ी थी, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में आपकी बात नहीं होती, तो मैं बस यही कहूंगी कि आप खुद पर विश्वास रखिए, बाकी घर वाले लोग कहते हैं ना सर, ये एक लाइन बहुत आसानी से लोग कह देते हैं, मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं है।

0: मैं उन सबसे सवाल करूंगी, क्या आप खुद सपोर्टिव हैं? क्या आप खुद सपोर्टिव हैं?
1: बड़ा सवाल है, सही बात है।
0: क्योंकि लोग कह देते हैं बहुत आसानी से, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज एक स्टेज पर हैं उनसे पूछिए, क्या उनके घर वाले सपोर्टिव थे?
1: नहीं,
0: कहीं नहीं थे,
1: सच में
0: कोई नहीं था। लेकिन आज वो लोग इस स्टेज पर क्यों पहुंचे? क्योंकि, और आज भी आप देखोगे ना कि बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं ना, तो अपनी फैमिली मेंबर्स किसी को लाते हैं स्टेज पर तो बड़े उससे लाते हैं और फैमिली वाले खुश होते हैं। लेकिन किसी भी स्टार को आज आई थिंक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये कहूंगी, कोई भी स्टार ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली सपोर्ट की हो और आज वो मंच पर है तो उसकी फैमिली खुशी से ना आ रही हो। बिकॉज वो स्टार कहां से, उसकी फैमिली को कैसे मनाए? ऐसा नहीं है कि आपसे रिक्वेस्ट करके मनाए, उसने पहले खुद पर विश्वास किया। हमें पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए, बाकी फैमिली, फैमिली आप खुद को सपोर्ट कीजिए, कहीं से करिए लेकिन आप खुद को सपोर्ट कीजिए, बाकी फैमिली तो आपको करेगी। आज मेरे पापा बहुत कॉन्फिडेंटली सर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो शायद लोग कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है वो अंदर से रो जाता है, लेकिन सर मुझे उस दिन सबसे अच्छी रियल वाली स्माइल मेरी अंदर से तभी निकलती है, वो उस टाइम निकल जाती है कि मेरे पापा लोगों से कहते हैं मेरी बिटिया भी लिखती है, मेरी बिटिया कवित्री है और मेरी बिटिया समाज सेविका है। पापा के साथ एक बार मैं होली सम्मेलन, होली मिलन समारोह था, तो वहाँ पर कई ओल्ड लेडीज थी मेरे घर के थोड़ा सा और आगे पर, एक संस्थान की तरफ से मैं गई थी, संस्था की तरफ से मैं गई थी, तो वहाँ पर लोगों को साड़ियाँ बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, तो मैं पापा के साथ गई थी। पापा को बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी पापा को कि मेरी बिटिया समाज सेविका है। तो पापा लोगों से जब बोलते हैं कि मेरी बिटिया कवित्री है, मेरी बिटिया समाज सेविका है, मेरी बिटिया आकाशवाणी में है और आज बोल रहे हैं कि मेरी बिटिया दूरदर्शन में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने खुद को सपोर्ट किया। तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, आप खुद को सपोर्ट कीजिए, बाकी फैमिली आप कीजिए तो एक बार, आप अपने आप को एक मौका दीजिए, उसके बाद वो हो जाएगा।
1: चलिए तो भाई आप खुद को जरा सपोर्ट करिए और हम 5 मिनट का पूरा वक्त देते हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं। आने के बाद मिस शिवानी श्रीवास्तव से हम बात करेंगे जो कि अपना लकब लगाती हैं सहज, बहुत ही सहजता से फिलहाल अभी तक बात हुई है। आगे की कुछ कठिन प्रश्न भी हम पूछने वाले हैं लेकिन उसका कितना सहजता से आंसर मिलता है ये तो खैर म्यूजिकल ब्रेक के बाद जानेंगे। सुनते रहिए अपना 89.6 FM गुना शहर की।
2: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। You know you've been my best buddy since forever, right?

0: अजी म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं शाम के शो गोधुली में। और आज हमारे साथ हमारे पड़ोस के नगर यानी अयोध्या से आई हुई हैं कवित्री शिवानी श्रीवास्तव सहज। एक बार वापस से आपका हम स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर
0: जी। शिवानी, चूंकि आपने बताया चूंकि आप कवित्री भी हैं और आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में आप बतौर संचालिका भी हैं, उसमें इसके साथ ही साथ आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई है।
1: यस सर
0: जी, जिसका नाम है एक कलम बेटियों के नाम, जिस पर हम अभी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम नाटक से जुड़ी कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि विधा बहुत अलग है। एक कविता लिखना सही है लेकिन नाटक लिखना काफी अलग है।
1: जी सर,
0: ये कॉम्बिनेशन कैसे शिवानी में दिख रहा है, ये हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर, सर मैं कहूँगी कि जैसे कि मैं थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करती हूँ लोग चीज़ों को, कि मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं अपने शहर में। जैसे मेरे घर के सामने एक लेडी रहती हैं, एक दीदी रहती हैं, तो उनकी शादी वगैरह नहीं हुई, उनकी फैमिली नहीं है, तो मैं उनके लिए जो चीज़ करना चाहती हूँ उनके लिए है, या ऐसे किसी इंसान को देखती हूँ और उनके लिए जो चीज़ करना चाहती हूँ, और वो मैं इमेजिन करके कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, यार वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं एक नाट्य के तौर पर डाल देती हूँ।
0: वाओ, पहला नाटक कौन सा था?
1: सर पहला नाटक तो अच्छा, मैंने उन्हीं पर लिखा था।
0: मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन।
1: यस सर, कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब तब मैं बहुत छोटी भी थी, तो मैं ये अपने आप को इमेजिन करके लिखी थी कि मैं, मतलब मैंने किस तरह मतलब उनको की हेल्प किया, हालांकि हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि वो उनकी हेल्प करना बहुत बड़ा टास्क है। मेरे पापा ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, इवन उनका मकान वगैरह बना करके दिया, सब कुछ किया, बहुत ज्यादा ही टास्किंग है, लेकिन फिर भी मैंने जो इमेजिन किया था उस तौर पर बहुत अच्छा था। अगर वो उस हेल्पफुल होती तो शायद आज मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता।
0: राइट।
1: तो सर मैंने उनको लेकर के लिखा था कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब जो कि सामने देख रही है, लोग हेल्प नहीं करते हैं। मैंने ये दिखाया है नाट्य में कि एक छोटी सी बच्ची, लोग जिसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं उसकी हेल्प करना चाह रही है, तो उससे इंसान को जो जिसकी हेल्प वो करना चाहती है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि मतलब लोगों को डांटती है, लोगों से बात नहीं करती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, इवन उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। तो एक मतलब उसकी फैमिली भी, बच्ची की फैमिली भी मना करती है कि उससे बात नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी वो हेल्प, उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये नीडी है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो बच्ची हेल्प करती है कैसे, कि उसको मतलब वो खुद थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हो करके जो दीदी है उनको पढ़ा रही है, उनको पढ़ा रही है, उनको पहले मोटिवेट कर रही है, उनको मोटिवेट करने के बाद पढ़ा रही है, पढ़ाने के बाद उनको मतलब इतना ज्यादा कर कि वो ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकती, खुद से वो नहीं कर सकती बहुत ज्यादा, तो वो जो पॉकेट मनी उसको मिलती थी, उस पॉकेट मनी से उनको पेंसिल, पेन, कॉपीज वगैरह दिलाना, ये सब करती थी। और धीरे धीरे करके मतलब उसने ये किया है कि आज वो जो दीदी है वो खुद कई बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी, उसने मतलब उनको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया है, इतना ज्यादा पढ़ा दिया है कि वो आज लोगों को पढ़ाना शुरू कर दी, लोगों को व्यापार चलाना उसने सिखाया, और वो आज अपनी खुद की वो है, और आज लोग उनसे हेल्प, आज वो लोगों की हेल्प कर रही है। एक नीडी थी, तो ये एक मेरी इमेजिनेशन थी कि मैं लोग उनको इतना ज्यादा करूं, उनके लिए ये करना चाहती थी, मैं उनको पढ़ाऊं ताकि वो आगे चल के, क्योंकि सर एक कहता ना कि बिजनेस आप चाहे जितना खोल लीजिए, आप बिजनेस मान लीजिए, मेरी सेकंड जो थी था ये ज्यादा ही वो टीचिंग की तरफ था, सेकंड वाला जरूर शेयर करना चाहूंगी। सर सेकंड जो मेरा था कि वो तीन भाई थे, जिसमें से होता नहीं है कि आपसी में भाइयों में नहीं बनती है प्रॉपर्टी के लिए ये वो, तो एक भाई बहुत ज्यादा अमीर थे, बीच का जो भाई था वो मिडिल क्लास था, छोटा भाई जो था बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पुअर था, लेकिन वो बार बार पुअर होने की वजह ये थी क्योंकि जो बड़ा भाई था वो कहीं ना कहीं अपने भाई को कामयाब नहीं होने देना चाहता था, तो इस वजह से छोटे भाई जो भी बिजनेस स्टार्ट करता था उसको कहीं ना कहीं वो बंद करवा देते थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल भी थे कि छोटे भाई को बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करने देते, जैसे ही वो स्टार्ट करता था बंद कर देते थे, जैसे ही वो स्टार्ट, वो चाहे शॉप हो चाहे जो भी व्यापार वो सब बंद करवा देते हैं। लेकिन फिर एटलास उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया, उनकी वाइफ ने एक तरीका बताया कि आप क्यों ना टीचिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो कोई नहीं वो कर सकता सर, आप पढ़ा रहे हो, आप

0: अगर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो ना, तो सर एक बच्चे के मन में अगर आप एक टीचर के तौर पर उतर आए, तो सर उस बच्चे को चाहे जितना कोई समझा ले कि वो टीचर बेकार है, वो बच्चा नहीं मानने वाला फिर।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसे बेहतर टीचर, एक बेस्ट टीचर के तौर पर वो जाने जाने लगे। और इसके करते करते फिर मतलब बच्चों को भी, उसके बड़े भाई ने बहुत ज्यादा बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब किया था अगेंस्ट उसके, खड़ा किया था कि हाँ मतलब वो अच्छे नहीं है, उनके यहाँ ये होता है, वो होता है, बहुत विरोध किया। लेकिन फिर भी बच्चे, अब भाई वो अच्छा पढ़ाते थे, तो भाई टीचर्स हो, अरे चाहे स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, सब तो वो थे कि हाँ बहुत खुश थे कि हाँ भैया अच्छा पढ़ाते हैं तो हम पढ़वाएंगे, ये रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हर माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो और बच्चा अच्छा हो। बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे, वो ऐसे टीचर थे। तो वो भाई चाहे जितना विरोध कर लिए, लेकिन वो आखिरी में हार गए कि टीचर से पंगा नहीं ले सकते, सारे व्यापार बंद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बंद कर सकते।
1: क्या बात है।
0: तो ये तो था, और ये शायद सच्चाई भी है।
1: बिल्कुल,
0: कि टीचर के बाद फिर टीचर से पंगा कोई नहीं ले सकता है, गुरु तो आखिर गुरु ही होता
1: गुरु
0: है।
1: गुरु ही होता है, बेशक, सही बात है। वो कौन सा वक्त था जो लाइफ में बड़ा चैलेंजिंग लगा हो और जिससे निकलने में काफी स्ट्रगल भी किया हो, लेकिन फाइनली आपने उसे कर लिया हो?
0: जी सर, जरूर, मैं वो जरूर शेयर करूंगी। आई थिंक कि वो दौर हर किसी के उसमें आता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है। सर मैं स्कूलिंग के बाद, मैंने बताया कि साकेत डिग्री कॉलेज से मैंने बीए कर रखा है। सर बीए 3 साल का था, मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं कर पाई, नई थी, ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाई थी। बट सेकेंड ईयर में मैंने एनुअल फंक्शन होता है सर, कॉलेज में भी एनुअल फंक्शन था, वहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम करवाया था। मैंने बताया कि मैं नाट्य लिखती हूँ, मैंने एक नाटक लिखा था, तो उसमें उसको मैंने कॉलेज में, साकेत डिग्री कॉलेज में कराने की कोशिश की थी और किया भी था। और वहाँ वो मेरा बहुत ही ज्यादा लाइफ का शायद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज था, बिकॉज एक कहते हैं ना कि स्कूल में बच्चों को गाइड करना और डिग्री कॉलेज में बच्चों को गाइड करना बहुत ही बिल्कुल अलग होता है,
1: बिल्कुल सही,
0: और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और पढ़ाना तो अलग, और अगर प्रोग्राम के लिए कहो तो वो और ज्यादा, वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था सर कि मैंने तो उस वक्त सोचा था कि मैं कान पकड़ रही हूँ, दोबारा नहीं कराऊंगी
1: डिग्री कॉलेज के बच्चों के।
0: यस सर,
1: राइट।
0: क्योंकि सर मैं भी सेम एज में ही थी,
1: बिल्कुल
0: मैं भी सेम एज में थी, कुछ जो साथ में बच्चे थे वो कुछ हमारे सीनियर थे, लेकिन साथ का कोई नहीं था, सारे अननोन थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि सबके सब अननोन थे। अननोन से पहले फ्रेंडशिप करना, फिर उसमें ढालना लोगों को, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। तो मेरा ये होता था कि मैं अगर टाइम बता दूं कि मुझे 10 बजे सभी लोग फील्ड में आ जाइएगा, कॉलेज पहुंच जाइएगा, हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और लोग 10 बजे ना पहुंच के 11:30 बजे आते थे। और वो 11:30 बजे तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि मैं 11:30 बजे सर वो कैसे आते थे कि मैं जब भी घर से निकलती थी ना, मतलब मैं सारा काम निपटा करके जल्दी जल्दी 9 बजे मैं घर से निकलती थी, घर के बाहर कदम रखते ही मेरा फोन ऑन हो जाता था, कॉल्स स्टार्ट हो जाती थी।
1: okay.
0: और मैं एक को नहीं, उस टाइम पे 15, हमारा ग्रुप था 15 लोगों का, सारे 15 को कॉल करके बुलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो सर सबको कॉल करना, सबको बुलाना कि आप टाइमली आओ आओ आओ। और डिग्री कॉलेज के अंदर एंट्री करने के बाद, फील्ड में पहुंचने के बाद, वहां भी वेट कर रही हूँ मैं 1-1.5 घंटे, वो भी लगातार कॉल करना ही पड़ेगा सर, सबको कॉल करना। सर वहां पर मुझे डिफ़िकल्टीज ये फेस करनी पड़ी कि मेरे घर से निकलते ही और कॉलेज के अंदर पहुँचने के बाद भी मेरी कॉल चल रही है, तो मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल मैं कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितनों से बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि एक से बात कर रही है, सुबह से रात तक बात ही करती
1: बात
0: है
1: ही
0: क्या।
1: ओके।
0: तो सर ये निगेटिव लोग तो निगेटिव ही सोचेंगे। तो सर ये चीज़ था कि मैं घर से निकलती थी और वहाँ तक जब कॉल चलती थी, लोग ये कहने लगे, मेरे घर शिकायत आने लगी। मेरा भाई एक दिन कह रहा है, तुम बड़ा कॉल पे बात करती हो, जो बात करनी है घर में किया करो, ये किया करो, वो किया करो। मैंने कहा अच्छा, मुझे डांट उंट पड़ने लगी। फिर उसके बाद जब मैं फिर कॉलेज पहुँची, कॉलेज में कुछ दिन बाद मेरी चर्चाएँ होने लगी कि लड़की बात करती है, लड़की इधर जाती है, लड़की उधर जाती है, ये करती है, वो करती, बहुत सी चीज़ें बहुत बहुत निगेटिव मुझे सुनने मिला। फिर मैंने उस टाइम तो कान पकड़ा था कि मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बातें हो रही है, इसको मैं पॉजिटिव में कैसे चेंज करूंगी। वो मेरा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेज था। और इवन जो मैं जिसका मैं सपोर्ट ली थी, जो मेरे सीनियर जिनकी गाइडेंस में मैं खुद थी, वो भी मेरे लिए अननोन थे और बाद में मुझे पता

0: वो भी एक फ्रॉड थे।
1: ओ
0: ये मेरे लिए सबसे ज्यादा
1: माय
0: चैलेंजिंग था कि साके डिग्री कॉलेज में, जिनको मैंने खुद सोचा कि सर हैं, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का टीचर हूँ। भाई डिग्री कॉलेज है, सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स को हम लोग नहीं जान पाते
1: नहीं
0: हैं।
1: जान सकते।
0: उन्होंने मेरा सब्जेक्ट जानने के बाद अलग डिपार्टमेंट का बता दिया। अब मैं भी तब बहुत ज़्यादा उतना मैंने दिमाग नहीं लगाया कि हाँ कौन है पता करें तब वो करें, मैंने पता नहीं किया। बाद में कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई, उस टाइम पे सर मैं जल गई थी। घर पर
1: ओ
0: दीदी आई हुई थी, दीदी के बेबी के लिए मैं पानी गर्म कर रही थी, पानी से मैं जल गई थी। मेरा पैर पूरा जल गया था और हद से ज़्यादा जल गया था। उसी टाइम पे वहाँ पर बवाल हो गया कि इस प्रोग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो प्रिंसिपल ने बुलाया कि इस प्रोग्राम को गाइड कौन कर रहा है। जो सर जिनकी गाइडेंस में मैं खुद थी, वो सर पकड़े गए। वो सर गए अंदर कि ये गाइड कर रहे हैं। वो छिपना चाहे लेकिन छिप नहीं पाए। वहीं से शायद मेरे लिए पॉजिटिव भी थे और शायद इसीलिए मैं जली थी। तो वो गए, तो जब वो गए वहां पर, तो हुआ कि आप तो खुद एक स्टूडेंट हैं, आप कैसे गाइड कर रहे हैं?
1: वाह,
0: आप तो खुद एक स्टूडेंट है, आप गाइड कैसे कर रहे हैं? तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए वो था। फिर मेरे पास कॉल आई, फिर उस टाइम पे मेरे जो साथ में एक लोग थे, उन्होंने अभिषेक श्रीवास्तव भैया, उन्होंने एक भाई के तौर पर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आज से मैं गाइड करूंगा सर, ये वो। प्रिंसिपल जानते थे बहुत ही अच्छे से, प्रिंसिपल को लगा कि हाँ ये कर लेंगे। तब उनको मैसेज मिला, फिर प्रिंसिपल की कॉल मेरे पास आई। मैं तो कांप उठी थी कि क्या कहूंगी मैं, क्योंकि न्यूज़ मेरे पास पहले आ चुकी थी कि ये गड़बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी, क्योंकि एक लड़की पकड़ी गई थी, तो बहुत बड़ा मतलब वो था। तो जब मेरे पास न्यूज़ आई तो मैं कांप गई थी कि प्रिंसिपल की कॉल आई, मैं क्या करूंगी। लेकिन प्रिंसिपल ने इतने अच्छे से बात की सर ने कि ठीक है आप रिलैक्स करिए, लेकिन आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आप जली हैं, इसके बाद ही आपका प्रोग्राम आगे प्रैक्टिस स्टार्ट हो पाएगी, वरना नहीं होगी। फिर मैंने प्रूफ दिया। इतना ज़्यादा डर हुई थी कि दो ही दिन बाद मैं खड़ी हो गई घर में। अगले दिन जिस दिन जली थी उसके अगले दिन मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करके अगले दिन मैं घर में थोड़ा बहुत काम करना कोशिश किया। 3 दिन बाद मैं कॉलेज चली गई। घर में बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट था सर कि नेगेटिव पॉइंट्स वैसे भी मेरी पाई जा रही हैं, जो कि नेगेटिव नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे गलत कहा जा रहा है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम में गड़बड़ी भी, मैं कैसे क्या करूंगी। बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी मैंने फेस किया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि उस टाइम भी मैं फर्स्ट आई थी, मेरा प्रोग्राम फर्स्ट आया था। और फिर जब मैं, भाई नेगेटिव पॉइंट्स आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों को एक एक करके मैं नहीं बता सकती ना सर कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कर रही हूँ, एग्जैक्ट मैं क्या कर रही हूँ। ये बात तो मुझे तब पता चली कि मेरे बारे में निगेटिव चल रहा है, जब मैं एक साइबर कैफे पे गई थी। और साइबर कैफे पे जिस काम से मैं गई थी, वो काम तो मैं करवा ही नहीं पाई आधे घंटे तक। साइबर कैफे पे मैं बैठी रह गई बिकॉज कॉल्स मेरी चल रही थी। और उस टाइम पे मैंने 8-10 कॉल तो की ही होंगी मेरा। उस टाइम भी मैं कोई प्रोग्राम वगैरह शायद कर रही थी, तो 8-10 कॉल तो की ही मैं। तो जो साइबर कैफे वाले भैया थे, वो कहे दीदी आप कितनों को बात कॉल कर रही हो, मतलब मैं, आप जब से लगी हो तब से आपका सर नहीं दर्द होता? मैंने कहा बिल्कुल दर्द होता है। कह रहा है लेकिन दीदी एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा क्या? तो कह रहा है कि यार अब तक तो मैं सोचता था कि आपका आखिर इतना खलियर बॉयफ्रेंड है कौन जो सुबह से शाम तक लगा ही रहता है, जब आप रोड पर निकलती हो तो आप बात करती हो जब आप। हमने कहा भाई असलियत ये नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, असलियत ये है कि मैं इतनों को हैंडल कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपनी चीज़ों को दिखाया, मैंने दिखाना शुरू किया कि मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद से लोगों की थिंकिंग बदली, क्योंकि भाई वो बंदा निगेटिव पॉइंट्स अगर लोगों के साथ बैठ के बात करता, फिर वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत चैलेंजिंग फेस था, कि मेरे घर वालों के दिमाग में भी लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी गलत है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे घर वाले सुने नहीं लोगों के और मुझे रोका नहीं। सुनना चाहे फिर भी घर में ये हुआ कि ये लास्ट है, पहला और लास्ट है, इसके बाद करना नहीं है तुम्हें। फिर मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मेरे रिजल्ट्स, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑनलाइन करना शुरू किया, फिर मैंने आकाशवाणी में अप्लाई किया। धीरे धीरे जब करना शुरू किया, मतलब नॉर्मल चीज़ें कि इतना दौड़ भाग वाला नहीं, तब घर वाले कहा ठीक है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, सोचे नहीं थे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में भी फिर शुरू कर दिया। वो भी चैलेंजिंग था, लेकिन ठीक है, चैलेंजेस ही तो लाइफ को करते हैं, लाइफ में जो भी वो मिलते हैं।
1: बिल्कुल सही है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर हाईवे पे बिल्कुल सीधा सा रास्ता हो तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है।
0: सही बात है सर।
1: सो चूंकि आपने बताया, आपने एक बुक भी पब्लिश करवाया है, एक कलम बेटियों के नाम,
0: Yes, sir.
1: सबसे पहले तो बधाइयाँ इस बुक के लिए.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हम चाहेंगे कि इस बुक के बारे में बताइए आप कि ये बुक आखिर बेटियों के कौन से कलम की बात कहती है, आखिर किस तरह की बात जो बेटियों के मन की है वो कलम में लिख के आ रही है, ये मैं आपसे जानना चाहेंगे.
0: सर कहते हैं ना कि सर कोई कवि है तो अपने कलम के तौर पर सर जो बातें हम सिर्फ कवियाँ कवि कवित्रियाँ ही नहीं सर सबकी बात है, जो बोल नहीं पाएगा कि मैं अपनी बातें कुछ कह नहीं पाऊंगी तो वो मैं एक पेज पर लिख करके दे दूँ.
1: ओके.
0: तो वही है, एक बेटी ही नहीं हर कोई यहाँ पर मेरी बुक में हर एक एज ग्रुप के लोग, लड़की हो चाहे लड़के हो, लोगों ने अपना दर्द एक कलम के थ्रू जिस तरह लाया है इसीलिए कहा गया एक कलम बेटियों के नाम. लोगों ने अपने दर्द को कलम के जरिए निखारा है. ये एक थीम बेस्ड है मेरी जो बुक है सर. लोग आपने कई किताबें पढ़ी होंगी कि टॉपिक्स पर होती हैं, बट मेरी जो बुक है ये एक थीम बेस्ड है. आप गुड टच सर, गुड टच और बैड टच भी कह सकते हैं.
1: okay.
0: सर लेकिन इसकी थीम है, कहा जाता है कि मेरे घर वाले बिल्कुल फ्रीडम दिए हैं, आप भी अपनी बहनों को फ्रीडम दिए हैं, कहीं भी बाहर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उसको फेस कीजिए.
1: बिल्कुल.
0: आप उसको फेस कीजिए, आप उससे लड़िए. अगर आप वो नहीं लड़ पा रही हैं तो आप उसके, अगर आपकी बहन आती है कुछ बताती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो नहीं लड़ पा रही है तो आप उसके अगेंस्ट लड़ोगे.
1: बिल्कुल.
0: आप उसका फेवर करते हो कि चाहे पुलिस थाना चौक जो भी करना हो आप करते हो.
1: बिल्कुल सही.
0: लेकिन सर एक क्वेश्चन करूंगी, क्या सेम प्रॉब्लम अगर आपके रिलेटिव से होगी आपकी बहन को तो आप क्या करोगे? सर मेरी पूरी पोएट्री, सर मेरी पूरी थीम इसी पर है कि अगर हमारे रिलेटिव से हमें प्रॉब्लम होती है तो घर वालों का आंसर क्या होता है. मोस्टली घरों में पाया गया है कि जो पूरी बुक से हमारा निचोड़ निकलता है, तो जब मैंने लोगों से सवाल किया तो लोगों ने सिर्फ एक जवाब दिया कि मेरे घर वाले तो कहते हैं कि तुम उनसे मतलब मत रखो. क्या यहाँ से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं?
1: बिल्कुल नहीं.
0: यहाँ से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं क्योंकि वो चीज़ें तो आप हम बेटियां हैं, हम सबको तो नहीं बताते हैं ना, किसी घर में किसी एक को बताते हैं और वहाँ से भी अगर नेगेटिव आंसर मिल जाता है तो उस पर तो टूट जाएंगे ना, फिर तो हमें दूसरे से कहने की हिम्मत ही नहीं होगी. तो जब कहने की हिम्मत ही नहीं होगी तो फिर हम क्यों कहेंगे? और उसके बाद जब हम किसी से कहेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक बार हो रही है, अगर उस पर स्टेप नहीं लिया जाएगा तो फिर कई बार होंगी, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसी पर मेरी कविताएं हैं. सर इसमें सबसे छोटे बच्चे ने जिसने लिखा है वो है आरुषि श्रीवास्तव, 4th स्टैंडर्ड की है. सर उसने इस चीज को महसूस किया कि वाकई होता है ऐसी चीज,
1: मतलब 7-8 साल की बच्ची भी इस बात को महसूस करती
0: है. यस सर, कि हाँ रिलेटिव से प्रॉब्लम होती है. अब उसके घर में है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूंगी, ये मैं नहीं कहूंगी कि उसके घर में है चीजें, लेकिन वो भी तो बाहर निकल रही है, स्कूल जा रही है, कहीं ना कहीं हर कोई फेस कर रहा है, तो उसने कहीं स्टोरी सुनी है या क्या है वो तो वो बता सकती है. सर इतना डीपली मैं नहीं पूछ सकती उसके क्योंकि वो पर्सनल लाइफ हो जाएगी.
1: मुझे लगता है उससे पूछने से कहीं ज्यादा ये हमारे और आप बड़े जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक सवाल है.
0: यस सर,
1: कि इतना छोटा बच्चा भी उस बात पे लिख रहा है.
0: यस सर, क्योंकि सर मैंने जो अंदाजा लगाया कि चीजें बचपन से शुरू होती हैं सर, अगर हम, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं कई महीनों से झेलता आ रहा है और जब उसको कोई रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तभी तो वो आज सुसाइड का वो सोच रही है. तो सर अब बचपन से चीजें आ रही हैं तो शायद वो बच्ची ने इसीलिए उसको महसूस कर लिया है, क्या है वो तो वो बता सकते हैं. लेकिन हाँ, और सर इसमें एक और अच्छी चीज है कि इसमें लड़कों ने भी लिखा है.
1: अरे वाह.
0: हाँ, लड़के गलत नहीं होते क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उसमें एक आध से तो मेरी बात हुई है, तो उन लोगों ने ये बोला कि हाँ मेरे भी फ्रेंड सर्कल में काफी लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है. तो ये लड़कों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, और जो लड़के अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी. बहनों को तो नहीं पता लेकिन मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप बहनों को सपोर्ट करते हैं.
1: करेक्ट, क्योंकि सही बात.
0: जब तक आप किसी एक को मात नहीं दोगे तब तक फिर रिलेटिव्स तो बढ़ते जाएंगे ना.
1: बिल्कुल सही.
0: तो इस वजह से आप जरूर सपोर्ट कीजिए.
1: बिल्कुल. और मैं चाहूंगा कि इसकी ये जो कविता आपने लिखी है आपके संकलन की इस बुक की, वो आप प्लीज हमारे श्रोताओं को पढ़कर सुनाइए.
0: जी जी जरूर सर. वो मासूम सी बच्ची स्पर्श और स्पर्श में फर्क समझ न पाई थी, आज फिर वह अपनों के हवस के दायरे में आई थी. वो भोली नादान जो गुजरा कुछ समझ न पाई थी, कच्ची सी उम्र में खुद से वह चिढ़ती जा रही थी. क्या कहूँ किससे कहूँ क्या कहूँ, किससे कहूँ, आखिर समझेगा कौन। इन सवालों में वह उलझती जा रही थी। आज फिर वह अपनों के हवस का शिकार बनती जा रही थी। समझ ना थी उसमें, समझ ना थी उसमें खेल कूद की उम्र में बेबस हो, पढ़ाई से अनभिज्ञ, बचपन में बचपना खो पड़पन बहुत दिखा रही थी। रिश्तेदारों के आने पर बचपन में खुशी से उछलने वाली बेटी आज उनसे खुद को छिपा रही थी। आज फिर वह अपनों की हवस का शिकार बनती जा रही थी। घर में शोर मचाकर रौनक लाने वाली बेटी आज माँ के आंचल में छिप रही थी। अपने दर्द को लबों पर लाने को वह तड़प रही थी। अपनी ही माँ से कहने को खुद को समझा रही थी, माँ डांटेगी, मुझे गलत समझेगी, माँ क्या कहेगी। इन सवालों में वह उलझती जा रही थी। हिम्मत कर और बोल डाल, अंतर मन से आवाज ये आ रही थी। माँ से आप बीती बताने को हिम्मत वह जुटा रही थी। माँ को बताकर जीत पाने को वह छटपटा रही थी। धीरे धीरे अपनी बात रख माँ के मन को वह टटोल रही थी। सुन बात सब्र से उसकी माँ बिटिया को समझाई थी तुम बिटिया हो, सहना पड़ता है, ये रिश्ते हैं, इन्हें हमें संभाल कर चलना पड़ता है। रिश्तों के आगे बिटिया की बोली माने लगाई थी, वह बेटी है इस बात से बिटिया को वंचित कराई थी। सुन बात माँ की, एक बार फिर वह टूट बिखर गई थी। माँ से अपनी हार की उम्मीद न लगाई थी। बातें सुन माँ की खुद को वह झकझोर रही थी। आज फिर वह अपनों की हवस का शिकार खुद को बना रही थी। लड़ना पाई लड़ाई खुद की सर कहते हैं मोटिवेट वही करता है जो खुद डीमोटिवेटेड रहता है, जो बहुत कुछ झेल चुका होता है। तो उस पर है, लड़ना पाई लड़ाई खुद की दूसरों को लड़ने के सलीके सिखाने निकल पड़ी थी। दुनिया से जीत, घर में हारी बेटी, सोच माँ की सिखाई सीख खुद को मजबूत बनाने चली थी। घर पहुँचते ही रिश्तेदारों से डर, आज फिर उनसे वह मुख फेर चली थी। दुनिया से जीत, घर में वह हार चुकी थी। माँ से लगी उम्मीद से टूट चुकी थी। डिप्रेशन जैसी बीमारियों को गले लगा मौत के पास वह आ चुकी थी। आज वह मासूम सी बिटिया, आज वह नन्ही सी प्यारी बिटिया मौत को गले लगा ली थी। काश कि उसके अपनों ने समझ दर्द उसका उसे समझाया होता। काश उसकी माँ ने समझ दर्द उसका साथ उसके लड़ा होता। रिश्तेदारों की छोड़ फिक्र, बेटे को तवज्जो दिया होता। सिर्फ किसी एक को मात दे, साथ उसके लड़ा होता, तो आज शायद तुम्हारी आंखों में ये पछतावे का आंसू ना आया होता। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मतलब मैं इस पे अप्रिशिएट करने से कहीं ज्यादा एक गहरा प्रभाव, एक गहराई, एक बड़ा सवाल, एक सोसाइटी का डुअल फेस, या ये सवाल शायद मुझसे खुद का भी है और आपसे भी, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम और आप भी उसी घर में तो नहीं जहाँ पे अगर कोई हमारी बहन, हमारी बेटी इस तरह का शिकार हो रही है, तो क्या हम अपनी अभी भी रिश्तेदारी बचा रहे हैं? क्या हम अपनी इज्जत साख उसको दबाने में समझते हैं? या जो हम नारे लगाते हैं और अपने को एक सच्चा देशभक्त कहते हैं, क्या हम सच्चे भाई भी हैं? क्या हम सच्चे पिता भी हैं? और अगर हैं तो आखिर वो बेटियां कहाँ जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, बस इन्हीं सब वजहों से। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बात को लिखा है जो कईयों घरों की कहानी है, मुझे लगता है ये बाहर नहीं आ पाती है
0: जी।
1: इस वजह से कि लोगों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की फिक्र रहती है, एक ऐसी शान जो बहुत कुछ खो देती है और हासिल कुछ भी नहीं होता उसमें। और ये आपकी सोच और वो सारे कवि कवित्री जिन्होंने अपना अपना जो कुछ भी थॉट था, जो सोचा और कविताओं में पिरोया और एक बुक की शक्ल आ गई एक कलम बेटियों के नाम, मैं उन सभी को सलाम करता हूं। और हर उस शख्स को जो इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे यही सवाल कि क्या हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि समाज सेविका आप अलग से तो बहुत कुछ आपने किया होगा, लेकिन ये जो बात है एक बुक के जरिए किसी एक भी शख्स के दिल तक उतर जाने की, ये इससे बड़ी समाज सेवा कोई हो नहीं सकती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: सो आपको दिल से दुआएं और बहुत सारी दुआएं कि आप लाइफ में जो कुछ चाहें अचीव करें, और साथ ही साथ आपकी ये बुक, आपकी ये लव्स जो ऐसे दर्दमंदों का कह सकते हैं उनकी जबां बने हैं, ये पूरी दुनिया में जाएं और लोग इसको समझ पाएं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: बिल्कुल हम कामना करते हैं।
0: तो सर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी।
1: अरे
0: मैं,
1: प्लीज
0: मैंने लड़कों के लिए भी कुछ लिखा है।
1: वाओ क्या बात है, लड़कियों के लिए इतना जबरदस्त लिखने के बाद आपने कहा कि लड़कों के लिए भी कुछ लिखा है।
0: जी सर, क्योंकि आपने कहा ना मैं जेंडर पर नहीं जाता हूँ। सर जेंडर पर तो मैं भी नहीं जाती हूँ। मैं अगर कहती हूँ कि हर लड़कियां गलत नहीं होती, हर लड़कियां गलत नहीं होती, तो हर लड़के भी गलत नहीं होते।
1: करेक्ट,
0: ठीक है। तो सर उस पर कहूंगी, लड़कों की जिंदगी देखने में आसान होती है पर जीने में नहीं। हम लड़कियां इसे जितना खूबसूरत समझती हैं, असल में उतनी खूबसूरत होती नहीं, असल में उतनी खूबसूरत होती नहीं। लड़के आजाद होते हैं घूमने के लिए पर आंसू बहाने के लिए नहीं। वे घूमते हैं जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं। अक्सर कुछ लड़के घर छोड़ जाते हैं, आंखों को नम कर बैठते हैं, सपनों को आग लगा देते हैं, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं। उसकी जरा सी गलतियों पर गालियों की बौछार कर दी तुमने, उससे उसकी सच्चाई पूछा भी नहीं। अंदर ही अंदर उसने आंसुओं का समंदर बना लिया, अंदर ही अंदर उसने आंसुओं का समंदर बना लिया, किसी से कुछ कहा भी नहीं।
1: क्या बात,
0: कितना दर्द है अंदर, कितना दर्द है अंदर, बयां भी कर सकते नहीं। घर जो दिखा दे आंसू तो कमजोर दिल का लड़का है का ठप्पा लगा देते हैं लोग, इसलिए अक्सर आंसू को पानी की तरह पी जाते हैं वे, किसी से कुछ कहते भी नहीं, किसी से कुछ कहते भी नहीं।
1: धन्यवाद,
0: सैल्यूट टू ऑल बॉयज जो वाकई डिजर्विंग है।
1: बेशक जो सच में डिजर्विंग है उनके लिए डेडिकेटेड ये आपकी कविता, और बहुत ऐसी बातें थी जो शायद मैं खुद भी एक पुरुष होने के नाते महसूस कर रहा था, और इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। एक सच्चे इंसान की निशानी यही होती है कि वो बायस्ड नहीं होते, कि आप महिला हैं तो आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, आप पुरुष हैं तो पुरुष के बारे में। आप एक इंसान हैं और आपका तो सारा जहां है, कुदरत ने भी आपको बनाया, जानवर ना होते तो इंसान ना होते, तो आपको तो सबकी बात करनी भी होगी और सबको बचाना भी होगा।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत शानदार आज की बातचीत रही। मुझे लगता है अब तो घड़ी ने भी इशारा कर दिया है, लेकिन इतनी सारी बातें, और मैं अब चाहूंगा कि अपने संकलन की कुछ और कविताएं जो आप हम तक जरूर पहुंचाना चाहें उसको प्लीज पहुंचाइए, और उसके बाद फिर हम आपसे विदा ले लेंगे।
0: तो सर उस पर बस ये अपनी अंतिम कविता कहूंगी।
1: जी।
0: अभी आपने शादी की बात कही थी, तो मैं शादी पर यही कहूंगी कि हम लड़कियां कैसा वर चाहती हैं। आई थिंक मोस्टली लड़कियां ऐसा ही लड़का चाहती हैं।
1: अच्छा।
0: कि लड़का कैसा प्यार करे।
1: उस पे तो नहीं है ना घोड़े पे बैठ के आने वाला।
0: नहीं नहीं सर।
1: बहुत सुना
0: है। नहीं सर, कैसा प्यार करे, सर कैसा प्यार करे लड़का। और मोस्टली कुछ लड़के मैंने देखा भी है कि कुछ लड़के ऐसा प्यार करते हैं कि एक लड़की को प्यार करते हैं लेकिन वो बयां नहीं कर पाते, और वो सच्चा प्यार करते हैं पर वो बयां नहीं कर पाते। तो उस पर कुछ लिखूंगी लड़के की साइड से। यहाँ भी मैंने लड़के की साइड से लिखा है, लेकिन एक लड़की की इच्छा है। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। एक लड़का लड़की से बताना चाहता है, सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। मेरा दिल तेरे जिस्म पर नहीं तेरे दिल पर आया है, तेरे दिल पर आया है। सुन सुन ना, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। आखिरी बताना चाहूंगी कि वो हर एक लड़की के हर एक चीजों से किस तरह प्यार करता है। अगर चश्मे मैं अपनी बात करूंगी कि मैं ऐसा ही लड़का चाहता हूँ, तो मैंने अपने तौर पर लिखा है कि मैं एक चश्मे वाली लड़की कैसा चाहती है।
1: अच्छा।
0: काश भाई चश्मा भी तो पसंद करना चाहिए ना, और कुछ पसंद
1: चश्मे वाले यहाँ पे कई लोग
0: हैं। जी काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता।
1: वाओ।
0: काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता, इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी आंखें कब रोती हैं और किसकी वजह से रोती हैं। मैं तेरे प्यारी आंखों में आंसू लाने वाले को उसकी नसीहत दिखाना चाहता हूँ। और सुन न पगली, मैं तेरा चश्मा बनकर तेरे हर एक आंसू रोकना चाहता हूँ। सुन न, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ।
1: माय गॉड क्या बात है, वाओ, मतलब कह सकते हैं कि उस बंदे की आपने बात बोल दी जो बहुत सारा सागर भर का प्यार करता है लेकिन कह नहीं पाता, और ऐसा एक नहीं न जाने कितने सारे शख्स हैं।
0: जी सर, सर चाहते तो बहुत हैं लेकिन जो हर एक चीजों से प्यार करे और वाकई प्यार करे तो वो शख्स होना चाहिए।
1: मतलब मुझे लगता है खैर इसको जिसको फील करना था उसने जरूर किया होगा, और स्पेशली वो बेचारे नहीं बल्कि वो ऐसे लोग जो समंदर तक रोक लेते हैं नहीं बोलते।
0: तो मैं कहूंगी बता दो, अब तो बता दो, क्योंकि हर एक लड़की चाहती है सही बंदा।

0: चलिए भाई, सुनने वालों को सुनने की चाहत है तो अब बताने वालों की बारी आई है कि वो बता दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, एक्सप्रेस करने से सच में चीजें और मजबूत हो जाती है, ये बात सच है। एंड लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, मैं इतना ही कहूंगा। बस एक सवाल और जाने से पहले कि बहुत शॉर्ट में, बस एक वर्ड में आपका इसका आंसर चाहूंगा, अगर आपकी जिंदगी पर एक किताब बने, शिवानी श्रीवास्तव यानी सहज की जिंदगी पर, तो उसका नाम क्या होगा, उसका टाइटल क्या हो?
1: ये तो मेरे लिए गिफ्ट होगा, जैसा कि एक टाइटल मुझे सहज मिल गया है ना, वैसा ही मुझे अब आपने बहुत ये अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं चाहूंगी कि सहज नाम से ही मेरी पुस्तक भी आए।
0: वाओ, क्या बात
1: क्योंकि ये मेरे लिए अमेजिंग गिफ्ट होगा, अगर कोई हमारे लिए लिखता है तो बहुत बड़ी चीज होगी।
0: वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। और सहज ही नाम होगा अगर आपकी जिंदगी पर बनता है, क्योंकि जिस सहजता से आपने पुरुषों की मन की बात, बच्चियों के साथ होने वाले व्यवहार, सब कुछ बताया, सच में आप सहज हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि अयोध्या नगरी से गोंडा तक आने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतने जज्बात को दुनिया भर में पहुंचा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी आप सबसे जो मैंने बातें की उस पर आप गौर करें, अपनी बेटियों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को भी तवज्जो दें, बट साथ में पहले बेटियों की इज्जत है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी। और जो और लड़कों को भी, और समाज में निकलने के बाद जो लड़कों पर लोग पहले वो करते हैं, लड़कियों को ही डिफेंस करते हैं, आप लड़कियों को डिफेंस कीजिए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा ना सोचिएगा कि हाँ कहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले लड़कों को ही डिफेंस करूँ, ऐसा भी नहीं है। आप सही और गलत पर डिफेंस कीजिए, मैं यही कहूँगी, सही और गलत पर डिफेंस कीजिए।
0: क्या बात है।
1: बाकी जो लव करते हैं तो उनके लिए तो सर ने कहा ही कि अब बताने का वक्त, सुनना चाहती हैं लड़कियां, बताने का वक्त आ गया तो आप बता दीजिए।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात,
1: बहुत धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत बढ़िए, बहुत फलिए, बहुत फूलिए। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी शिवानी श्रीवास्तव सहज, जो कि अयोध्या नगरी से गोंडा तक आई, इस चैट बॉक्स पे आकर के फटाफट से लिख करके बता दीजिएगा कि आज का टॉक शो आखिर सुना आपने या दिल तक टच कर गया। सुंदर 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की

0: सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

एक अरसा हुआ खुद से जुदा हुए, एक अरसा हुआ कि खुद से जुदा थे हम, आपकी महफिल से जरा सा दूर थे हम। आज फिर लौटे हैं उसी अंदाज में, लेकर वही पुरानी खनक आवाज में। हवाओं का रुख थोड़ा बदला है, दिल की धड़कने जरा तेज हैं, क्योंकि रेडियो के इस पार हम और उस पार हमारे अजीज हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो हमारे दरमियान, लेकिन 89.6 FM पे आज फिर से शुरू होगा वही यादों का कारवां। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत कर रही है आरजे बीना आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। एंड यस, वापस काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद, छुट्टी क्या कह सकते हैं कि हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि सिचुएशंस ऐसे यू टर्न लेते हैं और हम कहीं जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। और हाँ, मैं बैठ के खड़ी हो गई और वापस आप लोग के पास आ गई हूँ। और मेरे प्यारे लिसनर्स जो जहाँ जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि आज यानी कि आज की शाम, यानी कि आज मंडे भी है और मंडे होने के साथ साथ काफ़ी सारी खास चीज़ें भी। आज मलमास का आखिरी सोमवार है और हमारे गोंडा शहर में गर्मी होने के बावजूद भी लाखों लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं और क्या क्या कहने, बहुत सारी चीज़ें। और इसी बीच आज बीना भी आप लोग के साथ अपने कहते हैं ना कि धड़कनों को आपके साथ शेयर करने के लिए है। और कहते हैं ना कि रिश्ते आवाज़ में जो होते हैं ना, दूरियों के मायने नहीं रखते, जो दिल में बस जाते हैं वो नज़रों से ओझल नहीं होते। शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत और इस सब्र का, कि शुक्रिया कि आपकी इस मोहब्बत और सब्र का, हम तो बस जरिया हैं, असली रौनक तो आपसे और आपसे सफ़र की रोशनी को बढ़ाते हैं। तो इस सफ़र को और रोशनी वाला, एनर्जेटिक बनाते हैं। और आपको बता दूं कि आज मंडे है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ योर डे एंड आपका डे होने के साथ साथ आपको आज की शाम में मतलब फुल धूम मचानी है, कहीं नहीं जाना है। आज जो बीना के साथ बैठ के आज चाय के साथ चाय पीनी है, क्योंकि वी आर द चाय लवर्स इंडिया में, मतलब चाय की खोज कहीं हुई होगी। हाँ, कहानी याद आती है कि एक ज़माने में एक चाइनीज़ राजा थे शायद, हाँ, तो वो ऐसे पानी पी रहे थे और गलती से चाय की एक पत्ती आके उनके गर्म पानी में गिर जाती है एंड वो कलर चेंज हो जाता है, तो उनको खुशबू अच्छी सी लगती है, उन्होंने उसका सिप लिया और फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये कोई ड्रिंक है, इसको उबाल उबाल के पीते हैं। तो वो लोग तो बिना चीनी डाले, लेकिन हम लोग तो भाई इंडिया वाले हैं और इंडिया वाले भाई अपनी स्वैग के साथ खाते हैं, हम लोग सब्जियों में चीनियाँ डाल देते हैं, तो वो तो चाय में चीनी डाल के पीते हैं मस्त। और दूध डाल के तो हमने एक नया जायका ही तैयार कर दिया। और इसी के साथ मैं आप लोग को बता देती हूँ आपका फेवरेट वाला नंबर, यानी कि 63 93 34 29 मतलब नायाब नंबर आपकी जो कहते हैं ना पूरी की पूरी कॉल लॉक का, तो वो इंतज़ार कर रहा है डायल करने के लिए। तो फिलहाल एक एनर्जी वाला नया सा गाना सुन के इस शाम को और संगीतमय म्यूजिकल बनाते हैं और फिर चलते हैं आप लोग के साथ आगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को सुना देती हूँ आजकल का मोस्ट ट्रेंडिंग गाना, यानी कि आपने अगर मस्कारा नहीं लगाया तो इस गाने को सुनने के बाद ऑफ कोर्स आपका मस्कारा लगाने का मन तो ज़रूर कर जाएगा। वैसे कोई ऐसा है जिसको मस्कारा नहीं पता? चलिए मैं बता देती हूँ, लड़कों को नहीं पता होगा, वैसे लड़के आजकल सब जानते हैं, काजल सबको पता होता, आईलाइनर जो ऊपर आँख के ऊपर ऐसे लगाते हैं, हमारी आँखों की ऊपर वाली जो लिड होती है उसके ऊपर ऐसे लाइन बॉर्डर बाउंड्री सी करते हैं, कह सकते हैं ना, हम लोग भी अंडरलाइन करते हैं, तो

थोड़ी लाइनिंग करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आंखों को, फिर हमारी ये लैश आ जाती है, आई लैश जो पलके होती हैं, इन्हीं पलकों के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी पेंटिंग करते हैं। तो वो पेंटिंग करने वाला जो ब्रश होता है वो बेसिकली मस्कारा कहलाता है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। मस्कारा लगा के हमारी पलके थोड़ी भारी भारी दिखती हैं, हम लोग थोड़े सुंदर दिखने लगते हैं। वैसे लड़कों के लगाने का मन है वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपने ये गाना नहीं सुना तो अभी सुन के बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है और इस गाने को सुनने के बाद मेरा मस्कारा लगाने का मन जरूर करता है। ओके, गुड इवनिंग के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, थैंक यू सो मच वापस हमारे साथ इस शाम को फिर से मुकम्मल करने के लिए।

तो वापस आरजे बीना आपके साथ है और करने वाली है बहुत सारी बातें और लाइव हम सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर अपना प्रोग्राम यहाँ 69.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला आपका वाला शो। तो आप सभी को पता है कि यार आज मंडे है और मंडे होने के साथ साथ आज मैं दुनिया को दोनों तरह के लोगों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। और क्यों? क्योंकि आज वीक जो है शुरू होता है, यानी कि वीकेंड की शुरुआत होती है। और इसमें दुनिया में दो तरह के जो लोग होते हैं वो तो पहले मतलब ये सोचते हैं, एक पार्ट जो है दुनिया में लोगों का वो ये सोचता है कि मंडे शुरू हुआ है यानी कि अब कुछ नया करना है, इस वीक को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना है। और जो दूसरा वाला हिस्सा है लोगों का, वो जानते क्या सोचता है,

कौन से प्यार में? आप क्या सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच? नहीं नहीं नहीं, सैटरडे का फिर इंतजार करने लगते हैं भाई, शनिवार कब आएगा? मतलब ये सच बता रही हूँ। और आप बताइए, आप कौन सी वाली कैटेगरी में हैं? आप मंडे आने के बाद ये सोचते हैं कि पूरे हफ्तों को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, या फिर आप ये सोचते हैं आप मुझे रात दिन तुम्हारा इंतज़ार है, यानी कि शनिवार का इंतज़ार है कि भाई फिर वीकेंड कब आएगा और कब मैं फिर से चाड़ के सोऊंगा। आप कौन सी कैटेगरी? मुझे पता है पहली वाली कैटेगरी में आप सोचते होंगे कि इस हफ्ते तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे जो मेरी टैग लाइन है पूरे हफ्ते की, जो मैंने सोचा है इस हफ्ते करने का, जितनी भी मेरे मतलब मेरे जो अधूरे गोल्स हैं उनको पूरा करूंगी। तो आगे बात करते हैं, अगर खास बात करें तो एक थॉट मैंने सुना था बड़ी जल्दी, मतलब अभी हाल ही में, कि मोबाइल की बैटरी और इंसान का धैर्य दोनों 10% पर आते ही पता नहीं क्यों घबराने लगते हैं। सही है ना, ये वाला थॉट मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, हम सबसे जुड़ा हुआ है मोबाइल। जैसे 10% पे आता है ना, तो इससे हमारी धड़कनें ऊपर नीचे पता नहीं क्यों होने लगती हैं। मतलब वैसे मतलब 12, 13, 14 रहेगा तब तो कुछ नहीं, लेकिन 10 आते ही हम घबराने लगते हैं, और यही हमारे धैर्य का भी हाल है। फिलहाल कोई बात नहीं, धैर्य से मुझे याद आया कि धैर्य बनाते हुए मुझे काफ़ी मिनट बीत चुके हैं और अभी तक आप लोग की कॉल नहीं आया।

आपने कुछ सुनाना नहीं है क्या आज? फिलहाल मैं तो सुनाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद आप लोग के पास आई हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा तो सुनाने वाला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हूँ। सुनाने से मुझे याद है यार, बहुत दिन हो गया, मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं सुनाया आप लोग को। अच्छा सुनाने मतलब अच्छा मतलब गाने की बात कर रही हूँ। गाने से मुझे याद आया कि यार गाने से ज़्यादा अच्छी तो मैं पोइट्री सुनाती हूँ, तो क्यों ना मैं आपको पोइट्री कोई बढ़िया से सुना दूँ। हाँ चलिए आपको सुनाती हूँ एक पोइट्री, बड़ी प्यारी सी पोइट्री है। बड़ी मतलब प्यारी सी पोइट्री है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। ब्यूटीफुल पोइट्री फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। कहते हैं

अगर आपके घर में मतलब रहने वाले लोग जो थोड़े शायर हैं बैकग्राउंड से हैं, तो उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होतीगी, उनके घर में लड़ाई के तौर पर मुशायरे हो जाते होंगे। मतलब किसी को किसी की बात बुरी लगती है, कहते तुम तो एकदम फालतू बोलते हो ये वो, तो उसकी जगह ये लाइन बहुत अच्छी है कि मैं जो बोली वो बेकार था,

0: भाई मतलब लड़ाई का दस्तूर ऐसा हो कि जहाँ शायरी ही शायरी हो एंड फाइनली भावनाएं सिर्फ शायरी बन के लोटपोट हो के आपके मतलब फ्लोर पे वैसे बह जाएं। तो फिलहाल मेरे शायर जो लिसनर हैं स्पेशली हमारी एक प्रीति जी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और हमारे क्या नाम है, हमारे बहुत प्यारे से सबलू जी हैं। सबलू जी ने लिखा भी है शाम को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भविष्य को सुरक्षित बनाओ, बेटी की पढ़ाई देश की भलाई, बेटी है अनमोल रतन, इसे पढ़ाओ इसे बचाओ, देश बचाओ बेटी को पढ़ाते हैं वो देश का मान बढ़ाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब ऐसी शायरी लिखें, ऐसी कविताएं लिखें जिनको सुन के जिनको पढ़ के दिल एकदम मुस्कुराने सा लगे, दिल एकदम एकदम छू के सा जाने सा लगे, तो कुछ इस टाइप का। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ आप लोग थोड़ा सा इस बात को मतलब दिल पे लेके सोचें। फिलहाल सोचने से मुझे याद आया कि हाँ मैं तो बहुत कुछ सोच रही हूँ आप लोग के लिए। वैसे आप लोग कॉल करेंगे, क्या क्या सुनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे। और मैं आपको आज इंटरेस्टिंग बात बताने भी वाली हूँ कि अभी जल्दी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उन अवार्ड्स में से कुछ खास अवार्ड्स के बारे में भी बात करूँगी, और स्पेशली वो जो हमारे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊँ एक अमेजिंग मतलब एक अमेजिंग सी बात मैंने पढ़ी एक जगह कि आपके हंसते समय जो आपके शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं वो काम करती हैं कि नहीं करती हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए सोच के। और मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं करती होंगी, लेकिन साइंटिस्ट को क्या लगता है ये तो आप बताइए, पढ़े होंगे तो ये बात तो सही है कि मतलब अगर आप एक बहुत टफ सिचुएशन में चल रहे हैं और आपको कोई अचानक से आके एक जोक मार दे और आप उस समय हंस दें, वो टेंशन सच बता रही हूँ आपके दिमाग से वो वैनिश हो जाएगी उतनी देर के लिए जब तक आप हंसेंगे ठहाके लगा के। तो जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई यार, सब कुछ बहुत मैस हो रहा है, तो भाई कोई बढ़िया सा जोक शो लगाइए और सुन के हंस के खूब सारा मतलब बहुत सारा मुस्कुराइए। फिलहाल चलिए चलते हैं एक और बढ़िया से गाने की ओर, रुक करते हैं एकदम ऐसा गाना जिसको सुन के दिल हो जाए दीवाना। और एक गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उस गाने को मैं आपको सुनाती हूँ। आजकल बहुत सारी मूवीज़ आई हैं तो आप लोग इंतज़ार करिएगा फ्राइडे को मैं बहुत सारी मूवीज़ रिव्यू करने वाली हूँ, वो पेंडिंग मूवीज़ भी जो पिछले के पिछले हफ्ते की हैं, दोनों ही मूवीज़ मैं आप लोग को सुनाऊँगी मतलब उनके रिव्यूज़ बताऊँगी। तो सबसे पहले तो कॉल आ चुका है, बात कर लेते किसका कॉल है फिर गाना सुनते हैं। हेलो
1: हेलो मैम,
0: वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
1: मैं पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: वाह क्या बात है, आपका तो अंदाज बड़ा खास लग रहा है
1: जी। और मैम मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल से जुड़ी हूँ और मुझे अनु पांडे दीदी ने जोड़ा है।
0: ओ क्या बात है, थैंक यू सो मच अनु, और मेरा बहुत सारा उसे बताइएगा आर्ज वीना का बहुत सारा प्यार, और उस मतलब उसको तो मैं बहुत पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारे हग्स एंड बहुत सारा मतलब क्या कहूँ, एक गाना भी उसको मैं सुनाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आप सुनाना क्या चाहती, मंडे को स्पेशली 89.6 FM पे आरजुबीना के साथ गोंडा मैसी मसाला में हम कॉलिंग करते हैं लाइव, जिसमें आपकी बातें हम लोग ऑन एयर ले जाते हैं, बातों में आपकी कहानी, आपकी कविता, आपका गाना, आपकी गजल, कुछ भी हो सकता है, आप सुनाना क्या चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या सुनाएंगे?
1: मुझे सॉन्ग गाना बहुत अच्छा लगता है और सॉन्ग सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सॉन्ग गाना चाहूंगी।
0: ओके वाह, ऑन एयर रायबरेली से हम आवाज सुन रहे हैं, क्या बात है, सुनाइए।
1: हेलो
0: जी जी सुनाइए
1: जी। मैम अपनी पसंद का कोई भी गीत गा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पसंद का कोई भी गीत आप गा सकती हैं।
1: मेरे दिल की गलियों में कब से तू आवाज है, मुझे थोड़ा थोड़ा वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, सदियों पहले तू ही था, सदियों पहले तू ही था, तू ही सदियों के बाद है, मुझे थोड़ा थोड़ा वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है।
0: क्या बात है पिंकी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। एंड रियली बताऊँ, इस गाने की लिरिक्स भी बहुत अच्छी है। मतलब मन कर रहा था कि पूरा गाना सुनने को मिले, लेकिन क्या बताऊँ।
1: जी मैम, मुझे श्रीदेवी के सॉन्ग्स और मूवी बहुत अच्छी लगती है, और खास करके बंजारन मूवी के सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम, क्योंकि इनका डांसिंग जो होता है ना, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: एंड टाई हो गया, और मुझे भी बंजारन मूवी के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड पिंकी, आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं, तो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, आप अपनी पसंद का गाना ऑन एयर सुन सकती हैं। और होप अनु ने अपनी दोस्त का आवाज़ दोस्त की आवाज़ बहुत मन से सुनी होगी, और वो भी कॉल करके बताएंगे भी कि उनकी फ्रेंड ने अच्छा गाना गाया।
1: तो मैं सॉन्ग सुनना चाहूंगी, मिट्टी सोना मूवी है और इसमें सॉन्ग है, जिंदगी में पहली पहली बार मैंने प्यार किया है, कह दे कह दे कह दे बस एक बार मैंने प्यार किया है। मैम ये सॉन्ग मुझे सुनना है, लता मंगेशकर की आवाज में है, और ये सॉन्ग मैं अनु पांडे दीदी को ही स्पेशली और आपको डेडिकेट करती हूँ।
0: थैंक यू। और सच बताऊँ, जिंदगी में पहली पहली बार आपको सुना है क्या बात है, थैंक यू सो
1: जी,
0: मच।
1: और आज मुझे फर्स्ट टाइम आपके मतलब चैनल से जुड़ के बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे बहुत रेडियो सुनना और रेडियो पे कॉल करना मतलब एक अलग ही आनंद होता है जो मुझे आज मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच, और अगले मंडे फिर इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच पिंकी, लॉट्स ऑफ लव।
1: थैंक यू मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। अभी हमने पिंकी से बात की, और पिंकी जी ने बहुत अच्छा गाना सुनाया और मज़ा भी आ गया। तो मेरी तरफ से, मतलब काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, तो सोच रही हूँ आप लोग को छोटे मोटे गिफ्ट्स देती रहूँ। तो आज कॉलर्स के लिए गिफ्ट ये है कि जो कॉल करेगा उसको उसका गाना थोड़ा सा, मतलब जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सुनाऊँगी मैं उसकी पसंद का गाना। तो ये फर्स्ट कॉलर थी, तो इनकी पसंद का गाना पहले सुन लेते हैं, जिंदगी में पहली पहली बार। आगे देखते हैं क्या किया है। सो गुड इवनिंग मनी, कैसे हैं आप? और तो पैसा पैसा करती है, वैसे पे क्यों तू मरती है। यस, सो हमारे मनी मनी की ढेर में बैठे रहते हैं, फिर भी ईगो 1% भी नहीं है। वेरी गुड इवनिंग, एंड चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ। एंड जिंदगी है साथ तो आरजबीना है पास, आप सुन रहे हैं यहाँ 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, अपना फेवरेट शो गोंडा मैसेमसाला आरजबीना वाला। स्टे ट्यून्ड।

गाना नहीं, ये फीलिंग है एक आरजे की, एक अपने की, एक इंसान की जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना।

कोई पास हो या ना हो, लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं तेरे पास हूँ, तू परेशान मत हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन इतना कहना ही हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, आज वर्ल्ड विंड डे है। गर्मी में हवा का मतलब एक अलग ही स्वैग है, और अगर गर्मी में बढ़िया हवा चल जाती है ना, ठंडी का मतलब वाइब आ जाती है, ठंडी वाली वाइब आ जाती है। और देखिए आजकल जो कहते हैं ना कि हवा से, मुझे याद आया कि हवा से बहुत सारी एनर्जीज बनाई जा रही हैं, और ये एनर्जीज ना सिर्फ हमारे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर रही हैं, बल्कि बहुत सारे मतलब कह सकते हैं ना कि ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो फॉसिल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, इसको कम करने पर हमारी मदद करेंगी। फिलहाल आप ये बताइए कि अगर आपके घर की सारी बिजली हवा से बनने लगे, तो आप सबसे पहले क्या चलाना चाहेंगे? हाँ भाई, क्या चलाना चाहेंगे? पंखा? नहीं, कुछ तो चलाना चाहेंगे, जरा सोच के बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे, अगर कुछ दिन के लिए लाइट चली है, तो कोई कुछ नहीं चलाएगा, सबसे पहले फ़ोन चार्ज करेगा। क्या बोलते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, आप बताइए। फिलहाल मुझे एक न्यूज़ मिली अभी जल्दी कि एक व्यक्ति ने फिटनेस बैंड जो होता है ना पहना, ताकि कदम गिन सके, लेकिन पता चला कि टीवी देखते ही हाथ ज़्यादा हिला रहा था और बैंड ने हज़ारों कदम गिन लिए। मतलब टीवी देखते देखते बहुत ज़्यादा हाथ हिला रहा था, जैसे कोई मैच वैच चल रहा होगा, तो उसने बहुत सारे कदम गिन लिए। और बेचारा सोचने लगा कि यार मैं तो एकदम कितना कदम चल चुका हूँ, मुझे अब चलने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूज़ की बात क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ। एक लड़की ने, मतलब आजकल लोग बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ आपके साथ दुष्कर्म हो या कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसी हैरेसिंग एक्टिविटी आसपास हो, तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाके आप अपनी मतलब रिपोर्ट लिखवाएं, FIR दर्ज कराएं। और वो बहुत ज़्यादा जागरूक लड़की थी, उसने सपने में देखा उसे कोई लड़का छेड़ रहा है, भाई जाके उसने FIR लिखवा दिया, पुलिस को पूरी वारदात बताई, ये नहीं बताया सपने में था। तो भाई लड़के को पकड़ा गया, धुलाई की गई, फिर उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोले हाँ, इसने कुछ किया नहीं, सपने में इसने मेरे साथ किया था। पुलिस वाले अभी तक शॉक में बैठे हुए हैं, मतलब क्या बताऊँ। और अभी सुनने में आया कि एक बिल्ली ने गलती से ऑनलाइन शॉपिंग में अपने मालिक के कार्ड से सामान ऑर्डर कर दिया। अब घर में इंसान कम और बिल्ली ज़्यादा खुश है। क्या कहें, दुनिया ही ऐसी है यार, मतलब क्या बताऊँ। इंसानों को तो खुश रहना आता ही नहीं है। और चलिए आगे बात करते ही रहेंगे, और मैं चलिए आप लोग को एक गाना और सुना देती हूँ, बढ़िया वाला गाना सुनाती हूँ, मतलब थोड़ा नया वाला गाना है, सुन के मज़ा आ जाएगा आपको। और कभी कभी मन करता है ना कि कुछ नए से सुने, नया सा सुने, तो नया ही मैं लेके आई हूँ, आज नए गाने ही सुना रही हूँ। तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी भारत भाग्य विधाता।

0: ये उजाले किसके होंगे ये पता नहीं, फिलहाल ये कॉल किसका है ये जानना जरूरी है और देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम, कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका शुभ नाम?
1: दीपांशी तिवारी।
0: ओ दीपांशी, ऑन द चैट रूम एज वेल एज ऑन द कॉल, ओके।
1: पहले बताइए आप ठीक है इतना दिन?
0: मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए, आपको पता है कि कुछ मतलब ऐसे जानवर होते हैं जो ठंडी और गर्मी में समर स्लीप और विंटर स्लीप लेते हैं, तो मैंने देखा कि यार आजकल कुछ जानवर चले गए हैं समर स्लीप पे, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं गई थी समर स्लीप पे गई थी, तो समर स्लीप के बाद अचानक से जहाँ मैं सो रही थी वहाँ थोड़ी बाढ़ सी आई और मैं बाहर निकली, मैंने कहा ओ मेरी स्लीप तो टूट गई, अब मैं वापस जाती हूँ।
1: मुझे तो नहीं लगता।
0: हाँ सांप वगैरह को नहीं देखती है ठंडी में, कहाँ जाते हैं वो, विंटर स्लीप पे जाते हैं।
1: सांप से दोस्ती थोड़ी ना किया जाता।
0: नहीं, इंस्पिरेशन जैसे मिलती है ना, हम लोग बहुत लोगों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो वैसे ही मैंने भी इंस्पिरेशन ले ली। सो दीपांशी कैसी हैं आप, पहले ये बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, बस आपका वेट कर रही थी कब आपकी आवाज सुनने को मिलेगी।
0: इंतजार मुकम्मल हुआ।
1: वो हर पल वही गाना गाती थी मैं,
0: हर पल तेरी याद सताए ओ पिया तुझ बिन जी।
1: अभी कौन गाती थी? आखिर दो में आना होगा जरा देर लगे।
0: मैं ही वाला गाना याद करके अब सुनाऊंगी कि तुमने पुकारा और चले आए। सो दीपांशी फिलहाल आज आप क्या सुनाएंगे, कविता या फिर कुछ?
1: मैम इस वक्त तो मैंने लिखना बंद कर दिया है, मगर एक सॉन्ग है, कोशिश करूंगी, कभी गाई तो हूँ नहीं फिल्मों का गाना, मैं कोशिश करते हैं, हम भी देखें गा पाते हैं या नहीं।
0: ओ, गा पाते, जो गाता है ना वो गा लेता। और दीपांशी लिखना क्यों बंद कर दिया, थोड़ा तन्हाई में जाइए, कुछ लिख के सुनाइए बढ़िया।
1: नहीं लिखते हैं मगर अभी थोड़ा व्यस्त है इसलिए नहीं लिखते हैं।
0: ओके,
1: और लिखेंगे तो कुछ अच्छा लिखेंगे, मस्ती मजाक वाला लिखेंगे।
0: ओके, रेडी टू लिसन यू? बिल्कुल।
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ।
0: मैं आपके गाने का
1: कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे।
0: क्या बात है,
1: बिना तेरे कोई दिलकश नजारा।

देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, तेरे दिल में रहेंगे तुझको अपना घर बना लेंगे, तेरे दिल में रहेंगे तुझको अपना घर।

कसम तेरी कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ तुम्हें तुम्हें हम

कुछ ऐसे बता लेंगे तेरे तेरे कमजोरी अपने जिस्म की सूर कुछ खुशबू बना लेंगे खुदा से भी ना जो टूटे।

0: जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है। और मैं आपके गाने का रिप्लाई देना चाहती हूँ। गाने का रिप्लाई कुछ इस तरह है, म्यूजिकल ही है कि

0: प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो भाई इतना खतरनाक गाना था, छोड़ मतलब मैं एक लाइन बार बारीकी सुन रही थी, मैंने कहा भाई इतना खतरनाक गाना किसी को डेडिकेट किया जाए और तब भी अगर कोई प्यार को ना समझे।
1: रिलैक्स, मैं किसी को डेडिकेट नहीं करती। ये सॉन्ग मुझे बचपन, ये जब से मतलब आया है ये सॉन्ग, तब से
0: ऑफ
1: मुझे
0: कोर्स
1: बहुत
0: ये गाना
1: पसंद
0: सच में बहुत अच्छा है और बहुत मतलब मैं कहूंगी उस दौर का ये सुपर डुपर हिट गाना था। और
1: है।
0: उस
1: यस
0: समय मतलब लोगों की कॉलर ट्यून का बहुत लगाने का लोगों का मतलब
1: यस
0: ट्रेंड
1: मैम,
0: था।
1: और अगर कोई इसका कोई गलत मतलब निकाले तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी को डेडिकेट नहीं करती और ऐसे दौर हमारे लाइफ में नहीं आए, नहीं
0: और
1: आएंगे
0: बिल्कुल भी नहीं
1: किसी।
0: आना चाहिए। और सच्ची बताऊं, और मतलब अगर कोई ऐसा इंसान सोच भी रहा है कि मतलब जबरदस्ती वाले प्यार की अगर उम्मीद कर रहा है, तो वो बिल्कुल उस प्यार को मतलब ना जिए। सो
1: ऐसे लोगों
0: थैंक
1: मतलब
0: यू
1: ऐसे चीजों से दूर रहती हूँ और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ प्यार करते हैं, प्रेम कोई नहीं करता है, और मुझे प्रेम की भूख है, प्यार की नहीं।
0: ओह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एंड
1: क्योंकि
0: दीपांशी आई नो
1: प्रेम प्रेम में वो चीज है जो हर इज्जत मिलती है, और प्यार में कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ
0: प्रेम
1: बदनामियां मिलती
0: सम्मान है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम
1: है।
0: अध्यात्म
1: लोग
0: है, सब।
1: लोग कहते हैं कि प्यार राधा कृष्ण किया था, तो उन्होंने प्यार नहीं किया था, उन्होंने प्रेम किया था।
0: एंड
1: अगर
0: यस
1: बनना
0: वो
1: मुमकिन नहीं
0: प्रेम
1: था तो उनको दोनों
0: हर
1: करना
0: दुनिया
1: पड़ेगा।
0: के हर रिश्ते में होता है। थैंक यू सो मच। और मतलब गाना मस्त था, मज़ा आ गया। और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तीसरा वाला स्टेंजा भी मतलब याद होगा, बट यू क्या कहना, क्या कहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अ लॉट। वैसे गाना अपनी पसंद का कौन सा सुनना है दीपांशी को?
1: कोई तड़कता भड़कता सुना दो, क्योंकि मैं सैड सॉन्ग तो कभी सुनती नहीं हूँ, सबको
0: ऑफ
1: पता है कि
0: कोर्स
1: चार सालों
0: यू
1: के बीच
0: कैन
1: में।
0: राइट इन योर चैट रूम एंड आई एम वेटिंग। ओके सो चलिए अगले कॉल की तरफ रुक करते हैं। और देखिए आज मतलब मुझे कई आवाज़ें और कई अंदाज़ में आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। और अगले कॉल का रुख करती हूँ मैं बिना देर किए, क्योंकि ये कॉल काफ़ी देर से आ रहा है। हेलो गुड इवनिंग।
1: फूल फूल फूलों में फूल, फूल में खुशबू, खुशबू में है बहार, बहारों में है आपकी आवाज, आपसे बात करने के लिए मैं थी थोड़ा सा बेकरार। गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग अनु, कैसी हैं आप? आपका था इंतजार, फाइनली हुआ मुकम्मल। क्या है
1: यस
0: हाल?
1: मैम, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताओ आप कैसे हो।
0: मैं तो अच्छी हूँ पर ज्यादा अच्छी नहीं हूँ,
1: क्यों
0: क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं
1: ना, आप ज्यादा अच्छे हो।
0: ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ मस्त हूँ, और मैं आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हूँ। फिलहाल आप अपनी सहेली को कौन सा गाना डेडिकेट करने वाली हैं ये बताइए।
1: मैम सहेली को तो कोई भी गाना डेडिकेट कर दूंगी, करूंगी तो भी नहीं वो नाराज होगी, नहीं करूंगी तो भी वो खुश रहेगी, और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, अभी बहुत जल्दी हमको मिली है, फिर हम लेकर आ गए अपने घर उसको।
0: क्या बात है, ऐसा भी है भाई, मेरा कोई दोस्त मुझे अपने घर ले क्यों नहीं जाता है।
1: अरे मैम मेरा घर ग्रीडो ज्ञान स्थली है।
0: ओह ये बात अब मुझे पता चला। ओके फाइनली आज अनु क्या सुनाने वाली है?
1: आज मैं जो सॉन्ग गुनगुनाऊंगी ना वो स्पेशली आपके लिए
0: ओके थैंक यू। तो सबसे पहले
1: है। और एक
0: तो
1: बात मैम, मैं आपको बहुत जल्द सरप्राइज देने वाली हूँ।
0: मुझे ओ माय गॉड, मेरी धड़कने अभी से बढ़ रही है।
1: बहुत जल्द वो शुभ घड़ी आने वाली है जब मैं आपको सरप्राइज दू।
0: ओके आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। तो चलिए गाना सुनते
1: आपके
0: हैं।
1: लिए भी। हाँ अभी सॉन्ग गुनगुना रही हूँ।

0: हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर
0: और क्या रहा आपके लिए देख।

0: क्या देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा।
1: थैंक यू सो मच। और अनु, ये लिरिक्स ही नहीं है सिर्फ, मैं आपकी फीलिंग भी समझ रही हूँ, एंड थैंक्स फॉर लविंग मी अलॉट, मुझे इतना प्यार करने के लिए।
0: मैम पता है, मैं सो ना सुन पाऊँ वो बात अलग है, मैं सो ना सुनूँ वो बात अलग है, पर आप ना आओ वो बात अलग नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: मुझको ये पता चलता रहे चाहे मैं 1-2 मिनट के चेक कर लूँ कि हाँ मैम आ रही है, अगर आप नहीं आ रहे 1-2 दिन नहीं आए तो चलो कोई बात नहीं है, पर इतनी लंबी छुट्टी।
1: मतलब सब लोग शौक में चले गए ना, मतलब एवरीवन इन शौक।
0: पता है मैम, यहाँ कुछ लोग नहीं, बस कोई खास ही था जो अफवाह उड़ा रहा था कि आप बीमार हो। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैम हमारी इतनी अच्छी बनी है, फिर ऐसे क्यों कह रही है कि बीमार है, और मुझे पता था कि आप अच्छी हो।
1: मैं अच्छी तो हूँ, ऑफ कोर्स अच्छी हूँ मैं।
0: और मुझे ये भी पता था कि आप कहाँ हो।
1: हाँ ये भी पता था। अरे
0: इसीलिए तो मैंने शो में पूछा ही नहीं कि मैम कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था।
1: अच्छा, मुझे जानने वाले सब लोग इतना ज्यादा जानते हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच।
0: अरे मैम, मैं आपको इतने सालों से जान रही हूँ और इतना भी न जान पाऊँ तो बेकार है।
1: ये बात तो सही है। फिलहाल गाना कौन सा सुनना है, मैं ये जानना चाहती हूँ।
0: गाना तो आप अपने पसंद का कोई भी सुना दो।
1: ओके, विद योर नेम टैग। ओके, आपका नाम साथ में जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच अनु। और सच्ची बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, एंड ऐसे लग रहा है कि 15 दिन की थकान निकल गई।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और पता है, जो रिंकी टिंकी ने कॉल किया था उनको भी बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कह रही थी कि मैम कितना मीठा बोलती है।
1: हाँ, वो थोड़ा मिश्री खा के आई थी आज।
0: बोली ना, मैं हमेशा मिठाइयों में रहती हूँ, शहर में इसीलिए इतना मीठा बोलती हूँ।
1: गोंडा शहर में मिठाई बहुत मिलती है और मैं मीठा लवर हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू।
0: ओके
1: मैं आऊंगी किसी दिन तुम्हारे घर और फिर तुम्हारे गाय भैंस के दूध से बनी हुई मिठाई खाऊंगी, तब वो मिठास जो होगी ना वो अलग वाले लेवल की होगी।
0: मैम आप घर आ जाओ ना तो बहुत सारी चीजें आपको खिलाऊंगी।
1: बहुत सारी चीजें,
0: वहाँ तो मैं उतनी चीजें ला नहीं सकती, पर घर आओगी तो बहुत सारी चीजें मैं खिला सकती हूँ, और कभी सेवा करने का मौका दीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी।
1: ओह वाह, क्या बात है। ठीक है अनु, मैं बिल्कुल आऊंगी, श्योर आऊंगी, डेफिनेटली। थैंक यू अनु। सो अनु से बात हो गई और बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। फिलहाल चाय पी के काम चलाती हूँ, दीपांशी ने भेजी और एक गाना जो अधूरा रह गया वो सुना देती हूँ। अनिल जी ने कहा कि वो गाना सुना दीजिए। हाँ भाई, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि इस गाने को थोड़ा अंदाज में सुनाया जाए। और सच्ची बता रही हूँ, ये गाना उस समय जब रिलीज़ हुआ था, और इस गाने की कहानी है कि इस गाने को जब रिलीज़ किया गया, पहले तो लोगों ने बोला कि यार इसकी लिरिक्स बड़ी वो है, बोरिंग है, ये है वो है, पर जब ये गाना रिलीज़ हुआ, इस गाने के बाद अचानक से जो कहते हैं ना कि सुसाइडल केसेस थे वो कम हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गानों को सच में बार बार रिलीज़ होना चाहिए, ऐसे गाने लोगों ने, मतलब लोगों को बनाने चाहिए। और चलिए अगले कॉल की तरफ रुख करती हूँ, बिना देर के आवाज़ सुनते हैं। हेलो, शुभ संध्या अनिल जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपकी आवाज़।
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप घूम के कहाँ कहाँ आए?
1: मैंने कहा तो मैं घूमने नहीं गई थी।
2: अच्छा, फिर यही गोंडा में?
1: बस कुछ दिनों की बेड रेस्ट पे थी।
2: अरे बात चलिए, अच्छी बात, होना चाहिए।
1: चलिए चलिए, अब आप बताइए, आप लोग कैसे थे मेरी एब्सेंस में, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया?
2: एंजॉय की बात देखिए, एंजॉय तो आदमी पर डे करता है, वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको भी बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे, हमें नहीं लगभग आपके श्रोता सारे।
1: थैंक यू सो मच। और देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एक दीवार पे लगी घड़ी को अगर हम कुछ दिनों के लिए हटा के दूसरी जगह लगा दें, वो दीवार भी खाली लगने लगती है। तो एक समय पे एक चीज को सुनते सुनते हम लोग का कनेक्शन बहुत बेहतरीन हो जाता है।
2: मैं बस वही कह रहा ना कि एक परिवार टाइप का एक लगाव हो जाता है।
1: यस, और ये लगाव ताउम्र का है। मेरी तरफ से तो ताउम्र का है। जी, तो चाहती हूँ कि आज आपकी आवाज में क्या सुनने को मिलेगा, कुछ ओल्ड इज गोल्ड।
2: मालूम है कि मैं तो पुराना ही गाना सुनाऊंगा, मैं तो आज के डेट में न्यू जनरेशन हूँ जो गाना मेरे को एक्चुअली क्या है कि जो पुराने गाने थे वही मैं, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले जो गाई है बहुत बढ़िया गाई है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखा भी
1: और मैं वो गाना सुनाने भी जा रही थी, मैंने सोचा अब कॉल आ गया पहले ऑन
2: तो फिर नहीं तो फिर कहिए मैं काट देता हूँ।
1: नहीं, कॉल ब्रेक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉल इन डे आप लोग के लिए और आज का दिन मैं बिल्कुल यूटिलाइज
2: करिए, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा गाऊंगा ताकि मुझे सुनना आपकी जो आपने स्टार्ट किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्केल से बहुत बढ़िया सुनते।
1: स्वागत है।
2: तो मैं दो रास्ते का सुनाता हूँ, शायद दो रास्ता सही है ये रेसिपी जुलते हैं।
1: वाह क्या बात है।
2: तो मैं सुनाऊं?
1: जी जी स्वागत है स्वागत है।
2: ये रेशमी जुलते ये शर्म

जय जो शरम से झुक जाएंगी सारी बात यही बस रुक जाएंगी ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बात यही बस रुक जाएंगी चुप रहना ये अफसाना कोई न कोना

जय रेशमी जुल्फें जय शर्वतिया।

Zulfein maghroor itni ho jayenge, dil ko tadpaenge, dil ko tarsaenge. Zulfein maghroor itni ho jayenge, dil ko तड़पाएंगे, जेको तरसाएंगे, जे कर देंगे दीवाना, कोई न कोना बतलाना के है देख कर।

0: ये शर्बत आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, आपने बिल्कुल माहौल बना दिया। गाना नहीं आप गा रहे थे, आप जैसे लग रहा था कि उस दौर में एक एक इंसान को खींच खींच के ले जा रहे थे। एंड वी वर द लाइव ऑडियंस की हम लोग अभी 90s में जाके बैठे हैं और वो ब्लैक एंड वाइट टाइम चल रहा है और उस समय एक बढ़िया सा कलरफुल सिनेमा का गाना आके हमें चकचौंध में ले जा रहा है। मतलब क्या कहने, क्या कहने, शब्द कम पड़ गए। अच्छा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं थोड़ा बहुत ही उचित गाया अच्छा लगा, हालांकि पूरा तो कंप्लीट नहीं कर सकता,
1: पर
0: क्योंकि रफी साहब इतने बेनी महान
1: डेफिनेटली, और वो बात सही है। लेकिन आवाज की दुनिया में अगर आपने भी पहचान बनाई होती तो शायद आपका भी नाम यहाँ हम ऑन एयर ले रहे होते बड़े सिंगरों में, पर मुझे नहीं पता।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, बहुत ठहराव है और ये ठहराव।
0: लेकिन लेकिन मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने बोला आपसे वो सुनाई है।
1: हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली।
0: हाँ तो मैं इसी के बाद सुनना चाहूंगा।
1: ऑफकोर्स ऑफकोर्स, थैंक यू सो मच अरिंद जी। तो लिसनर्स, आप लोग को मैं बता दूं कि आप गोरखपुर से अनिल जी को सुन रहे थे, जो कि बेहतरीन आवाज़ में हमें बहुत सारे गाने सुनाते हैं अक्सर। और सच्ची बताऊं, इनका ठहराव, इनका अंदाज़ और आप सभी का अंदाज़, मैं किसी एक लिसनर की बात नहीं करूंगी, सब अपने आप में यूनिक हैं। एंड यही चीज़ मुझे लगता है हर किसी में होनी चाहिए। कोई किसी को स्पेसिफिकली कॉपी ना करे, मैं ये चाहती हूँ। और मैं वो गाना भी सुना देती हूँ जो काफ़ी देर से आप लोग मुझसे सुनना भी चाह रहे थे। और गाना है कि छोड़ दे सा

कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से

जहाँ तक तो मुझे ये गाना अभी थोड़ा भूल रहा है, लिरिक्स भी भूल रही है और कैसा था इसका एंड, कोशिश करती हूँ कि दिल ने चाहा भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है, सबकी खुशी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। फिलहाल मेरा स्केल शुरुआत से अभी चेंज हो गया है और मुझे ये गाना बिल्कुल याद नहीं था, पर कोशिश मैंने की अनिल जी के लिए। आई होप अनिल जी आपको ये गाना अच्छा लगा होगा और इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन दीपांशु अपना गाना ज़रूर सुन के जाना एंड इट्स टाइम फॉर योर सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं वो गाना जो एक बार नहीं कई कई बार हम सबका फेवरेट रहा है और आज फिर से फेवरेट बनने के लिए ऑन एयर बजने जा रहा है। चलिए सुनते हैं गाना चांद तारे फूल खुशबू।

0: तो इस गाने को सुनने के बाद अगेन बारी है आप लोग के साथ एक आवाज़ सुनने की. चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी. हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग. हेलो हेलो हेलो. आवाज़ जानी पहचानी थी लेकिन आवाज़ मुझे लगता है कहीं चली गई. अगली आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं किसकी है. हेलो, शुभ संध्या. हेलो हेलो. एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. दो कॉल ऑन एयर, दोनों की दोनों डिस्कनेक्ट. हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज. और चलिए देखते हैं अगली आवाज़ किसकी है. हेलो हेलो हेलो
2: हेलो. गुड इवनिंग मीना मैम.
0: गुड इवनिंग. शुभ संध्या और सुरेश जी कैसे हैं. स्वागत है आपकी. पहले तो आवाज का आपका.
2: आप कहीं गई थी क्या.
0: हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा सा बाहर थी और वापस आज आप लोग के साथ हूँ. कृपा से
2: आप जहाँ भी थी ठीक ठाक था.
0: हाँ बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ अभी और आगे भी अब ठीक ही रहूँगी. और उम्मीद करते हैं कि ऐसी मुश्किलें आएंगी और उनका सामना हम फिर से कर लेंगे. एनीवे, सबसे पहले तो सुरेश जी आपकी आवाज़ का स्वागत है. कैसे हैं आप और आज आप क्या सुनाने वाले हैं.
2: ठीक है, आपका प्रोग्राम बराबर सुनता रहा
0: जी.
2: और कभी आकांक्षा मैम ने डील किया, कभी मनु भैया ने डील किया
0: जी. जी
2: बस आप ही का इंतजार था मुझे कि जब ये सोमवार को सुनने में आ रहा था कि आप आ जाएंगे इस मंडे को.
0: और इंतजार मुकम्मल हुआ तो
2: हाँ.
0: आज आप क्या सुनाने वाले हैं.
2: चलो बस सुना रहे हैं आपको एक है.
0: जी जी बिल्कुल, स्वागत.
2: शुरू कर रहे हैं.
0: जी जी.
2: हम अरे जो सोच रहे थे तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा बस इतनी खता है मेरी और खता क्या. तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा बस इतनी खता है मेरी और खता क्या. अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है. अब गले मिल जाओ आके इतना ही अरमान है. अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है. अब गले मिल जाओ आके इतना ही अरमान है. तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मुझे बस इतनी खता है मेरी और खता क्या. अब लता जी कह रही हैं शीशाएं दिल में छुपा है ओ सितमगर तेरा प्यार. जब जरा गर्दन झुकाई देख ली

0: तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मुझे बस इतनी खता है मेरी और खता क्या है तुम्हें।
1: क्या बात है। और सबसे खास जो आपका अंदाज है, आप बताते हैं कि ये किसकी लाइन है और किसने किस अंदाज में गाई, ये आपकी गायकी को और बेहतरीन बना देता है। और हमेशा से जब पुराने गानों को खूबसूरत अंदाज में गाने की बात आती है तो आपका नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। क्या बात है क्या बात है।
0: अगर एक छोटा सा और एक लाइन तो कहो कहते हुए।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है।
0: चलिए तुम कहाँ चलिए तुम कहाँ रुकिए

रख तुम्हारा है सहारा, जमाने के बाद मिले हो, जमाने के बाद मिले हो, चल दिए तुम कहाँ, दर दर भटका मारा मारा, तुमसे मिलने को मैं दोबारा, दर दर

0: मेरी जाना वो दिल तारा कुछ तुम्हारा है सहारा जमाने के बाद मिले हो जमाने के बाद मिले हो चल दिए तू कहाँ। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज में एक और गाना सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। तो सुरेश जी ने ना सिर्फ गाना गाया बल्कि हमें याद दिलाया कि जिन गानों को कहीं हम दूर छुपा के अपनी कहते हैं ना कि ओल्ड डायरीज में लिख के रखे हुए हैं उन्हें सुनने का दौर आ गया है। और सच बात है कि पुराने गाने ही हमें याद रहते हैं, नए गाने ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहते। इसके पीछे का क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, पता नहीं। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम?
2: मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं, नाम गोंडा से।
1: मोहिनी, ओके। गोंडा से कहाँ से? गोंडा में कहाँ से? गैरवीपुरवा से?
2: नहीं मैम, गोंडा गोडरीपुरवा।
1: ओह क्या बात है। तो मोहिनी आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैम एक रफी साहब की आवाज में एक सॉन्ग था, पुराना है लेकिन थोड़ा लिरिक्स याद है।
1: मोहिनी मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ।
2: यस मैम।
1: वाह क्या बात है। सबसे पहले तो स्वागत है मोहिनी, एंड अभी आप सुन रहे हो शो गोंडा वैसे मसाला आज बिना वाला और 89.6 FM यानी कि गोंडा शहर की पहली धड़कन पर। तो मोहिनी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज आपने फर्स्ट टाइम मुझसे बात किया तो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, अपने पसंद का गाना आपको सुनाऊंगी आपके गाने के बाद। तो फिलहाल आपकी आवाज़ में सुनते हैं रफी जी का गाना जो उन्होंने गाया था अभी आपकी आवाज़ में।
2: मैम गाने का नाम है मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
1: वाह तेरे प्यार में। हाँ हाँ क्या बात है, स्वागत है।
2: मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरे अखियों में देखा तो झलकता प्यार देखा, तेरे सिर में देखा तो जिगर के पार देखा, तेरे सिर में देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है। मैं सच्ची बताऊं कि कोई किसी के प्यार में कवि बने ना बने लेकिन आप लोग की आवाज़ सुन सुन के मैं सिंगर जरूर बन जाऊंगी, इतना अच्छा आप लोग गाते हैं। तो फिलहाल मोहिनी आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
2: थैंक यू मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगी
2: मैम? मैं क्या बताऊं, मुझे वैसे याद तो नहीं है, एक गाना है वो भी सैड वर्जन का है।
1: यस कौन सा?
2: जो वादा किया वो निभाना है होगा।
1: जो वादा किया वो निभाना पड़े।
2: नहीं पड़ेगा नहीं, जो वादा किया वो निभाना।
1: जो वादा किया वो निभाना। ओके थैंक यू सो मच मोहिनी। थैंक यू। चलिए करते हैं रुख अगले कॉलर की तरफ, सुनते हैं आवाज, देखते हैं किसकी, कौन है, कहाँ से। हेलो
3: हेलो। नमस्कार संध्या मीना जी।
1: नमस्कार सबलू जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका, क्या हाल है
3: जी? मैं तो काफी बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी आवाज से आप भी काफी बढ़िया ही है।
1: हाँ बिल्कुल, और बढ़िया हूँ तभी तो आप लोग के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं कि आप कहाँ हैं, मुंबई या फिर अपने वतन पे?
3: जी हाँ, मुंबई ही, अभी बोरीवली से सांता क्रूज में अब ट्रांसफर मेरा जॉब हो गया।
1: ओह क्या बात है, तो ट्रांसफर होने के बाद आपको नई जगह कैसी लग रही है?
3: बढ़िया ही है, मुंबई तो खैर मन भावक जगह है जो आदमी का
1: बहुत लोग सपने देखना सीखते हैं, बहुत लोग सपना देख के जाते हैं कि वहीं जाना है। फिलहाल आप बताइए आज आप क्या सुनाने वाले हैं, अपनी कलम से या अपनी आवाज से कोई प्यारा सा गाना?
3: आज तो मैं सॉन्ग सुनाऊंगा, जल्दीबाजी में आया हूँ, कविता तो नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ अगला मंडे को कविता ही लेके।
1: क्या बात है, स्वागत है।
3: Thank you.

0: महबूब का वादा थोड़े से न छूटे, चाहते कह रही है हर घड़ी यार की, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, प्यार का मैं ये वादा निभाऊंगी, आजा आजा जिंदगी मैं तुझे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझे को चाहूंगी, ना जमी होगी ना तू गगन होगा, बदलेगा हर मौसम इन हवाओं में, महकी फिजाओं में शामिल रहेंगे हम, इसके जहां से कभी इसके डरता नहीं, जानते हैं सभी इसके मरता नहीं, हर जन्म में तुझे मैं पाऊंगा, आजा आजा। जी मैम,
1: क्या बात है। और ये गाना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आखिरी बार रेडियो पे सुना था, और वापस से आपकी आवाज़ में रेडियो पे सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबलू जी ने अपनी आवाज़ में ये गाना सुनाया, आजा आजा आजा। और ये गाना मतलब मुझे ना सिर्फ एक उम्मीद देता है कि अभी वो गाने अभी भी लाइव हैं जिनको सुन के दिल को सुकून मिलता है। हेलो
2: हेलो,
1: गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपका।
2: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, योर गुड नेम
2: मैम? वैष्णवी।
1: वैष्णवी, क्या बात है, बड़ा प्यारा सा नाम है। वैष्णवी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैम गोंडा से, रानी बाजार।
1: रानी बाजार गोंडा से, वाओ क्या बात है। और गोंडा का वो क्षेत्र जहाँ पे हर वक्त चहल पहल रहती है, वो मतलब जगह जहाँ पे हर वक्त रोशनी चमकती है, रानी बाजार। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप?
2: नाम गा के सुनाएं।
1: यस ऑफ कोर्स।
2: चलो

रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ टूटी वहाँ यारियाँ, मिला दे हुए उड़ते पतंगों में।

रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी आरिया।

0: मुझे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना।
1: क्या बात है, और सच्ची बात है, दोस्ती नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती हमें ये दिलाती है याद कि अभी भी हम हैं खुश, अभी भी हम हैं बेफिक्र, और अभी भी कोई है जो हमें बिना मतलब के सुन सकता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच वैष्णवी, बहुत अच्छा गाया आपने।
0: थैंक यू मैम।
1: सो अभी हमने वैष्णवी की आवाज़ में सुना एक प्यारा सा गाना, और देखिए टाइम भी हो चला है आप लोगों से दूर जाने का। एक आखिरी कॉल, चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, एंड फाइनली बात हो रही है श्रद्धा से। गुड इवनिंग श्रद्धा, कैसी हैं आप?
2: हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, और आप लोगों से बात कर रही हूँ, और आप लोग की आवाज़ सुन रही हूँ। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास, आप क्या सुनाना चाहती हैं जल्दी से बताएं और सुनाएं।
2: जी मैम, हमने गाना लिखा है जो आपको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी बिल्कुल स्वागत है, और समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से सुना दें।
2: ओके मैम।

खुशियाँ खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं गम के लहरों को समंदर में डुबा देते हैं, डुबा देते हैं। मौसम ये सुहाने हैं लिखने

मौसम ये सुहाने हैं, लिखने को फसाने हैं, कहने को जमाने हैं, लेकिन सब बेगाने हैं। चल कहीं बाजार में।

गम के लहरों को समंदर में डुबा देते हैं, डुबा देते हैं।

0: सो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टाइम भी हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का। अभी आप सुन रहे हैं हमारी प्यारी लिसनर श्रद्धा की आवाज़ में उनका लिखा हुआ गाना, बहुत ही प्यारा गाना सुना रही हैं। और इस गाने को सुनते हुए इस शाम को टाटा बाय बाय कर रहे हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपका गाना बहुत ही प्यारा लगा। और मैं ये कहूँगी कि गाने की लिरिक्स तो जितनी अच्छी है ही, उससे भी ज़्यादा अच्छा आपने इसको मतलब अपने अंदाज में कंपोज किया है। म्यूज़िक कितना अच्छा आपने इसको दिया, कितना अच्छा, मतलब क्या बताऊँ, बहुत खूब बहुत खूब। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रद्धा, और हमेशा की तरह हर बार आप कुछ नया लाती हैं और इस बार भी आप बहुत अच्छा लिख के लाई हैं, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा। श्रद्धा के साथ साथ मैं बाकी लिसनर्स को भी थैंक्स करना चाहूँगी। और अभी हमारे साथ हमारी सविता जी भी चैट रूम में हैं, और आज तो कॉलिंग था तो बात बहुत ज़्यादा चैट रूम से भी नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच सविता जी, आपका भी स्वागत है। और मनी तो काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। मनी बहुत दिन हो गए आपने कॉल नहीं किया और कुछ सुनाया नहीं। शुभ संध्या अनूप जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। बबीता जी गुड इवनिंग, एंड आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलके ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सुकून वाली फीलिंग आ रही है। सच को तो ये दूरी नहीं थी, ये सिर्फ कुछ दिन नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियों बाद मैं मिलने जा रही हूँ आप लोगों से। माइक्रोफोन के सामने बैठ के अपनी धड़कनों से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और यस, आप लोगों से जुड़ना अपनी धड़कनों से जुड़ने जैसा है। आपके फरमाइशों को सुनना, आपकी आवाज़ को सुनना, आपसे बातें करना, और 89.6 FM के साथ चाय की चुस्कियाँ लेना एक फॉर्चुनेट बात है, और मैं इस फॉर्चून को आगे भी बना के रखूँगी। और मैं इन सब को कितना मिस कर रही थी, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती। फिलहाल ये जो कहते हैं ना कि आवाज़ के जो रिश्ते हैं इनमें दूरियाँ मायने नहीं रखती, जो दिल में बस जाएँ वो नज़रों से ओझल नहीं होते। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, इस सब्र का, हम तो बस जरिया हैं, असली रौनक तो इस सफर की आप हैं। थैंक यू सो मच माय डियर लिसनर्स, आपका प्यार, आपका साथ, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं, और इन ब्लेसिंग्स के वजह से आज मैं आप लोग के साथ एकदम अच्छे से बात भी कर रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ, फाइनली हील कर चुकी हूँ। सो ये हीलिंग पावर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, मुकम्मल होगी बातें, और हाँ एक प्यारी सी प्रेम की दास्तां लेके आप लोग के बीच वापस हाजिर हो जाऊंगी। तो कल सुनना मत भूलिएगा आरजे बीना को अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर। गोंडा मैसी मसाला आरजे बीना वाला में आपकी आरजे बीना के साथ लाइव होगी एक कहानी जो आपको ले जाएगी एक रियलिटी की दुनिया में। जी हाँ, कहानी एक ऐसे कपल की जिनके बारे में जानने के बाद शायद हम कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाएंगे। तो बिल्कुल लाइव मिलते हैं कल 6 बजे ठीक शाम आपके फेवरेट वाले मंगलवार में। तक के लिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। सांसों के माला पे सिमरूं मैं पीकाना। वो कौन है? जी हाँ, आप ही का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
2: और जेंट्स के लिए,
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अस्तु। सो अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, इतना खूबसूरत सा नगमा सुन के अब तो अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और हमेशा की तरह लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके और गीत आपके नाम से तो ऑब्वियसली रहेंगे और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी सी बात और जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो बबीता जी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, सविता शास्त्री जी, सबलू सीस इंडिया मुंबई से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, हरीश शरण उदालक शर्मा मनकापुर से, मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बल जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से और निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। आहा, सो क्या बढ़े हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि हम एंजॉय करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही रोमांटिक सा नगमा। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में हम एंजॉय करेंगे जीना सिर्फ मेरे लिए। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है बबीता जी की तरफ से और बबीता जी हैं गोंडा से। सो बबीता की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। देखिए हूँ।

0: खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्वीट सा, बहुत ही रोमांटिक सा नगमा बाबुल सुप्रियो अलका यामी की आवाज में हमारी बबीता जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, स्ट्रीट डांसर का गाना, गर्मी, आई मीन हाई गर्मी। सो एंजॉय करते हैं वरुण धवन, नोरा फतेही, बादशाह, नेहा कक्कर और रेमो डिसूजा का ये वाला सुपर डुपर हिट समर वेकेशन वाला गाना, और एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस वाला गाना और एनर्जी से भर देने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास तो सेक लगे।

जॉय के ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा स्ट्रीट डांसर मूवी का हमारी अनुष्का की परमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से नाउ नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज के लिए परमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुनीता मौर्य जी गुड़वाघाट गुंडा से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से, उनको सुनना है बेवफा सनम मूवी का गाना। सो एंजॉय करते हैं सबलू सावंत की फरमाइश पर ये वाला नगमा।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बेवफा सनम मूवी का हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की गोंडा से। प्रबल मिश्रा को गोंडा से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा और हाउ ब्यूटीफुल नगमा, ओ माय गॉड। एंजॉय करते हैं जोड़ी नंबर वन का गोविंदा और संजू भाई का ये वाला नगमा प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। I love this song and very very good evening and welcoming your show. KK Gupta from Tiranga Complex Gonda, dil se welcome. Gaurav India wale stay tuned and welcome in your show and Hari.

क्या क्यों अब क्या होगा प्रबल जी, यहाँ वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, क्यों सही कहा ना मैंने। सो हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, और उनको सुनना है ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। I love you.

एंजॉय किया है। अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है हरिशरण की। उनको सुनना है गाना अपनी प्रेम कहानियां। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में फिर से बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, मेरा गांव मेरा देश मूवी का, लेकिन इस बार हरिशरण की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

स्वर के है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हरिशरण की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज के भी फरमाइश की तरफ। और दोस्तों अब तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुर्सी की पेटी को खोल लीजिएगा और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइएगा, दो चार ठुमके लगाने को तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अगली फरमाइश है उदालक शर्मा की मन का पुरसे। और आपको पता है क्या, उदालक शर्मा को मन का पुरसे कौन सा गाना सुनना है? अलका याग्निक जी की आवाज़ में ऐश्वर्या राय जी के गाने को हम इंजॉय करने जा रहे हैं। मनकापुर से उदालक शर्मा की फरमाइश पर गाना है गैया आय हाय। इंजॉय करते हैं।

की खूबसूरत सा नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश पर बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। खुरासा गोंडा से मनीष शर्मा को सुनना है गाना भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। सो एंजॉय करते हैं भीड़ में तन्हाई में मुझे सिर्फ तुम याद आते हो। उदित नारायण की आवाज में, श्रेया घोषाल जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पी एस स्टेट।

दोस्तों, ये फरमाइश थी मनीष शर्मा की खोरासा गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनिल वर्मा।

0: उस के जाए बाहर और बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हमने इंजॉय किया है ये रिमिक्स वर्जन इस ओल्ड इज गोल्ड वर्जन वाले गाने का, सिर्फ अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। शिवम पांडे जी और मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश और मिलेंगे इस फरमाइशी गीत के उस तरफ आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया से निकलने के बाद में, फिर से फरमाइशी की महफिल में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में सीधे 9 बजे। सो अगली फरमाइश है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। राजेश सिंह जी को सुनना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में गाना न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। हाँ, कोई किसी के दिल को दिल नहीं समझता है, सब अपने दिल को दिल समझते हैं, सब अपने दुखों को दुख समझते हैं, सब अपने दर्द को दर्द समझते हैं, सब अपने अकेलेपन को अपना अकेलापन समझते हैं। दूसरों के यहाँ समझने के लिए कोई नहीं आया है, सब अपनी अपनी ही समझ लें वही बहुत है। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं ये वाला सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।
1: क्यों

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारे लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

बादलों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

ना तोड़िएगा। एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है ब्रेक के बाद में खास खास बहुत प्यारी बात जरूर बताना, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हाँ, मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और उनको सुनना है गाना अगर तुम मिल जाओ। सो एंजॉय करते हैं जहर का ये हाउ रोमांटिक कतई जहर गाना। स्टे ट्यून्ड।

छोड़ देंगे हम, और अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हम सबके दिलों के करीब रहने वाला नगमा, के गुप्ता जी की फरमाइश पर, जो कि है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों पीएस की, और पीएस को सुनना है गाना तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा पीएस की तरफ से, और उन्होंने डेडिकेट किया है इस गाने को शालिनी जोशी को। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून।

चाहूंगा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है द एक्सपोज का गाना दर्द दिलों के कम हो जाते और मैं और तुम गर हम हो जाते। इसे एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सच में दिलों के दर्द को कम करने वाला नहीं, इनफैक्ट 1% बढ़ाने वाला नगमा इट्स कुमार की फरमाइश पर।

सच में कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। लेकिन ये हंसी आलम तभी होते ना गर मैं और तुम हम होते, लेकिन ये गर लगा ही।

अगली फरमाइश हमारे पास में है गौरव इंडिया वाले की, और उनको सुनना है गाना अखियों के झरोखों से। इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा गौरव।

0: आंखों से। हमने एंजॉय किया है ये गाना गौरव इंडिया वाले की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीर जी की बाराबंकी से, और उनको सुनना है गाना जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम और मेरी नींदों में तुम। स्टे ट्यून्ड।
1: अच्छा। देखा सनम जब

0: जब से तुम्हें मैंने देखा सर, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, हमारी आज की अगली फरमाइश है हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है शिवम पांडे की, और शिवम पांडे को सुनना है गाना। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा फूल और कांटे मूवी का कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में शिवम पांडे की फरमाइश पर, और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, बाय बाय।
1: रुक जा,
0: अरे नहीं रुकना, ना जाना, घर जाना, जाना
1: रुक जा,
0: बाय बाय जाना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय,
1: रुक जा।
0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट वाला रेडियो ज्ञान स्थल 89.67 गोंडा, शहर की धड़कन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी, जब आते हैं तो कभी किसी ऑब्जेक्ट पर बात करते हैं, कभी किसी मुद्दे पर बात करते हैं, कभी शायर को लेकर आते हैं और कभी शायरा को। आज हम आपके बीच जिनको लेकर आए हैं उनका नाम है अंजुम रहबर। एक ऐसा नाम जो उर्दू जगत की दुनिया में, मुशायरों की दुनिया में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद अगर वो न होती तो राहत इंदौरी की जिंदगी में इतनी शायरी न होती। जी, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे और बाद में ऊपर वाले को नहीं मंजूर था तो प्रणयोत्तर संबंध विच्छेद अर्थात निकाह के बाद तलाक हो गया, और दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी जी। उन्होंने लिखा कि अंजुम रहबर जी ने कि अपनी बातों पे खुद गौर कर लें, अपनी बातों पे खुद गौर कर लें और सोचें कि क्या कह रहे हैं, अपनी बातों पे खुद गौर कर लें और सोचें कि क्या कह रहे हैं, पहले अपने गिरेबा में झांकें जो हमें बेवफा कह रहे हैं, पहले अपने गिरेबा में झांकें। वो कहती हैं पहले भाई आप झांक लीजिए, हम को आपने बेवफा कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन क्या आप वफादार रहे। पहले अपने गिरेबा में झांकें जो हमें बेवफा कह रहे हैं, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं। अब दर्द देखिएगा, जिंदगी से दूरी है, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, उनके हालात भी कोई देखे, उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं। और जहर के बारे में साहब एक बात बताऊं, इस दुनिया में जहर की अपनी एक कीमत है। इंसान को मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है जहर। उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं, दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है। इंसान की लाइफ में, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इंसान को एक बार होना चाहिए। जिसका दिल नहीं टूटा, मतलब समझिए उसने अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत सा पहलू खो दिया। क्योंकि कहा जाता है जब कोई चीज़ टूटती है तो विज्ञान कहता है उससे एनर्जी निकलती है, और इस दुनिया में इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा जिनके दिल टूटे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो साहित्य की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, वो लड़का जो 13 साल तक बोल नहीं पाया, उस अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=MC² का फार्मूला दे करके आदि फिजिक्स उसके पास है, जिसके बारे में कह दिया गया था, टीचर ने ये कह दिया था कि आप अपने बच्चों को मत भेजिए, ये इतना मंदबुद्धि है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते, वी कैन नॉट टॉलरेट इट। तो टूटा ना अंदर से इंसान, तो जो कभी टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। दिल जो टूटा तो कुछ
गम नहीं है, तुमको पहचाना ये कम नहीं है। दिल टूट गया, ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपकी पहचान हो गई कि आप ऐसे हैं। तजुर्बा तो मिला, दिल टूटा तो क्या हुआ। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचाना ये कम नहीं है। तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। आपके हिसाब से वो आपकी जीत है, मेरे हिसाब से आपने मुझे एक अच्छा सा सबक सिखाया। और मित्रों, आपसे बताऊं मैं कि रिश्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते कुछ न कुछ आपको देकर जाते हैं, कुछ न कुछ देकर। हमेशा ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा जो आपको कुछ न कुछ देकर जाए। या तो वो आपको एक बेहतरीन रिलेशन देकर जाएगा, और अगर रिलेशन नहीं दे गया तो लेसन देकर जाएगा। इसलिए रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दोनों से फायदा है। अगर निभ गई तो रिलेशन, और नहीं निभी तो लेसन, एक पाठ तो मिला। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपने छोटेपन में, जब आप प्राइमरी में रहे होंगे, कि किसान को जो सुख अपने लहलहाते खेत को देखकर और पिता को अपने पुत्र को देखकर होता है, वही बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर होता था। शायद आपको याद हो, वो हिंदी का बहुत प्यारा चैप्टर। तो उसमें डाकू सोच लेता है कि बाबा जी से घोड़ा ले लेना है। तो वो एक दिन बाबा भारती जा रहे थे, तो अपाहिज का वेश बनाकर वो डाकू बैठ गया, खड्ग सिंह। कहा कुछ दूर तक लिफ्ट दे दीजिए, बाबा है भाई, संत है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान हृदय होता है। कहा आओ बैठो, बिठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े तो खड्ग सिंह ने धक्का मारा, कहा बाबा जी अब ये घोड़ा मेरा हो गया। बाबा ने कहा ठहरो, रुको। उसने कहा नहीं, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा घोड़ा तुम्हारा हुआ, ले जाओ, बस एक बात मेरी सुन लो। तो उसने कहा बताइए। तो उसने कहा देखो, ये जो तुमने किया है, ये किसी से कहना मत कि तुमने अपाहिज बनकर मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने तुम्हें दी, और तुमने छल से मेरा घोड़ा छीन लिया। डाकू ने कहा ऐसा क्यों? तो बाबा भारती ने कहा कि अगर इस बात को लोग जान जाएंगे तो कोई किसी मददगार की मदद नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों का यकीन ऐसे लोगों से टूटे, घोड़ा ले जाओ, लेकिन किसी से ये बात मत कहना। क्या बात है! घोड़ा लेकर गया, और अगली सुबह जब बाबा भारती जागे तो घोड़ा उनके अस्तबल में बंधा हुआ था। इंसान का हृदय परिवर्तन किसी भी क्षण हो सकता है, बशर्ते उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको किसी को सजा देनी हो तो सिर्फ उसे एहसास करा दीजिए कि उसने गलती की है, वो उसका सबसे बड़ा दंड है। और आप उसको बोलते चले जाइए, उसके ऊपर हाथ उठा दीजिए, और एहसास अगर ना हो तो इसका मतलब आप उसे दंडित नहीं कर पाए, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं करा पाए कि आपने अपराध क्या किया था। जी हाँ, चलते हैं अब आपकी ओर। हमारे साथ सविता शास्त्री जी उपस्थित हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आपको कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। और मनी शर्मा आपका स्वागत करता है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके ही कार्यक्रम में। और क्या बात है भाई, इट्स कुमार जी, आज आपकी इमेज बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड इवनिंग महामनु सर जी, हाँ बहुत बहुत प्रणाम आपको। दादा चरण स्पर्श अनिल शास्त्री जी हमारे साथ हैं, और जितिन सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं भाई। वाकई अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ा प्रेरणा स्रोत, और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल, जितिन लिखते हैं गुड इवनिंग,
अर्जुन के धनुश्री महामनु, मतलब अर्जुन के धनुश्री महामनु, ये हम रितिन जी मतलब आप लोग हमको नई नई उपाधियों से अगर इस तरह नवाजेंगे तो कुछ दिन बाद, हाँ जी हाँ मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं सर, हो सके तो जी जी बिल्कुल, मतलब आपने ये कहा और ये हमारी प्लेलिस्ट में पहले से शामिल है, क्या बात है, शामिल है ये गजल। और जी तो जिंदगी है साहब, आइए बातचीत हो चुकी और अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में, क्योंकि बातचीत हमारी आपकी फिर होती रहेगी। और फिलहाल आपको सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल, सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। आइए फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह इन दोनों की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज जी, और इस संगीत में साल के उस पार आपसे फिर मिलते हैं, सुनते रहिए और रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का खैर मकदम, स्वागत, इस्तकबाल। बात कर रहे हैं अंजुम रहबर की। जानते हैं, अभी मैंने एक बात बोली थी कि रिश्ते इंसान को कुछ न कुछ देकर जाते हैं, या तो वो रिलेशन देकर जाते हैं या तो लेसन देकर जाते हैं। लेकिन एक बात और है, जब रिश्ते आपको सबक सिखा कर जाते हैं, लेसन देकर जाते हैं, तो तकलीफ भी बहुत होती है। कुछ उसी तकलीफ की बात अंजुम रहबर अपनी इस गजल में कर रही हैं। वो कहती हैं कि आग बहते हुए पानी में लगाने आई। बहते हुए पानी में आग लगाना कितना कठिन काम। आग बहते हुए पानी में लगाने आई, कैसे, तेरे खत आज मैं दरिया में बहाने आई। जो आपने मुझको पत्र लिखे थे उसको आज मैं दरिया में बहाने आई हूं। आग बहते हुए पानी में लगाने आई, तेरे खत आज मैं दरिया में बहाने आई। फिर तेरी याद नए ख्वाब दिखाने आई, फिर तेरी याद नए ख्वाब दिखाने आई। चांदनी झील के पानी में नहाने आई। दिन सहेली की तरह साथ रहा आंगन में, दिन सहेली की तरह साथ रहा आंगन में। रात रात दुश्मन की तरह जान जलाने आई। मैंने भी देख लिया, अब पंक्तियां आती हैं, मैंने भी देख लिया आज उसे गैर के साथ। लोग कह रहे थे, मैं मान नहीं रही थी कि वो बेवफा है, मान नहीं रही थी, लेकिन आंखों देख लिया, मैंने भी देख लिया आज उसे गैर के साथ। अब कहीं जाके मेरी अक्ल ठिकाने आई। और अंतिम पंक्तियों में देखिए क्या दर्द बयां किया कि जिंदगी तो किसी रहजन की तरह थी अंजुम। रहजन मतलब दुख देने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला। जिंदगी क्या थी, कुछ पीड़ा पहुंचाने वाली, कुछ कष्ट पहुंचाने वाली। जिंदगी तो किसी रहजन की तरह थी अंजुम। मौत, रहबर मतलब होता है रास्ता दिखाना, मौत रहबर की तरह राह दिखाने आई। जी हाँ, ये जिंदगी है साहब। जब जिंदगी ऐसी हो जाती तो लोग कहते हैं ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। इस्मा जी लिखते हैं कि अपने घरों को भूलकर लोग दूसरों के घर की बुराई बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जी, और जब हम एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी ओर उठी रहती हैं। नेहा जी बहराइच से हैं, नमस्कार से सुसंध्या। आदाब नेहा जी, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और मैं न भी होता तो ये दुनिया होती, फिर भी पता ना ना लोगों के अंदर अहम किस बात का है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात की आपने इट्स कुमार जी, बहुत अच्छी बात। मतलब इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई। अंग्रेजी में, हिंदी में एक शब्द होता है ब्राह्मण, संस्कृत में कहते हैं द्विज। द्विज मतलब ब्राह्मण, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो द्विधन अज, जो दो बार पैदा हो जाए वो द्विज है। अब बात यह है कि दो बार कोई कैसे पैदा होता है। एक बार हम तब पैदा होते हैं जब हम फिजिकली पैदा होते हैं, जन्म होता है, और दूसरी बार हम तब पैदा होते हैं जब हमें यह पता लग जाता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। सचिन को यह पता लग गया था कि ही इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट। लता जी, रफी जी, मुकेश जी, महेंद्र कपूर जी को पता लग चुका था कि दे वर बॉर्न टू सिंग। अगर हमको पता लग जाए कि जिंदगी में इतने लोग थे, इस कायनात में इतने लोग हैं, धरती पर इतने लोग हैं, तो हम भी क्यों आ गए, आप समझ जाइएगा उस दिन आपका दूसरा जन्म हो चुका है और उस दिन से आपकी रियल लाइफ शुरू होती है।
जो मैंने महसूस किया। उसके पहले तो इंसान अंधेरे में तीर मारता है, लेकिन जब वो द्विज हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, उस ज्ञान इस बात का होता है कि हम क्यों पैदा हुए। भूपेंद्र सिंह ने मिताली सिंह जी के साथ गजल गाई, हमने आपको सुनाई, क्यों पैदा हुए, गाने के लिए। गुलाम अली साहब की गजल आपने सुनी, क्यों पैदा हुए, गाने के लिए। आपको हम पंकज उदास की गजल सुनाने वाले हैं, क्यों पैदा हुए, गाने के लिए। वाई, ये वाई बहुत जरूरी है, ये अपने आप से निकलना चाहिए। हम क्यों, मैं इस धरती पर क्यों, और इसका उत्तर अगर आपको मिल गया तो आप इतिहास रचते हैं, आप जैसे लोग ही इतिहास रचते हैं। जी हाँ, जितिन सिंह जी हैं, और फिर हमारे साथ भाई निशा जी हैं बहराइच से। क्या बात है भाई, बहुत ही आदाब करते हैं आपको, और सविता जी का धन्यवाद स्वीकार करते हैं। मनी शर्मा जी ने कुछ के लिखा है भाई, उसके का मतलब नहीं जानते। और इसके पश्चात भाई आपसी बात चल रही है, मनी शर्मा जी ने लिखा आवारगी, क्या बात है, ब्लॉकबस्टर शो। जी हाँ जी सर, बढ़िया हूँ, आप सबकी दुआ है। जी हाँ, और आज अब की बार बुधवार को इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनेंगे हम। आप कैसे हैं सर जी, बस दुआओं में याद रखिएगा जी, बहुत खूब। जय हो अर्जुन के धनु महामनु, क्या भाई ये कायनात जी आ चुके हैं, मुझे आपने याद कर लिया। अरे आपको भूल कौन सकता है साहब, हम आप ही में तो हैं, हम सभी कायनात के ही अंग हैं। तो हमें तो आज भी पता नहीं सर, हम क्यों आए दुनिया में। तो आज रात में लेटिएगा तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा कि इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा काम करने में आता है। और जब आपको उत्तर मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप नाकामयाब हो जाएंगे। आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। परिश्रम असफलता की कुंजी है। जिसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की वो नाकामयाब हो गया, इसलिए मेहनत बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी कि हमने तो सुना था कि कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और मैं अजीब सी बात बोल रहा हूँ। देखिए, मेहनत हम परिभाषित कैसे करते हैं, मेहनत को, मेहनत किस में है। आप अपने कपड़े धुलते हैं, साफ करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ से धुल रहे हैं, शर्ट को अपनी चमका रहे हैं, वाइट कलर की शर्ट है और बढ़िया। उसी में आपका भाई बहन पिताजी कोई और कपड़ा दे दे कि ये जरा इसको भी धुल दो, क्या लगता है आपको, वो दूसरे का कपड़ा है तो मेहनत लगती है। अपना कपड़ा आप जितनी खुशी के साथ साफ करेंगे उतना उसका नहीं करेंगे, ये धरती का सच है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत या असहमत हो। आपके दोस्त की पार्टी है, शादी है, शादी में गए, खूब नाचे, नाचते नाचते देखा होगा आप लोगों को पसीना निकल आता है, पानी पीते हैं फिर नाचते हैं, और फिर जाकर दोस्त से क्या कहते हैं, बड़ी मेहनत की, नहीं क्या कहते हैं आप, मज़ा आ गया। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो कड़ी धूप में हम लोग को याद है कि बस्ता फेंकते थे और 1 बजे निकल जाते थे तपती दोपहरी में, और क्रिकेट खेलते थे, भूख भी नहीं लगती थी, मज़ा आ जाता था। यानी जिस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है, उस काम को जब आप करेंगे तो वो मेहनत नहीं है, और वही काम आपको कामयाब करेगा। और जो काम करना आपको मेहनत लग रहा है, अगर उसे आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको बेमन से कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप नाकामयाब हो जाएंगे। मैं अगर बेमन से पढ़ा रहा हूं, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, तो आज नहीं तो कल मैं एक फेल्योर टीचर हो जाऊंगा, कन्फर्म।

और जिस काम को करने में आपका मन लगता है वो खुशी मिलती है वो। सोचिए, हमेशा याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरी एक बात याद रखिएगा, प्रसन्नता ही सफलता की कुंजी है। जिस काम को करने में आपको आनंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, खुशी नहीं मिली, उस काम को आप मन दबाकर कर तो लेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में कामयाबी के लिए प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। यकीन ना हो तो अपने आजमा लीजिए, किसी बच्चे को एक थप्पड़ मारिए, इसके बाद उसे पढ़ने बैठा लिए और उसके बाद उसे कुछ समझाइए, देखिए उसके समझ में कितने परसेंट आता है। और उसी बच्चे को एक चॉकलेट दीजिए, बेटा ये, और अगर ये सवाल हल कर लोगे तो तुमको ये टॉफी भी देंगे, अब देखिए वो बच्चा कैसा पढ़ता है। आपको समझ में आ जाएगा मेहनत क्या है और मज़ा क्या है, खुशी क्या है। तो अगर जिस काम को करने में आप खुश हो रहे हैं, वो काम आप कर रहे हैं, तो आप कामयाब हैं, भले ही आपके पास चार पैसे कम हो। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, वहां पर जो फरहान कुरैशी रहता है वो अपने अब्बू से कहता है, अब्बू मैं 4 पैसे कम कमाऊंगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूंगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा पापा, मैं खुश रहूंगा, इंजीनियर बनकर मैं खुश नहीं रह सकता, पैसा भले जितना कमा लूं। उसके पापा के सुन में भी बात आती है और वो उसे लैपटॉप की जगह कैमरा ला कर दे देते हैं। यही है जिंदगी साहब, हाँ, जिसमें हम खुश हैं वो कर रहे हैं। पैसा सफलता को नहीं तय करता। साइकिल से चलने वाला इंसान कामयाब हो सकता है और ये भी हो सकता है कि

किसी लायक नहीं है। बंदे ने गाना गा दिया और आज लोग उसका नाम जानते हैं। हो सकता है जिंदगी एक आध बार आपकी परीक्षा ले, लेकिन आज नहीं तो कल। अगर आपके पास हुनर है, उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, तो आप जीत तो जाएंगे हमेशा। मुझे ये लगता है, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत या असहमत हो। और इस्माइल लिखते हैं, भाई क्या भाई, बहुत खूब बात कही, और सावधान पानी के टंकी भर गई है, द मोटर टैंक्स फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। ये भाई क्या हो गया भाई, कायनात जी की टंकी भर गई भाई। और वो जी नज लिखती है, सर मज़ा आता है जिस काम में, वो तो दुनिया करने ही नहीं देती। अच्छा आप एक बात बताइएगा कि बचपन में कितने ही ऐसे काम थे जिसको करने से आपके पेरेंट्स, हम लोग के पेरेंट्स मना करते थे कि ये मत करो। अच्छा वो हम करते थे कि नहीं, तो हमको फिर काहे की इतनी परवाह। आज आपने किया है, हमने किया है। पापा कहते थे, बेटा ये कमल कुदान खेल रहे हो, चोट लग जाएगी, मत खेलो, इतनी ऊंची कूद रहे हो। लेकिन नहीं, हम करते थे। जी हाँ, जापान में 5 बार वाई शीट भरी जाती है, कोई गधा के बाद मुझे बहुत पसंद आया ये तरीका। जी जी बिल्कुल हाँ, वहाँ के बच्चों को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं। सर सर सर सर भाई कायनात जी, और मज़ा आता है, कीजिए भाई बिल्कुल कीजिए। एक महिला अभी थी, उसको अचार बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मैंने सुना शायद ये हरदोई के आसपास की घटना है, और उसने ज़्यादा मिर्चा भर लिया तो अपने पड़ोसन को दिया कि थोड़ा सा अचार तुम चख लो। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उसने जो है वो थोड़ी सी मदद ली 15-20 हज़ार रुपये की, और इसके पश्चात उसकी उसका अचार बिक रहा है। आज की डेट में वो लखपति हो गई, और था उसके पास कुछ नहीं, बर्तन मांजती थी, अभी रिसेंटली की घटना। लेकिन उसको एक काम में मज़ा आता था, उसको भरुआ मिर्चे के अचार बनाने मज़ा बहुत आता था, उसे बहुत मन लगा के बनाती थी। सोचिए उसकी खुशी भरुए मिर्चे के अचार में थी, वहाँ से वो कामयाब हो सकती है, तो हम आप क्यों नहीं। जी बिल्कुल जी हाँ, फिर हमारे साथ कहने, सावधान पानी की टंकी भर गई, क्या भाई भाई सावधान, बहुत खूब क्या बात कही है, मज़ा आ गया जी। दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख आयो रे, बल्ला घूम गए के छायो रे। ये क्या है भाई, ये कायनात जी भाई आप बहुत शानदार लिखती हैं। इट्स कुमार जी ने लिखा, बहुत गहराई में उतर गए आप। जी हाँ माफ़ कीजिएगा, जब आप आते हैं तो हम गहराई आ जाती है। मुझे याद आया मेरे घर के तिजोरी की कुंजी मेरी सासू माँ के पास है, मेरी प्रसन्नता की कुंजी वही है सर, कैसे हासिल करें। कायनात जी भी मैंने कहा आपसे, सुख धन में नहीं है। फिर आप, इस दुनिया का जो अंतिम सत्य है वो निधन है। निधन से रिलेटेड धन है, सोचिए निधन अंतिम सत्य है। तो धन के पीछे नहीं भागना है, खुशी के पीछे भागना है। क्या आपको उस तिजोरी में खुशी मिलती है? नहीं। वास्तव में अगर आपकी सासू माँ की तिजोरी है, कभी आपकी सासू माँ की तबीयत खराब हो, उनके सर में दर्द हो, उनका सर दबाइए, थसा तेल रखिए, तबीयत कैसी है पूछिए, और फिर जब वो आपके सर पर हाथ रखेंगी ना आपकी सासू माँ, आपको लगेगा खुशी इसे कहते हैं। किसी की मदद करके देखिए, खुशी मिलना मिल जाए इस तिजोरी से बढ़कर, तो चैट बॉक्स में फिरा के बताइएगा। वाह क्या बात है, तेरे पत्रकारिता ने मुझको मज़ा आता है, क्षेत्र मुझे बेहद पसंद था, पता न क्यों आज भी है, लेकिन आज जहाँ है उससे प्यार करना सीख लिया, शायद उससे और प्यार करता। जी हाँ, 3 इडियट्स के 3 इडियट, पहले हम, दूसरे हम, तीसरे हम। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान पेरेंट्स की बराबरी कभी नहीं कर सकता, पेरेंट्स से मनमानी कर सकते हैं बट सबसे नहीं। जी हाँ बिल्कुल, आज भी कीजिए, थोड़ा सा करके देखिए, बंदिशों से निकल कर देखिए, मज़ा आता है।

है प्रमुख कुमार जी हैं श्रावस्ती से। गुड इवनिंग महामनु जी। जी हाँ, और कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं अच्छा हूँ। आइए, बातें बहुत ढेर सारी हो गई और हमको लगता है अगर ऐसे ही बात चलती रहेगी तो गज़ल नहीं सुना पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत नंदलाल के उस पास। सुनते रहिए रेडियो का नस्ली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, यकीन मानिए यही 10:30 का वो समय होता है जो समय हमको थोड़ा सा खलता है। भाई कमल नयन भी हमारे बीच आ चुके हैं, भाई आपका इस्तकबाल करते हैं। कायनात जी आपको भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। और 10:30 होता है तो हम सोचते हैं इतनी जल्दी 1 घंटा कैसे बीत गया आप लोगों के साथ। बहरहाल वक्त की अपनी पाबंदियाँ हैं और ये चलती रहेंगी साहब। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे पुनः आप ही के प्रोग्राम बाहर गजल में मुलाकात होगी ठीक 9:30। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश क्लीट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियाँ जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन, तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी ख्वाब। आहना एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थी। इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, एक्टिव, पर अंदर से एकदम कोमल, छुई मुई जैसी। ऑफिस के अलावा सारा समय उसे घर पर ही बिताना अच्छा लगता था, फैमिली के साथ। इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद उसे घर के काम जैसे खाना बनाना या गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। 4 साल बीटेक और 2 साल एमटेक, 6 साल घर से दूर रहने के बाद जॉब लगते ही जब पहली छुट्टियों में वो घर गई तो भैया भाभी से बोली, मेरी पढ़ाई के बहाने आप लोग मम्मी पापा के साथ बहुत दिन अकेले रह लिए, अब इनको मेरे साथ रहना पड़ेगा। और मम्मी आप रोज मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बनाना, मैं तो ऊब गई हूँ मैस का खाना खा खा कर। और पापा हम पहले की तरह रोज शाम को कैरम खेला करेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और MNC की जॉब के बावजूद पार्टी, फैशन, शॉपिंग, घूमना फिरना या फिर ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना तक पसंद नहीं था। मम्मी पापा को अपने साथ ले आने के बाद वो बहुत निश्चिंत और खुश रहने लगी थी। खुश रहने और खुशियां बांटने वाली इंसान थी वो। ऑफिस में कोई जूनियर हो या सीनियर, उम्र में छोटा हो या बड़ा, हर किसी का हालचाल पूछना, सबसे हंसकर बात करना उसकी आदत में शुमार था। उदास या परेशान तो वो किसी को भी देख ही नहीं सकती थी। अगर कोई भी उसे उलझन में दिखता तो उससे बात करने की, और जो भी उसके बस में होता उससे उसकी परेशानी दूर करने की हर पॉसिबल कोशिश करती। जिंदगी की गाड़ी एकदम पटरी पर चल रही थी।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ख्वाब। अब तक आपने सुना आहना एक बहुत ही मॉडर्न पर सीधी साधी लड़की थी। वैसे तो वो एमटेक करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पर जॉब कर रही थी, लेकिन काम के अलावा उसे घर पर फैमिली के साथ रहना और घर के काम करना ही अच्छा लगता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि उससे किसी की भी तकलीफ देखी नहीं जाती थी और अपने आसपास वो हर किसी को खुश देखना चाहती थी। जॉब लगने के बाद वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही ले आई थी। अब आगे, एक दिन जब वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो पापा ने कहा, आहना आज मेरे एक पुराने फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं, वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। आहना को तो वैसे भी फैमिली गेट टुगेदर में बहुत मजा आता था और ये तो पापा के पुराने फ्रेंड हैं। उन लोगों के साथ वक्त बिताना, उनसे पुराने किस्से सुनना और उन्हें उनकी पसंद का अपने हाथ से बनाकर खिलाना आहना को बहुत अच्छा लगता था। दो दिन बाद वीकेंड था, सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता था। उसने फ्राइडे के लिए भी लीव एप्लीकेशन डाल दी ताकि पूरे 3 दिन वो सबके साथ रह सके। उसे पता था कि शाम को उसके घर पहुंचने से पहले वो लोग आ चुके होंगे, इसलिए घर लौटते वक्त उसने वहां के फेमस कचौड़ी और इमरती पैक करा ली। घर पहुंची तो वो लोग आ चुके थे और सब लोग बाहर लॉन में ही बैठे हुए थे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने यहाँ आने का प्लान किया। आप लोग बैठिए, मैं बस 5 मिनट में चेंज करके और चाय बनाकर आती हूँ। मैं चाय चढ़ा आई हूँ, तुम बस ले आना, आहना से मम्मी ने कहा। 6 कप है। 6 कप? आहना ने पलट कर मम्मी से कहा। हाँ, अंकल आंटी का बेटा राघवेंद्र भी आया है, कुछ काम से गया है, आता ही होगा। ओह ठीक है, आती हूँ, कहते हुए आहना अंदर चली गई। वो जब वापस आई तो राघवेंद्र आ चुका था। आहना को आता देख के पापा बोले, आओ आहना, इनसे मिलो, ये है प्रताप अंकल के बेटे राघवेंद्र। आहना ने टेबल पर चाय नाश्ता रखते हुए बोला, हेलो। राघवेंद्र खड़ा हो गया और आहना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाय, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट राघवेंद्र। आहना ने भी हाथ मिलाकर उसे ग्रीट किया। आहना जितनी सुंदर थी, राघवेंद्र भी उतना ही हैंडसम। दोनों को साथ खड़े देखकर लगता था जैसे उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। आहना को भी पहली ही नजर में वो बहुत इम्प्रेसिव लगा था।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 FM पर, मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ख्वाब। अब तक आपने सुना आहना एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थी, खुद भी खुश रहने वाली और सब में खुशियां बांटने वाली। जॉब लगने के बाद वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही ले आई थी। उसके पापा के पुराने फ्रेंड प्रताप अंकल अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए उनके घर आए थे। प्रताप अंकल का बेटा राजेंद्र पहले ही मुलाकात में आहना को बहुत इम्प्रेसिव लगा था। अब आगे, फौजी स्टाइल में कटे हुए बाल, लंबी चौड़ी कदकाठी, भारी आवाज और परफेक्ट बॉडी पोस्चर, कोई भी देखकर ये कह सकता था कि वो आर्म्ड फोर्स में डिप्लॉयड होगा। जब उसने आहना को अपना परिचय फ्लाइंग लेफ्टिनेंट राघवेंद्र कहकर दिया तो आहना धीरे से मुस्कुरा दी, जैसे वो पहले से ही उसके बारे में ये जानती हो। उस दिन सब देर रात तक बैठकर बातें करते रहे। पापा और अंकल की पुरानी बातें, आहना और राघवेंद्र के बचपन की बातें, हंसी ठहाके चुटकुले। आहना को तो अगले दिन ऑफिस जाना था, इसलिए वो थोड़ा पहले ही उठकर सोने चली गई, पर मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन की छुट्टी और क्यों नहीं भर दी उसने। चलो कोई बात नहीं, कल के बाद तो 3 दिन की छुट्टी है उसके पास, सबके साथ पूरा टाइम रहने के लिए। सबके साथ या शायद राघवेंद्र के साथ, पता नहीं, पर आहना को ये साथ अच्छा लग रहा था। राघवेंद्र जब अपनी ट्रेनिंग की बातें बताता तो लगता जैसे वो कोई एडवेंचरस मूवी की कहानी सुना रहा हो। राघवेंद्र ने उसे बताया कि कैसे एक बार टीवी पर एक एयर शो देखने के बाद क्लास 8th में ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर एयरफोर्स ज्वाइन करेगा और फाइटर पायलट बनेगा। तब से ही उसने अपने फिजिकल फिटनेस पर स्पेशल अटेंशन रखना शुरू कर दिया था और सेकंड अटेम्प्ट में ही उसने इंडियन एयरफोर्स का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग और फिर आपके पास होता है पूरे जज्बे के साथ देश की सेवा करने का मौका।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 एफएम पर। मैं हूं तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ख्वाब। अब तक आपने सुना आहना एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थी, खुद भी खुश रहने वाली और सब में खुशियां बांटने वाली। जॉब लगने के बाद वो मम्मी पापा को अपने साथ ही ले आई थी। उसके पापा के पुराने फ्रेंड प्रताप अंकल अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए उनके घर आए थे। प्रताप अंकल का बेटा राघवेंद्र पहले ही मुलाकात में आहना को बहुत इम्प्रेसिव लगा था। राघवेंद्र इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट था। आहना के ऑफिस में वीकेंड के दो दिन छुट्टी रहती थी। उसने एक और दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो तीन दिन सबके साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब आगे, अगले दिन सबने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। बातों ही बातों में आहना को पता चला कि राघवेंद्र को खाने में क्या क्या पसंद है और उसने पिकनिक के लिए राघवेंद्र की पसंद की सारी चीजें बनाई। पिकनिक स्पॉट उनके घर से 30 किलोमीटर दूर था। रास्ता पहाड़ी था और सुनसान भी। टाइम से लौटना था इसलिए सुबह जल्दी निकलने का डिसाइड हुआ। आहना ने सुबह थोड़ा जल्दी का अलार्म लगा लिया। सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा राघवेंद्र पहले ही उठ चुका था और कार निकाल कर साफ कर रहा था। आहना को थोड़ा संकोच हुआ। उसने जाकर राघवेंद्र से कहा, अरे आप क्यों कर रहे हैं? राघवेंद्र ने हंसकर कहा, फौजी हूँ मैडम, हर वक्त हर काम के लिए तैयार। आहना भी हंसकर किचन में चली गई। उनके घर में कभी भी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं रहा था। आहना को राघवेंद्र की हर बात अच्छी लग रही थी। सुबह जल्दी उठना, फिजिकली फिट रहना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हर वक्त एक्टिव रहना और सबका ख्याल रखना, राघवेंद्र उसे जैसे कोई रियल लाइफ हीरो लग रहा था। उस दिन ड्राइविंग भी राघवेंद्र ने ही की। उसकी ड्राइविंग इतनी अच्छी थी कि पहाड़ी रास्तों से डरने वाली आहना भी उस दिन सेफ फील कर रही थी। पूरा दिन राघवेंद्र सबको हंसाता रहा, चुटकुले सुनाता रहा, गाने गुनगुनाता रहा। शाम होते होते आहना और राघवेंद्र में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोस्ती या दोस्ती से ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक कुछ भी एक दूसरे से खुलकर नहीं कहा था।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 एफएम पर, मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ख्वाब। अब तक आपने सुना आहना एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थी, खुद भी खुश रहने वाली और सब में खुशियां बांटने वाली। जॉब लगने के बाद वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही ले आई थी। उसके पापा के पुराने फ्रेंड प्रताप अंकल अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए उनके घर आए थे। प्रताप अंकल का बेटा राघवेंद्र पहली ही मुलाकात में आहना को बहुत इंप्रेसिव लगा था। राघवेंद्र इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट था। आहना के ऑफिस में वीकेंड के दो दिन छुट्टी रहती थी। उसने एक और दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया ताकि वो तीन दिन सबके साथ टाइम स्पेंड कर सके। अगले दिन उन सब ने पिकनिक पर जाने का प्लान किया। आहना को राघवेंद्र एक रियल लाइफ हीरो जैसा लग रहा था। वो कभी भी किसी भी फौजी से नहीं मिली थी। उसका रूटीन, फिजिकल फिटनेस, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल नेचर और जिंदा दिली हर एक बात आहना को इम्प्रेस कर रही थी। शाम होते होते उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब आगे, अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त आहना के पापा ने बोला, आहना, राघवेंद्र, कल तुम दोनों ने सारा वक्त साथ में बिताया, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अब मैं ये बात तुम लोगों से कर सकता हूँ। एक्चुअली ये फैमिली गेट टुगेदर हम लोगों ने पर्पसली प्लान किया था। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर दो। राघवेंद्र मुस्कुराता रहा और आहना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगर राघवेंद्र से मिलने से पहले उसके लिए डिफेंस सर्विसेज वाले किसी लड़के का रिश्ता आया होता तो शायद आहना मना कर देती। उसे लगता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई वो फौजी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। पर राघवेंद्र से मिलने के बाद उसे ये विश्वास था कि राघवेंद्र के साथ सारे एडजस्टमेंट्स परफेक्टली हो जाएंगे। शाम तक दोनों के पेरेंट्स ने सारी बातें तय कर ली, कौन कौन से फंक्शंस करने हैं, किस तरह से करने हैं और कब करने हैं। दो महीने बाद की डेट डिसाइड हो गई थी।

आप ट्यून है 89.6 FM पर, मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ख्वाब। अब तक आपने सुना अहना एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थी, खुद भी खुश रहने वाली और सब में खुशियां बांटने वाली। जॉब लगने के बाद वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ले आई थी। उसके पापा के पुराने फ्रेंड प्रताप अंकल अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए उनके घर आए थे। प्रताप अंकल का बेटा राघवेंद्र पहले ही मुलाकात में अहना को बहुत इम्प्रेसिव लगा था। राघवेंद्र इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट था। 3 दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद जब पापा ने ये बताया कि ये विजिट उन लोगों ने आना और राघवेंद्र की शादी तय करने के लिए की थी और उनसे पूछा कि क्या अब वो दोनों इसके लिए तैयार हैं, तो दोनों ने ही हाँ कर दी। सारी बातें और डेट्स झटपट फाइनल हो गई। अब आगे शादी की तैयारियों में 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। शादी का दिन भी आ गया और सारे ही फंक्शंस धूमधाम से पूरे हो गए। आना ने कुछ दिन के लिए जॉब से ब्रेक ले लिया। वो अपना नया घर सजाने में बसाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। राघवेंद्र की छुट्टियां खत्म हो गईं और उसने वापस ज्वाइन कर लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 10 महीने यूं बीत गए मानो 10 दिन। राघवेंद्र 3 दिन के लिए एक एयर शो में हिस्सा लेने गया हुआ था। आज रात को उसे वापस आना था। आना उसकी पसंद का डिनर बनाकर वेट कर रही थी, पर उसके आने से पहले एक कॉल आई और उस कॉल पर खबर थी एयर क्रैश की। एक ही पल में सब कुछ बिखर कर खत्म हो गया। हर वक्त हंसने खेलने वाली आना एकदम से चुप हो गई थी। मम्मी पापा ने भी उससे बात करने की, उसके मन को टटोलने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं बोली। 6 महीनों में उसने अपना ऐसा हाल कर लिया था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। फिर एक दिन उसने अपने पापा को फोन किया और बोला, पापा मैं आर्मी ज्वाइन करके राघवेंद्र के ख्वाब को पूरा करूंगी। पापा को लगा कि उनकी फूल सी नाजुक बेटी ये सब कैसे कर पाएगी, पर आहना ने तो ठान लिया था। उसने कड़ी मेहनत की और करके भी दिखा दिया। उसके आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी बड़ों ने बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले काटना बहुत मुश्किल है, दूसरी शादी के लिए हाँ कर दो, पर आहना ने साफ मना कर दिया और सबसे ये प्रॉमिस भी ले लिया कि उससे दोबारा ये सब बातें कोई नहीं करेगा। राघवेंद्र ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। उसके ख्वाब के साथ जीते हुए आहना को लगता है जैसे वो अब भी उसी के साथ जी रही है।

ट्यून्ड है 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और ये थी मेरी आज की कहानी ख्वाब। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात, तो हमें लिख भेजिए अपनी कहानी। हम लेकर आएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ श्रोताओं, शो का वक्त हो गया है और घड़ी में बज गए हैं 11। 11 यानी कि वो सफ़र, वो दौर जहां हम आपको ले जाते हैं भूले बिसरे गीतों के माध्यम से। वैसे आज जिस गायक की हम बात करने वाले हैं वो है 90s के दौर के बहु आयामी और बहुगुणी प्रतिभाओं से परिपूर्ण। वैसे इनका नाम हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। शो आपका चल रहा है भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी। अनोखी बातें होंगी, अनोखे नगमे होंगे और वो यात्रा जो कि आज की रात के सफ़र को बहुत सुहाना बनाने वाली है। चलिए चलते हैं उस ओर, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि आप आके बताएं चैट बॉक्स में कि ये है कौन, इनकी आवाज़ का थोड़ा सा लुफ्त उठाइए और इस गाने को और इस गायक को पहचानिए। तब तक सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, जिनकी अभी आपने आवाज सुनी है वो कोई और नहीं, आप अभी तक तो पहचान ही गए होंगे। फिलहाल हम बता देते हैं, आज हम बात करेंगे विपिन सचदेवा जी की। जी हाँ, विपिन सचदेवा हिंदी फिल्म संगीत जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। संगीत से पारिवारिक संबंध न होने के बावजूद उन्होंने बचपन से ही गायन में रुचि दिखाई और महान गायक यानी कि मोहम्मद रफी को अपना आदर्श माना। दिल दीवाना, ढूंढ रहा है आदि शामिल है इनके गीतों में। फिलहाल अभी आपने एक गाने का लुत्फ उठाया है और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट नगमे के साथ और फिर आएंगे इनके कुछ और नगमों की बात करेंगे, फिर इनकी जिंदगानी के बारे में बताएंगे कि भाई इतना रूहानी और इतनी प्यारी आवाज होने के बाद भी इनका सफर आखिर में रुक क्यों गया। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस गीत को और आपके अपने शो भूले बिसरे गीत को।

जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती बल्कि एक पूरी कहानी सुना जाती है। 90 के दशक में ऐसी ही एक आवाज़ थी विपिन सचदेवा की। उनकी आवाज़ में मासूमियत भी थी, तड़प भी थी और साथ ही साथ में शरारत भी थी, और इसके अलावा मोहब्बत का वो दर्द भी था जो बिल्कुल से क्या ही कहूँ मैं उसमें। अगर आप मोहब्बत के दर्द की बात करेंगे तो वो वही बयां कर सकता है जिसने कभी मोहब्बत की हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और गीत मुझे इनका याद आ रहा है और उसके बोल हैं, मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। जी हाँ, जब दो अजनबी मिलते हैं, ना कोई इरादा ना कोई योजना, बस एक मुलाकात और दिल कहीं खो जाता है, और फिर वही होता है जो अक्सर मोहब्बत में होता है। चलिए इस गाने के माध्यम से जानते हैं कि आखिर में मोहब्बत में क्या होता है।

नजरें मिली, बातें बढ़ी और अनजाने में रिश्ता बन गया। अब हर दीवार हर रास्ता उसी का नाम कहने लगा। ऐसा तब होता है जब हमारा बेइरादा किसी से नजर मिल जाती है और उसके बाद में सामने वाला हमसे हमारा। आइए सुनते हैं इस डिमांड भरी सॉन्ग के माध्यम से। फिलहाल आवाज उन्हीं की है जिनकी आज हम बात करें, यानी कि विपिन सचदेवा जी की, जो कि 90s के कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सिद्ध हुए थे। इन्होंने गाने तो बहुत कम गाए, लेकिन जो भी गाए वो एक बेंचमार्क है हम सभी के लिए और खास करके उन सिंगर्स के लिए जो नए नए म्यूजिक इंडस्ट्री में आते हैं।

अब दोस्तों मैं आपसे एक उस नगमे की बात करूंगी जिसके बोल हैं, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। अक्सर होता है ना, आपने भी देखा होगा, हमने भी महसूस किया है कि चाहे वो पशु पक्षी हो, फूल पौधे हो या फिर कोई हमारा बहुत खास हो, अगर जरा सा भी केयर हमको कोई भी दिखाता है तो हमें उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है और हमको लगता है सच में भी प्यार हो गया। क्योंकि प्यार का अगर हम नाम दें, प्यार को कोई नाम दें, तो वो होता है अट्रैक्शन। वैसे भी बोलते हैं सूफिज्म में, सूफिज्म का जो पूरा सेंटर पॉइंट होता है वो होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत, यानी प्रेम लेना, प्रेम देना, प्रेम में पूरा जिंदगी बिताना। उनका धर्म यही कहता है कि बस प्यार प्यार प्यार। तो जब प्यार की बात करते हैं तो प्यार का जो पहला पड़ाव होता है, होता है अट्रैक्शन, और उसी को प्यार कहता है। फिर जब दूसरे पे हम जाते हैं तो होता है मोहब्बत, और फिर आगे बढ़ते हैं तो इश्क, इबादत, और आखिर पड़ाव होता है उसका क्या, वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आखिरी पड़ाव जो मोहब्बत और प्रेम और इश्क की होती है वो होती है मौत। इसीलिए कहते भी हैं कि प्यार कभी नहीं करना। वैसे अगर आपने किया है तो बस इसी हद तक रहिएगा, इन्हीं दायरों में रहिएगा, और अगर सच कहूँ तो इन दायरों को कोई ज़्यादा क्रॉस भी नहीं कर पाता है। तीसरी स्टेज तक ही अगर कोई पहुँच गया तो बहुत बड़ी बात है, सातवीं स्टेज तक जाना तो क्या ही कहें। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, और सच कहें तो सच ही है कि प्रेम कोई योजना नहीं होती, वो बस हो जाती है। और जब प्रेम गहरा हुआ तो दिल ने कहा, क्या कहा ये हम बताएंगे अगले गाने के माध्यम से, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम नगमे लेके आए हुए हैं विपिन सचदेवा जी के। और विपिन सचदेवा जी से एक दफ़ा इंटरव्यू में बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो इनका सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट नगमा था, जो मूवी थी, वो थी सनम बेवफा। और सनम बेवफा के इनके सारे नगमे आज भी अगर आप कहीं भी ट्यून करेंगे तो एक दफ़ा आप ठहर के सुनना पसंद करेंगे, इतना इतना ज़्यादा पसंद किया गया था और आज भी उतना ही लोकप्रिय माना जाता है। पर बोलते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, या आप कोई भी सामान नॉर्मल अगर हम बात करें तो ले लीजिए, अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने उसको अधिक मात्रा में खा लिया तो क्या होता है, हमारा मन भर जाता है, फिर हम उसको आगे नहीं ले जाते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ कि सनम बेवफा के हिट्स के बाद इनको काम मिलना ही बंद हो गया और कहीं ये गर्दिश में गुम हो गए। तो ये कहीं ना कहीं सनम बेवफा को अपना गुड लक भी मानते थे और बैड लक भी साथ ही साथ मानते थे। फिलहाल चलते हैं इसी मूवी से एक प्यारा सा नगमा लेते हैं। और मैंने जाते जाते बोला था ना कि जब प्रेम गहरा होता है तो दिल ने कुछ कहा होता है, और वो क्या कहा होता है, आइए सुनते हैं इस गाने के माध्यम से। गाने के बोल हैं, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, मूवी सनम बेवफा।

ये वही दौर था जब विपिन सचदेवा की आवाज हर आशिक की आवाज बन गई थी, खासकर फिल्म सनम बेवफा से, और इसके गीत हर घर तक पहुंचाए गए थे। लेकिन प्रेम की राहें हमेशा आसान नहीं होती, कभी रूठना कभी मनाना, कभी भूला कभी याद किया, ये जो गाना है कहीं ना कहीं इसी बात का मापदंड है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

जी हाँ, विपिन सचदेवा जी ने एक नगमा गाया जो आज भी शादियों में लोग अपने दोस्तों को डेडिकेट करना पसंद करते हैं। गाने के बोल है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। कहते हैं ना, हम सभी अपने दोस्तों को हिदायत देते हैं, भाई शादी मत करना। फिर कोई कहता है कि भाई शादी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी सही। फिर कुछ कहते हैं कि अगर मतलब बिगड़ना ही है, बर्बाद ही होना है, तो शादी करके हो लेते हैं ना यार, ऐसा बोलते हैं हम आपस में। और ये नगमा वो नगमा है जो 90s से लेके आज तक डेडिकेशन में चलता आ रहा है। और मुझे तो लगता है जब तक ये जिंदगी रहेगी, ये धरती रहेगी, ये दोस्तों के बीच में नोकझोंक वाला डेडिकेशन के रूप में ये सॉन्ग ऐसे ही जिंदा रहेगा। जी हाँ, जिंदगी सिर्फ गीत नहीं, हकीकत भी है, और तभी हल्का फुल्का हाथ से दस्तक देता है। इस नगमे के माध्यम से आइए जानते हैं कि जब हमारे दोस्त हमें डेडिकेशन करते हैं और अभी शादी वाली बात होती है, तो ऐसे नगमे हमको मिलते हैं या नहीं, आप सोच के बता सकते हैं। फिलहाल आपका शो चल रहा है भूले बिसरे गीत, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।